0: हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए।

0: और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
1: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का कथन है, क्रोध में हजार शब्द बोलने से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। ये था आज का चिंतन। लीजिए वंदनवार में आपको सुनवाते हैं भक्त

यह है विविध भारती। झरोखा में लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 260, 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला घुंघरू की तरह। कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन। इस कार्यक्रम का पांचवा भाग आज आप सुनेंगे, समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से, हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 बजे से त्रिवेणी सुनिएगा। चित्रलोक सुबह 8:30

और रात 8:15 से। नौ बजकर 30 से आज के फनकार केंद्रित होगा संगीतकार जीएस कोहली पर। आलेख व स्वर यूनुस खान। दस बजे पिटारा में सुनिएगा गीतों भरी कहानी। जिंदगी की यही रीत है। लेखिका रिद्धि चौरडिया। वाचन संपादन नेहा शर्मा।

11 बजे से चित्रपट संगीत। ग्यारह बजकर 30 मिनट से मैटिनी शो, जल है तो कल है। पर्यावरण विशेषज्ञ शुभजीत मुखर्जी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। आज होगा इसका दूसरा भाग। एक बजे से सुरीला सफर, 2 बजकर 30 मिनट से सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे से लेकर आएंगे मनचाहे गीत। दिन में 3 बजकर 30 मिनट से नाट्य तरंग में नाटक वो मंजिल कहां, लेखक डॉक्टर रणवीर सक्सेना, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। चार बजे से पिटारा में सुनिए बॉम्बे टॉकीज। फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। पांच बजकर 30 मिनट से तराने नए पुराने, 6 बजकर 35 मिनट से संध्या रंजन। शाम 7 बजे से विशेष जयमाला पार्श्व गायक अनूप जलोटा द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। 7 बजकर 45 मिनट से इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल में सुनिएगा सुनो कहानी, पीसनहारी का कुआं। इस कहानी का पहला भाग आज आप सुनेंगे। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचन अमरकांत दुबे। रात 9 बजे से आपके लिए लेकर आएंगे 10 बजे से छाया गीत और 10 बजकर 30 मिनट से ढलती जाए रात। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया, भक्ति जिसके अभाव में जात पात, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है, वो शबरी को

दर्शनीय शोभायुक्त वन में सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो। ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

0: आपने अभी सुना श्री रामचरितमानस का भाग 260।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: घुंघरू की तरह। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, एक पंक्ति मुझे याद आती है, एक पंक्ति मतलब कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं।

0: कोश में यूं तो हजारों शब्द हैं, कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का सम्यक प्रकाशन बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं है।
1: वाह,
0: शेक्सपियर ने भी कहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इज पोएट्री। प्यारे दोस्तों, रविंद्र जैन साहब का गायन पक्ष और संगीत निर्देशन का पक्ष जितना सशक्त है, उतना ही सशक्त है उनका लेखन। दादा, एक बहुत अच्छे दर्जे के साहित्यिक प्रतिभाशाली कवि और गीतकार हैं। इनकी प्रतिभा में कई बातें जुड़ गई हैं। चूंकि दादा लिख नहीं पाते हैं, दृष्टि मंद है, फिर भी ईश्वर ने इनको इतनी संपदाओं और प्रतिभाओं से नवाजा है कि ये स्पॉन्टेनियस वहीं के वहीं तुरंत वातावरण और माहौल को महसूस करके कविता कह देते हैं। ऐसे कवि बहुत कम होते हैं। और मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि आज की श्रेणी के कवियों में रविंद्र जैन साहब कवि के रूप में बहुत ऊंचे हैं। आपके लेखन के बारे में आपके अनुभव के साथ कुछ जानना चाहते हैं।
1: मुझे साहित्यिक मेरी अभिरुचि बहुत, जैसे मैंने आपसे बताया, प्रारंभ से ही है
0: जी।
1: लिख कितना पाया हूँ वो तो नहीं कह सकता, लेकिन सुना बहुत अच्छा अच्छा है। हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे ऐसे कवि हैं, ऐसे लोगों ने रचनाएं की हैं कि बस आदमी पढ़ता रहे। मैं ये मानता हूँ उम्र बहुत कम है ऐसी कलाओं को, ललित कलाओं के लिए, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ लें, सुन लें, वही हमारी उपलब्धि है। मैं थोड़ा बहुत जो कहता हूँ वो, जैसा कि आपसे बताया, अलीगढ़, एक तो उसकी उसमें फाउंडेशन में अलीगढ़ मौजूद है, फिर कलकत्ते गया, टैगोर का उनको पढ़ा सुना, बहुत
0: साहित्य पढ़ा टैगोर
1: जी, बहुत अच्छे अच्छे वो तो क्या कहें, लाजवाब लोग हैं। आज आप कविता के किसी मोड़ पे खड़े हो जाइए, गुरुदेव आपको वहाँ मिलेंगे।
0: शिलालेख हैं वो लोग,
1: शिलालेख
0: बिल्कुल।
1: फिर वहाँ के कंपोजर काजी नजरुल इस्लाम और डीएल राय, बड़े बड़े बड़े विशेष लोग,
0: कमाल के लोग हैं ये।
1: जी जी, तो उन वहाँ से मैं मुझे जो गढ़ा गया है, उन सब चीज़ों ने गढ़ा है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज हम जो कुछ कहें, कम से कम ऐसा कहें कि उन लोगों को शर्मिंदगी ना हो, उनसे अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको शर्मसार ना होना पड़े हमारे बुजुर्गों।
0: अच्छी बात कही आपने। हम चाहते हैं कि आपकी सृजन की हुई कुछ रचनाएं हम अपने श्रोताओं को सुनाएं।
1: अच्छा,
0: और
1: जी।
0: आपके काव्यात्मक हुनर का भी दर्शन करें।
1: फिल्म में तो आपने महसूस किया कि मैंने हमेशा उन गीतों की ऊंचाई देना चाहिए है, ऐसे लफ्ज लाया हूँ, संकेत है और इस तरह के, जल जो जल न होता तो ये जग जाता जल,
0: जी
1: है ना, अलंकारों का भी प्रयोग है, सजना है मुझे सजना के लिए।
0: और बल्कि मैं यह यूं कहूंगा कि आपने फिल्म और साहित्य को बहुत नजदीक लाने की कोशिश की है, जिसमें आप सफल हुए हैं। तो कुछ अपनी रचनाएं आप,
1: मैं आपको सुनाता हूं। एक पीछे एक मेरी किताब शाया हुई थी गजलों की
0: जी,
1: उजालों का सिलसिला, उसमें से एक गजल के दो तीन शेर आपको सुना रहा हूं।
0: इरशाद।
1: उफ ये सफर तवील ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफर तवील ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफर तवील ये छालों का सिलसिला, उस पर मिजाज पूछने वालों का सिलसिला।
0: क्या बात है, वाह वाह, उस पर
1: मिजाज पूछने वालों का सिलसिला। हम ही ना अपनी कैद से बाहर निकल सके,
0: क्या बात है,
1: वरना कहाँ नहीं है उजालों का सिलसिला।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: वरना कहाँ नहीं है
0: उजालों का
1: सिलसिला। इंसान को सारी उम्र फिर आता है दर बदर, दो रोटियों का चारने वालों का सिलसिला।
0: क्या कहने, इसमें तो आपने पूरा दर्शन डाल के रख दिया दादा। वाह,
1: इसमें बहुत सारी गजलें हैं, नज्में हैं।
0: कुछ और इरशाद करें।
1: एक हिंदी की कुछ रचनाओं का संकलन
0: स्वागत है
1: अभी निकालना चाह रहा हूँ, उसमें से एक गीत आपको सुना रहा हूँ। और उस गीत की विशेषता यह है कि वो गीत मैंने, मेरी जीवन संगीनी दिव्या जो है वो इसी गीत से प्रभावित होकर जीवन में आई, सौदागर की रिलीज पे मुझे मिली थी, लेकिन उसके मुझे मेरा साहित्यिक पक्ष उसको बहुत पसंद था।

0: दादा, आपके इतने सुंदर गायन और इतनी सुंदर शब्द रचना से ऐसा लगता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर कहीं ना कहीं है जिसने आप जैसा प्रतिभा संपन्न कलाकार इस धरती पर उतारा। अच्छा, आपके लेखन के सफर में आगे चल रहे हैं तो आपने बहुत सी सांकेतिक भाषाएं और तुलनात्मक भाषाएं और अलंकार बहुत इस्तेमाल किए अपने गीतों में, जिससे संगीत का यानी फिल्मी संगीत का स्तर बहुत ऊंचा जा पहुंचा है। कुछ ऐसे गीतों के बारे में जानकारी दें जिसमें आपने कई उपमाएं और कई अलंकार इस्तेमाल किए हैं और कॉमर्शियली भी वो गाने बहुत हिट हुए हैं।
1: सबसे पहले वो सौदागर में आशा जी का गाया हुआ गीत सजना है मुझे सजना के लिए।
0: वाह वाह वाह, क्या उपमा है।
1: एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ। भूषण जो वीरस के कवि हैं आपने उनको जरूर पढ़ा होगा।
0: जी जी।
1: ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं।
0: वाह वाह।
1: तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती है, नगन जड़ाती थी सो नगन जड़ाती है। तो इसी तरह का प्रयोग इस गीत में है।

0: आशा जी बहुत वर्स्ट स्टार आर्टिस्ट हैं, हर तरह के गीत की गाने की आशा उनसे की जा सकती है। इसी तरह वो गीत गाता चल में ये है ना अपना उसका टाइटल सॉन्ग,
1: गीत गाता चल
0: जल जो ना होता तो ये जग जाता जल।
1: वाह वाह वाह,
0: एक शब्द के दो अर्थ
1: निकलते हैं।

0: जब कोई गीतकार संगीतकार बनता है और जब कोई संगीतकार गीतकार बनता है तो वह रविंद्र जैन बन जाता है। दादा, आपके गीतों में, गीतों की पंक्तियों में शब्दों का इतना अच्छा फैलाव है, इतने अच्छे अर्थ हैं, गेयता के साथ साथ उनमें आध्यात्म भी स्वयं चला आता है जो आपके एक नहीं अनेक गीतों से जाहिर होता है। संगीत सरिता के प्यारे श्रोताओं, आज की इस कड़ी का सफर यहाँ समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में रविंद्र जैन साहब के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे।
1: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 7 बजे हैं। जन सूचनाएं

इसके अंतर्गत मौसम की जानकारी। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई। सवेरे 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 85% तथा न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय सुबह 5:05 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46। जन सूचनाएं के तहत ये थी मौसम की जानकारी।

2936 दिन के 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं, आपको बता दें, आज सवेरे 7:30 पर होगा हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय होगा हेपेटाइटिस, जागरूकता ही बचाओ। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर शाहना सफी। विषय से संबंधित सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर। हमारा नंबर है 2325558। एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

श्रोताओं आप सुनिए, एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा और उड़ान संख्या

0: श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा कशिश सवेरे 10 बजे, गीत गुंजन दिन के 11 बजे और 11:30 पर सुनिए गीत अतीत। एक 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी फरीदा खानम। श्रोताओं, 1:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। शाम 4:30 पर प्रसारित की जाएगी प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 19वीं कड़ी। जन सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के व्यवसाय प्रमुख और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर बड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की। समाज कल्याण निदेशालय ने पंखुड़ी पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील की है और कार्बाइन स्कोव तट पर आज और कल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के साथ सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। पैरा पावरलिफ्टिंग की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में झंडू कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। बिहार के नालंदा के रहने वाले झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। झंडू कुमार ने पोलियो और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के व्यवसाय प्रमुख

और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने कल लोक निवास में द्वीप समूह के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। इस दौरान द्वीप समूह में आने वाले बड़ी परियोजनाएं जैसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण ईंधन की मांग में होने वाली संभावित बढ़ोतरी, वैकल्पिक और अतिरिक्त पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, सीएनजी, ईवी और रिटेल आउटलेट स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। कैम्बल बे के निवासियों को सूचित किया जाता है कि जहाज़ों की लंबे समय से अनुपलब्धता के कारण ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट आई है, जिससे इस द्वीप पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित हुई है। आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रशासन के विशेष प्रयास जारी हैं। परिणाम स्वरूप 31 जुलाई तक पर्याप्त मात्रा में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहुँचने की संभावना है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत ब्लॉक परियोजना कार्यालय डिगलीपुर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 27 जुलाई को सीतानगर, कालीघाट और 28 जुलाई को केरलापुरम तथा स्वराज ग्राम के विवेकानंद बहुउद्देशीय सभागार में सुबह 9:30 बजे से लगेगा। इसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन, संबंधित हितधारकों को चिकित्सीय मूल्यांकन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी नामांकन, एडीआईपी एसएसए योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण एवं सहायक सामग्री वितरण के बारे में जानकारी देना है। एडीआईपी एसएसए योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज दिव्यांगता प्रमाण पत्र, नामांकन का प्रमाण, यूडीआईडी कार्ड, लाभार्थी का आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद अनिवार्य है। साथ ही पिछले 2 माह के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र भी साथ लाना होगा। इसके लिए केवल वे ही लाभार्थी पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 22,500 रुपये से अधिक नहीं हो। उधर समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना कार्यालय के तहत मायाबंदर ब्लॉक में विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए पहचान और मूल्यांकन शिविर लगाया जाएगा। इसका मकसद समावेशी शिक्षा कार्यक्रम और एडीआईपी एसएसए योजना के तहत मिलने वाले फ़ायदों के लिए बच्चों की पहचान करना, मेडिकल जांच करना और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। ये शिविर 29 जुलाई को मायाबंदर में डीईओ के सम्मेलन सभागार में और 30 जुलाई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहलगांव में आयोजित किया जाएगा। श्री देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में आज शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चिन्मय मिशन में सत्संग और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की ब्रह्मांडीय निद्रा में जाते हैं और इसी के साथ चतुर्मास की अवधि शुरू होती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पंखुड़ी पोर्टल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। समाज कल्याण निदेशालय कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, अनिवासी भारतीयों, कॉरपोरेट संस्थाओं और इच्छुक व्यक्तियों को पंखुड़ी पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित करता है। ये पोर्टल भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पंखुड़ी पोर्टल एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो संगठनों और व्यक्तियों को महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के कार्यक्रमों में सहयोग करने में सक्षम बनाता है। ये पोर्टल CSR और स्वैच्छिक सहयोग के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य, बचपन की देखभाल और शिक्षा, बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहलों में योगदान करने के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम प्रदान करता है। इस पोर्टल के माध्यम से मिलने वाला सहयोग सेवाओं को मजबूत करने और सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। विभाग ने सभी योग्य CSR संगठनों, NGOs, कॉरपोरेट संस्थाओं, NRIs और इच्छुक व्यक्तियों को पंखुड़ी पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण

निदेशालय से संपर्क किया जा सकता है। पर्यटन, खेल और युवा मामले, कला और संस्कृति विभाग, प्रशासन और नगर पालिका परिषद के सहयोग से आज और कल कार्बाइन स्कोप तट पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट और शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करेगा। वॉलीबॉल टूर्नामेंट पूरे दिन चलेंगे, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों दिन शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक होंगे। विभाग ने आम जनता को इस आयोजन में आमंत्रित किया है। कमोटा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आर्ट्स स्ट्रीम के तहत अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन नानकौड़ी के सहायक आयुक्त डॉ. क्षितिज ज्ञानराज सा ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों को शिक्षा के व्यापक अवसर, उच्च शिक्षा और भविष्य की तैयारियों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस पहल से नानकौड़ी द्वीप समूह के युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इस स्ट्रीम में अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और यात्रा जैसे विषय शामिल हैं। महात्मा गांधी कॉलेज मायाबंदर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कई स्नातक पाठ्यक्रम में कुछ सीटें खाली हैं। जो उम्मीदवार प्रवेश लेना चाहते हैं, वे 30 जुलाई को होने वाले परामर्श में शामिल हो सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले से आवेदन किया है, वे प्रवेश इकाई से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। विज्ञान केंद्र में आज शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक स्काई शो और कल शाम 5:30 बजे एवं 6:15 पर 3D शो दिखाया जाएगा। इस दौरान आगंतुकों को आकाश का स्काई मैप उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे ग्रहों एवं अन्य खगोलीय पिंडों की पहचान कर सकेंगे। प्रवेश शुल्क स्काई शो के लिए ₹10 प्रति व्यक्ति, 3D शो के लिए ₹20 प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। डिगलीपुर में कल ग्राम विकास अधिकारी एम. राजेंद्र कुमार की मौजूदगी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर ब्लॉक लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थान के सदस्यों, प्रधानों, पंचायत सचिवों, सैनिटरी सुपरवाइजर ने भाग लिया। इसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के बारे में जानकारी देना था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के व्यवसाय प्रमुख और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर बड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की। समाज कल्याण निदेशालय ने पंखुड़ी पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील की है और कार्बाइन स्कोप तट पर आज और कल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के साथ सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें।
1: जिंक की गोली 14 दिन।
2: माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हम विविध भारती FM श्री वी जयपुरम से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
4: वज्रदंती वज्रदंती विको वज्रदंती, विको पाउडर विको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
5: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान, यही है विको की पहचान।
6: विको वज्रदंती।
7: विको टर्मरिक

पैगाम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में, हसन कमल ने इसे लिखा था। आज संगीतकार जीएस कोहली की पुण्यतिथि है। आज भूले बिसरे गीत में हमने आपको सुनवाए जीएस कोहली द्वारा संगीतबद्ध गीत।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आंखों में इशारा हो गया।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

आपकी सेवा में ये था विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण विविध भारती मुंबई से।

0: मैरिड है।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, श्रोताओं आज का हमारा विषय है हेपेटाइटिस, जागरूकता ही बचाओ। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो लीवर को प्रभावित करती है। कई बार इसके शुरुआती लक्षण स्पष्ट नहीं होते, लेकिन समय पर जांच और सही उपचार से इसके गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। सही जानकारी, टीकाकरण और सावधानी ही इससे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। श्रोताओं, आने वाली 28 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक करना और समय पर जांच व बचाव के लिए प्रेरित करना है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शहाना सफीक। डॉक्टर शहाना जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: दर्शकों, विषय से संबंधित सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर। हमारा नंबर है 232558 और इस द्वीपों का स्टडी कोड है 03192। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस आखिर होता क्या है।
1: नमस्कार। जो हेपेटाइटिस है, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये मेनली लिवर से होता है। जो हमारा लिवर रहता है वो सूज जाता है, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर
0: जी,
1: जिसकी वजह से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन रहते हैं जिसमें ये कॉज होता है, जिसकी वजह से ये होता है। कि बहुत सारी वजह है, वायरस है जो इन्फेक्शन फैलता है, उसमें 5 प्रकार के होते हैं, वो तो मैं आपको आगे में एक्सप्लेन करूँगी। और अल्कोहल की वजह से होता है, जो अननोन ड्रग लेते हैं उसकी वजह से होता है, माँ से बच्चे को होता है
0: जी।
1: तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो, क्योंकि हमारा जो लिवर रहता है वो डिटॉक्सिफाई करता है हमारे बॉडी को, प्रोटीन भेजता है हमारे बॉडी को, रिलीज करता है, बाइल रिलीज करता है। बहुत सारे लिवर भी ऐसा एक एंजाइम्स है, एक ऑर्गन है हमारा बॉडी में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी लिवर रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
0: जी, बहुत अच्छी बात कही। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं डॉक्टर साहिबा, जैसे ए बी सी डी आपने बताया और ई, इसमें क्या अंतर है?
1: एक्चुअली हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई रहते हैं। जो हेपेटाइटिस ए रहता है उसको हम HAV बोलते हैं। वो यूजुअली कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, मतलब जिसको हम साफ सुथरा पानी और खाना, इजी वे में बताया जाए तो, जो कि फीको ओरल रूट से होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम पानी को अच्छा ना उबाले या खाना जो हम खाते हैं वेजिटेबल्स को अच्छे से ना धोए, यूजुअली इंडिया में ये बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस ए और ई जो रहता है दोनों एक ही समान है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस बी रहता है जिसको HBV कहते हैं, वो थोड़ा क्रॉनिक इलनेस है जो हमारे इंडिया में थोड़ा सीवियर है, ठीक है। वो यूजुअली बच्चे को माँ से हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, नीडल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। मोस्टली हेपेटाइटिस सी जो रहता है HCV, वो भी ब्लड, जब हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं तो बोलते हैं कि स्क्रीन करना है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस कैरियर कर रहा है तो मोस्टली ये ब्लड से फैलने की चीज है।
0: डॉक्टर साहिबा, जैसा अभी डी और ई इनके बारे में बातें करेंगे, कॉलर लाइन में ले लेते हैं
1: जी।
0: हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न रखिए, डॉक्टर साहिबा बैठी हुई है।
2: जी जी, तो मेरा डॉक्टर साहिबा को ये जो मेरा प्रश्न ये है कि जो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है, मतलब कौन, मतलब कितनी इसकी वैक्सीन होती है, कितना इसका कोर्स करना पड़ता है?
1: हेपेटाइटिस के जो वैक्सीन होते हैं वो हेपेटाइटिस बी सी के वैक्सीन होते हैं। उसमें यूजुअली हम पहले जब हम वैक्सीन लेने जाते हैं तो अगर आज आप लेने जा रहे हैं तो आज एक डोज लगा सकते हैं, फिर आज अगला है तो आज की तारीख में, मतलब 25 तारीख है तो नेक्स्ट 25 तारीख को, नेक्स्ट मंथ के एक महीना का गैप देते हैं हम, उसके बाद फिर 6 महीना के गैप में आपको बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा।
2: जी जी जी जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।
1: ठीक है, थैंक यू।
0: चलिए डॉक्टर, जैसे बात कर रहे थे ए बी सी डी जो हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं, जैसे आपने ए के बारे में बताया, बी के, डी और ई के बारे में क्या?
1: डी जो है जिसको हेपेटाइटिस बी रहता है, वही सेम चीज़ हेपेटाइटिस डी में भी रहता है।
0: अच्छा।
1: मतलब पीपल जो

0: इफेक्ट होते हैं हेपेटाइटिस बी में, वही पेशेंट सेम दे विल कैरी ओवर तो होता है। और हेपेटाइटिस ई जो है, जैसे मैंने हेपेटाइटिस ए के बारे में बताया,
1: जी
0: वो भी पानी और खाने से ही फैलता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप भारत में सबसे अधिक कौन सा हेपेटाइटिस पाया जाता है?
0: हेपेटाइटिस बी और सी
1: बी और
0: जा,
1: सी।
0: हाँ,
1: जी
0: पर भारत में अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया पे ज़्यादातर ए और ई के ज़्यादा सामान है, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पानी बॉयल नहीं करते हैं, स्लम्स रहते हैं बहुत सारे जगह पे,
1: जी
0: ठीक है, तो वो वेजिटेबल

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से। जी,
0: डॉक्टर साहब प्रश्न रखिए।
1: डॉक्टर साहबा को भी अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूँ, सहना बहन को। जी,
2: जी, वालेकुम अस्सलाम।
1: हेपेटाइटिस के बारे में जानना चाहता हूँ कि शाकाहारी आदमी या मांसाहारी आदमी दोनों को होता है ये?
2: हाँ, ये दोनों को हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि शाकाहारी है कि ये नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन, दोनों को हो जाता है ये।
1: जी, बहुत
0: आपके सवालों के जवाब मिल चुका होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग को अल्लाह ताला सेहत देवे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हेपेटाइटिस होने के मुख्य कारण क्या है, कृपया हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में समझाइए।
2: बहुत सारे रीजंस है हेपेटाइटिस होने के। जैसा पहला एक मोस्ट कॉमन जो हमारे देश में चल रहा है अल्कोहलिज्म, उसकी वजह से हेपेटाइटिस बढ़ने के चांसेस बहुत रहते हैं
0: जी
2: फर्स्ट। उसके बाद वायरस इन्फेक्शन, जो मैंने आपको बोला ए बी सी डी और ई।
0: जी
2: थर्ड, जो अननोन इंजेक्टेबल्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं उनको, तो ये सारे पेशेंट्स बहुत कॉमन रहते हैं। बच्चे से माँ को ट्रांसमिशन होता है, अगर एक माँ कैरियर होती है तो वो बच्चे को आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
0: जी
2: तो और हेल्थ केयर वर्कर्स, उन लोग भी, मतलब वी हैव टू बी ऑलवेज सेफ।
0: इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? क्या कई बार बिना लक्षण के भी यह रोग हो सकता है?
2: हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा पूछा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को हेपेटाइटिस उन लोग को है
0: जी
2: तो उन लोग को नहीं मालूम चलता, क्योंकि हम जब स्क्रीन करते हैं कोई सर्जरीज के लिए या तभी मालूम चलता है कि उन लोग को हेपेटाइटिस है। पर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो उन लोग को दिखा होगा, पर ये बहुत कॉमन सिम्टम्स की तरह दिखे होंगे,
0: जी
2: जैसे कि बुखार है, टायर्डनेस होना बदन में, फिर उल्टी आना, उल्टी की तरह लगना,
0: जी
2: ऊपर वाले पेट के हिस्से में दर्द रहना, फिर पेशाब एकदम येलो होना, मतलब डार्क कलर का
0: जी
2: होना। और एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है जॉन्डिस, जो हमारे आँख के जो सफ़ेद पार्ट है वो येलो
0: जी
2: हो जाते हैं। बहुत पेशेंट्स उस रीज़न से भी आते हैं। और जो हमारा मोशन रहता है, स्टूल रहता है, वो भी सफ़ेद हो जाता है, तो पेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा येलोइश कलर डिस्कलरेशन में आता है। तो ये
0: जी
2: सब बहुत कॉमन सिम्टम्स है और साइंस है जो आप देख सकेंगे पेशेंट को, अगर हेपेटाइटिस हो पाएगा तो।
0: ऐसे में लोग कैसे पहचानेंगे कि मुझे हेपेटाइटिस ही हुआ है?
2: क्योंकि पेशेंट जब आते हैं हमारे पास तो हम उनका ब्लड टेस्ट करते
0: जी
2: हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं। उसमें कुछ एंजाइम्स रहते हैं, SGOT, SGPT, तो वो एलिवेट रहता है। लीवर के जो एंजाइम ऑलिकिक रहते हैं, सीरम बिलरुबिन, वो भी एलिवेटेड रहता है। फिर हम अल्ट्रासाउंड अपडोमन करते हैं, उसमें
0: जी
2: भी हमको कुछ फीचर्स दिखते हैं। उसमें भी अगर फीचर्स में जो पॉजिटिव होता है, फिर जाके हम वायरल मार्कर्स करते हैं, जिसको हम HCV बोलते हैं, HIV बोलते हैं, हेपेटाइटिस का स्क्रीनिंग पूरा करते हैं। उसके बाद में हम लोग एक मैनेजमेंट मिल जाता है,
0: जी
2: तो वी यूजुअली स्टार्ट आर ट्रीटमेंट।
0: अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाए तो उनका इलाज कितने दिनों तक चलता है?
2: यूजुअली 6 months to 1 year तक चलता है। यूजुअली हेपेटाइटिस ए और जो ई रहता है
0: जी
2: उसके लिए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग को अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, सैनिटाइजिंग करना चाहिए, कुछ भी
0: जी
2: चीज़ को बॉईल करना चाहिए, और वो जाने जाने क्योर हो जाता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, हम जब साफ रहेंगे इन्वायरमेंट भी साफ
0: जी
2: रहेगा।
0: बहुत अच्छी
2: तो
0: बात कही।
2: हाँ, पर जो हेपेटाइटिस बी रहता है वो थोड़ा क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है। उसमें हम एंटीवायरल मेडिकेशन ही देते हैं, कुछ कोर्स होता है
0: जी
2: एंटीवायरल मेडिकेशन का, तो वो कोर्स स्टार्ट करते हैं। और जो हेपेटाइटिस सी रहता है
0: जी
2: उस, वो 95% क्योरेबल है विथ एंटीवायरल मेडिकेशन ओनली। तो वैक्सीनेशन तो मैं बोलूँगी कि सबको लेना चाहिए,
0: जी
2: जो अब ले रहे हैं तो फिर 1 महीने बाद का गैप में लेना चाहिए उसके बाद। और जो बूस्टर डोज है वो 6 months बाद हम लेते हैं।
0: अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस हो जाए तो क्या उन्हें दोबारा होने के चांसेस होते हैं क्या?
2: हाँ, एक एक टाइम में चांसेस होते हैं, बट हमको हर साल या हर 6 months में हमको स्क्रीन करना चाहिए हेपेटाइटिस
0: जी
2: के लिए।
0: अगर यदि कोई गर्भवती महिला को हेपेटाइटिस हो जाए तो उन्हें किस तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं आप लोग?
2: तो जब एक प्रेग्नेंट वुमन हमारे पास आती है हेपेटाइटिस के लिए, तो यूजुअली हम उसको स्क्रीन करते हैं और पहले हम उसको वैक्सीन दे डालते हैं।
0: जी
2: तो अब सोचो, इस महीने के लिए दे डाले, तो फिर उसको हम वही प्रोटोकॉल जैसे मैंने आपको बताया था, 1 महीने के गैप में, और उसको फिर 6 months के गैप में बूस्टर लेना पड़ता है। फिर उसको हम एंटीवायरल मेडिकेशंस में स्टार्ट करते हैं और बराबर से स्क्रीन करते हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन्स रहता है, HBIG बोलते हैं उसको,
0: जी
2: तो वो हम उनको 21 से 30 26 to 31

0: के बीच में जब वो गर्भवती रहती है तब हम उनको देते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी कैसे फैलता है, इनके बारे में कौन कौन सी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं?
0: हेपेटाइटिस बी और सी का फैलने का मोस्टली मैंने जब जो आपको बोला था ब्लड, ठीक है, तो फर्स्ट तो अल्कोहल, सेकंड जो ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शंस, हेल्थ केयर वर्कर्स जो भी, मतलब ज़्यादातर ये हेल्थ केयर वर्कर्स को आता है जो बायोमेडिकल वेस्ट जो उठाते हैं, क्योंकि समटाइम्स कोई नीडल रहेगा, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स रहेंगे जो उठाते हैं तो सडनली नीडल प्रिक हो गया
1: जी.
0: तो उन लोग को, मतलब वो अवेयर नहीं रहते हैं कब तो भी, तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, फिर इसके बाद ही हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये मैनेजमेंट किस हिसाब से जाएगा। और थर्ड पेशेंट जो डायलिसिस में रहते हैं उन लोगों को हेपेटाइटिस आने का चांसेस रहता है, जो और फैमिली में ही कोई हेपेटाइटिस पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन है पर वो अलर्ट नहीं है तो ये फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और जैसे मैंने आपको तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की बहुत कॉमन है तो प्रोटेक्ट करना चाहिए हर चीज़ से, तो प्रिकॉशंस यूज़ करना चाहिए, तो दिस इज़ द मेन कॉज जिससे हेपेटाइटिस ज़्यादा फैलने के चांसेस है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, ले लेते हैं। हेलो
2: मैडम।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन बोल रही है?
2: जी मैं शाइनी बोल रही
1: हूँ। हाँ शाइनी जी, सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब बैठी है। हेलो, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? शाइनी जी आपको हम सुन रहे हैं, बताइए सवाल पूछिए। हेलो शाइनी जी, सवाल पूछिए। इस कॉलर से हमारी बात नहीं हो पा रही है किसी कारणवश। डॉक्टर साहब, क्या हेपेटाइटिस छूने, साथ बैठने या भोजन साझा करने से भी फैलता है?
0: नहीं
1: क्या?
0: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक साथ बैठने से, हगिंग करने से या खाना शेयर करने से हेपेटाइटिस नहीं फैलती, ये यूजुअली ब्लड से होता है। और जैसे मैंने आपको कहा था पीको ओरल रूट, जो खाने और पानी, साफ रहना है, साफ खाना खाना है, उसकी वजह से ही फैलता है। मोस्टली ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कभी कभी उसकी वजह से भी हो सकता है, कभी कभी हम ब्लड लेते हैं जो पेशेंट ऑलरेडी हेपेटाइटिस से इफेक्ट होगा पर हम स्क्रीन नहीं करते हैं तो हम वो किसी और पेशेंट को चढ़ा देते हैं। जैसे ये सब पेशेंट्स होते हैं कैंसर पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है, जो लिवर कैंसर्स में हो जाते हैं, तो इसमें लिवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
1: हेपेटाइटिस की जांच कब और कैसी करनी चाहिए?
0: हेपेटाइटिस की जांच हमें तो हर नॉर्मल रूटीन चेकअप में करनी चाहिए, जैसे हम अपना हेल्थ चेकअप करते हैं वैसे हमें वायरल स्क्रीनिंग के चेकअप्स भी करने चाहिए, क्योंकि मेनली मैं बोलूँगी हेल्थ केयर वर्कर्स जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं और जो बायोमेडिकल चीज़ को मतलब वेस्ट को संभालते हैं उन लोग को, और पेशेंट जो सस्पेक्ट करे कि नहीं मेरे को जॉन्डिस है, क्यों मेरे को अननोन कॉज आया है, सडनली वेट लॉस हुआ है, जॉन्डिस आया है, तो उन लोग कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ देखे बॉडी में, तो जो साइंस एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि पेशेंट को बुखार है, उल्टी आ रहा है, आँखी में पीलापन दिख रहा है, तो उस रीज़न पे हेपेटाइटिस चेक किया जा सकता है हर केस में।
1: हेपेटाइटिस बी और सी का समय पर इलाज ना होने पर क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं?
0: हाँ बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि लिवर फाइब्रोसिस हो सकता है, मतलब लिवर में दाग आना स्टार्ट हो जाती है और लिवर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर लिवर फेलियर हो सकता है उसमें, और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब ज़्यादातर आजकल हमारे इंडिया में अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और ड्रग्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो ये पेशेंट्स में हम आजकल ज़्यादा देखते हैं जिसको अल्कोहल हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, जो ज़्यादा शराब पीने की वजह से अपना हेल्थ ख़राब कर दे, तो सबसे पहले लिवर, लिवर तो बहुत डैमेज हो जाता है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन, और मेन कॉम्प्लिकेशन है लिवर कैंसर, तो लिवर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, ये सब मेन कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं हेपेटाइटिस आने के बाद।
1: जी जी, तो यदि किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण दिखे तो उन्हें डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
0: जी जरूर लेनी चाहिए।

0: से बचाव के लिए कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं?
1: हेपेटाइटिस से बचाव के लिए हेपेटाइटिस ए और बी के ही खाली टीके अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी का तो कोई टीका आया नहीं है अब
0: जी
1: तक, पर हेपेटाइटिस ई का जो वैक्सीन है वो बाहर कंट्रीज़ में है पर अब तक हमारे इंडिया में तो आया नहीं है।
0: जी जी
1: हाँ,
0: जी
1: तो ए और बी के अवेलेबल है ज़्यादातर यहाँ
0: जी
1: पर।
0: नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण कितना आवश्यक है?
1: तो जब बच्चे पैदे होते हैं तो हम लोग उन लोग के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जस्ट आफ्टर द बर्थ 24 आवर्स में हम बच्चों को हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन दे डालते हैं
0: जी
1: और उन लोग को हम शेड्यूल बना के रखते हैं जो प्रॉपर वे। बट क्यों हम जब बच्चा एक कोई भी बच्चा एनी चाइल्ड पैदा होने के बाद सडनली 24 आवर्स के अंदर वो वैक्सीन दे देते हैं क्योंकि वी मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रिकॉशन के लिए हेपेटाइटिस वैक्सीन लगाना इम्पॉर्टेंट है।
0: जी अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाए तो किस तरह के खान पान शामिल करना चाहिए?
1: मतलब क्या खाना चाहिए? तो किसी को हेपेटाइटिस हो जाए तो पहले तो अल्कोहल तो नहीं पीना चाहिए फर्स्ट, और सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए जैसे कि भाजी हो गया, हर तरह के सब्जी खाना चाहिए और फ्रूट्स में भी हम हर तरह के खा सकते हैं। तो कुछ ना मतलब जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया या गोभी हो गया तो ज़्यादा एडिक्ट नहीं करना चाहिए, पर देखा जाए तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है उसको ज़्यादा खाना चाहिए और शुगर ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। पेशेंट जो ज़्यादा वेट हैं उन लोगों में मैं बोलूँगी कि एक
0: जी
1: हेल्दी वेट मेंटेन करिए क्योंकि कभी-कभी हम अपने आप को स्क्रीन नहीं कर पाते
0: जी
1: हेपेटाइटिस के लिए, तो लगता है कि नहीं ये कोई नॉर्मल बीमारी है, जॉन्डिस आ गया है, उसके लिए हम जॉन्डिस को ट्रीट करते हैं पर हेपेटाइटिस नहीं ट्रीट हो पाता। तो उसके लिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट क्रिएट करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए,
0: जी
1: कुछ भी हम खाते हैं तो उसको अच्छे से वेजिटेबल्स को धोना चाहिए, फ्रूट्स को धोना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स तो कभी नहीं खाना चाहिए हम लोग।
0: जी
1: यूजुअली मैं गांव साइड में देखती हूँ कि रॉ चीज़ उन लोग जल्दी खा लेते हैं,
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: मूली रहता है, गाजर रहता है, खाइए मैं मना नहीं करती हूँ,
0: अच्छे
1: पर
0: तरह साफ करके खाना
1: अच्छे से
0: चाहिए।
1: साफ
0: जी
1: करके सैनिटाइज करो, बॉईल करना चाहिए।
0: जी
1: अगर पानी पीते हैं तो अच्छे से बॉईल करिए, उसके
0: जी
1: बाद आप उसको ठंडा करके भी पी सकते हैं। वेजिटेबल्स खाते हैं उसको अच्छे से पकाइए क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ कीटाणु रहते हैं जो अंदर रहते हैं और वो बाद में जाके हमारे गट को
0: जी
1: एब्जॉर्ब नहीं होता तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ
0: जी
1: सकते हैं,
0: साफ सफाई से हम कई बीमारियों से बचे जा सकते
1: बचते हैं।
0: हैं। जी
1: यस,
0: इस सुरक्षित रक्त चढ़ाने और सुरक्षित इंजेक्शन का क्या महत्व है?
1: सुरक्षित रक्त के और ब्लड ट्रांसफ्यूशन और वैक्सीन के बारे में आप जो पूछ रही हैं, तो इंजेक्शन क्योंकि हम अब जो किसी को एक पेशेंट को अगर हम इंजेक्शन देते हैं तो वो पेशेंट को हम दूसरा पेशेंट को वो इंजेक्शंस नहीं दे सकते बिकॉज क्योंकि वो ब्लड कंटेंट रहता है उसमें।
0: जी
1: अगर किसी को हेपेटाइटिस और वही इंजेक्शन मैं किसी और को देती हूँ तो हेपेटाइटिस बढ़ने की चांसेस रहती है। और जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है तब हम आई यूज़ टू सजेस्ट ऑल माई ब्लड ट्रांसफ्यूशन स्टाफ और कि स्क्रीन करिए, हर
0: जी
1: पेशेंट को स्क्रीन करिए ताकि किसी और पेशेंट को अननोन कॉज की वजह से हेपेटाइटिस ना हो जाए
0: जी
1: क्योंकि ब्लड ब्लड इज़ द ओनली रीज़न, मतलब ब्लड एक ऐसा एक चीज़ है जिससे ये हेपेटाइटिस फैलने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो कभी भी स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है हेपेटाइटिस के लिए जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं, और नीडल एक्सचेंज नहीं करना चाहिए कभी भी,
0: जी डॉक्टर
1: और
0: साहब।
1: डिस्कार्ड जो हम डिस्कार्ड करते हैं वो भी प्रॉपर वे में होना चाहिए ताकि किसी को भी नीडल स्टिक इंजरी ना हो। और
0: जी
1: अगर किसी को नीडल स्टिक इंजरी होता है तो हम उसके लिए भी वायरल स्क्रीनिंग करते हैं हॉस्पिटल जोन में।
0: जी
1: उसके बाद जब हमको उनका कोर्स रिजल्ट आ जाते हैं अगर मिलता है तो हम एंटीवायरल स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हम टेटनेस की डोज दे के
0: जी
1: उनको भेज डालते हैं।
0: चलिए रुसो, यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाए तो उसे अपने परिवार और समाज में किन सावधानियों का पालन करना
1: हाँ,
0: चाहिए?
1: तो अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स में अगर हेपेटाइटिस है तो मैं उन लोग को इतना ही बोलना चाहूँगी कि कभी किसी को ब्लड ना दे
0: जी
1: फर्स्ट, और क्या बोलते हैं ब्लड ना दे, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स जो रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करें, मतलब प्रिकॉशंस यूज़ करना चाहिए उसके लिए।
0: जी
1: और जो ये नेल क्लिपर्स रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: टूथ ब्रश रहते हैं, और कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमको एक्सचेंज नहीं, रेजर्स रहते हैं वो एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, और स्क्रीन करना चाहिए जो भी फैमिली मेम्बर्स को अगर पता चल जाता है कि है नहीं इसको

0: हेपेटाइटिस है, तो अब वी ऑल्सो हैव टू स्क्रीन आर
1: जी
0: सेल्फ,
1: जी
0: क्योंकि कब तो भी मतलब एक्सीडेंटली ये चीज़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. कभी कुछ काम करते हैं हम, ब्लड आ जाता है सब्जी काटने के टाइम
1: जी
0: पे, या कुछ भी एक्सीडेंटल कॉज बहुत ज़्यादा होता है. तो मैं सब फैमिली मेम्बर्स को यही बोलना चाहूँगी, अगर किसी के फैमिली में है तो डू नॉट डोनेट एनी ब्लड, और हाइजीन को मेंटेन करिए,
1: जी
0: और कुछ भी चीज़ एक्सचेंज मत करिए करके.
1: विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 की थीम क्या है मैम?
0: तो इसकी थीम है तो टू क्योर हेपेटाइटिस, जो कि है हमें प्रिवेंशन करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए. तो यही है हमारा थीम एक्चुअली, जिससे हम हेपेटाइटिस को जल्दी क्योर कर सके और जल्दी ट्रीटेबल हो पाए.
1: ये सरकार द्वारा हेपेटाइटिस की रोकथाम और उपचार के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है?
0: तो गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल प्रोग्राम ऑफ वायरल हेपेटाइटिस है, तो उसमें जो रहता है मतलब गवर्नमेंट ने नए स्कीम निकाली है, तो उसमें फ्री हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग करते हैं, और
1: जी
0: फ्री अगर जो पेशेंट्स को अगर हेपेटाइटिस से डायग्नोस होता है तो उन लोगों को फ्री मेडिकेशंस देते हैं, फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, हर बार कैंप बिठाए जाते हैं उसके लिए, और पीपल को सब गांव-गांव में जाके या सिटीज़ में कैंप बिठा के ये अलर्ट करते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है, क्योंकि
1: जी
0: हमारी जनता को मतलब यूजुअली ये मालूम नहीं रहता है कि हेपेटाइटिस क्या है, वो कैसे फैलते हैं.
1: जी
0: तो मतलब हर हर एक लैब्स के बाहर भी देखे होंगे कि सेक्सुअल प्रोटेक्शन के लिए हर एक प्रिकॉशंस रखा है,
1: जी
0: ये सब के बचने के लिए ही यूजुअली हम फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल. जो इन्फेक्शियस कंट्रोल टीम होती है उन लोगों को हम बोलते हैं कि एक प्रोटोकॉल बनाएं हर चीज़ के लिए, ये क्योंकि हेपेटाइटिस एक छोटी मोटी बीमारी नहीं है, अगर एक बार आ जाती है तो वो बदन को बहुत अंदरूनी तरफ से कमज़ोर कर देती है. जो पर हमारे गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है वो अच्छा है, क्योंकि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशली हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग फ्री होती है,
1: जी
0: और अगर डायग्नोस हो जाता है कि उसके मेडिकेशंस भी फ्री चलाए जाते हैं, फ्री कैंप्स रखते हैं, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यही
1: चलिए, बहुत
0: चल
1: अच्छी
0: रहा
1: बात कही। यदि किसी को हेपेटाइटिस से जुड़े कौन कौन से भ्रम या गलत धारणाएं जिन्हें दूर करना चाहिए?
0: क्या बोला आपने, सॉरी.
1: मतलब बहुत सारे लोग हेपेटाइटिस को लेकर भ्रम या गलत धारणाएं होते हैं कि ये होने वाले हैं, वो होने, तो उन्हें किसी किस तरह से दूर किया जा सकता है?
0: नहीं, हम लोग को मतलब फर्स्ट तो स्क्रीन करना चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहा है कि नहीं, मतलब भ्रम में रह रहे कि नहीं मुझे हेपेटाइटिस है, तो फर्स्ट मैं यही बोलूँगी कि आप अपने आप को स्क्रीन करिए
1: जी
0: फर्स्ट. स्क्रीनिंग करने के बाद, क्योंकि एंटीवायरल बहुत ज़्यादा के होते हैं, HIV होता है, SCV होता है, हेपेटाइटिस के बहुत तरह का प्रकार के होता है, वो सारे हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग करने चाहिए. उसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए,
1: जी
0: अल्ट्रासाउंड अपडोमन करना चाहिए, अगर उसमें अगर मालूम हो तो फिर उसके बाद में हम एंटीवायरल थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर आपको जो सिम्टम्स दिखाई दिए जैसे कि बुखार है, पीलिया होता है, पेशाब अगर डार्क होता है, मोशन में बहुत येलो कलर डार्क कलर दिख रहा है आपको, या बदन गिर रहा है, बॉडी बहुत वीक हो रहा
1: जी
0: है, तो उसमें जाके आपको हॉस्पिटल जाके ये करना, और वैक्सीनेशन लेना चाहिए. हर किसी को वैक्सीनेशन लेना
1: जी
0: चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हेपेटाइटिस को बहुत जल्दी क्योर कर पाए.
1: जी
0: तो दिस इज़ द ओनली रीज़न.
1: जी आजकल युवाओं में भी हेपेटाइटिस के मामले देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या
0: मोस्ट
1: है?
0: इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ एल्कोहल, एल्कोहल और अनयूजुअल ड्रग एडिक्ट, और जो कोकाइन होते हैं और ड्रग इंजेक्शन जो एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर युवाएं जो रहते हैं वो इफेक्ट होते हैं. यूजुअली एल्कोहल हेपेटाइटिस आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि आजकल हर कोई एल्कोहल ले रहा है, तो पर वो नहीं समझते कि वो एल्कोहल लेने से हमारे लिवर को कितना नुकसान है, क्योंकि लिवर एक ऐसा मतलब ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो गंदे चीज़ को बाहर करता है, मतलब क्लीन करता है हमारे बॉडी को, मतलब प्रोटीन इंड्यूस करता है, फिर बाइल को सीक्रेट करता है, बहुत वर्क. अगर लिवर ही काम नहीं करेगा बॉडी में तो हम हेल्दी कैसे रह पाएंगे.
1: जी बहुत अच्छी बात कही है। जो युवाएं सुन रहे हैं, आप आज का ये जो विषय हेपेटाइटिस है तो ज़रूर अमल करेंगे। अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा ताकि वे अपने लीवर को स्वस्थ रख सके और हेपेटाइटिस से बचाव कर
0: तो
1: सके?
0: मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि लिवर जो है वो एक बहुत साइलेंट

0: ऑर्गेन है जो हमारे बॉडी में बहुत अच्छी चीज़ के लिए काम करता है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी, जब पानी पिए तो बॉईल करिए, खाना जब खाएंगे तो हर एक वेजिटेबल्स को धोइए, अपने आप को वैक्सीनेट करिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल सेक्स ना करें, और प्रिकॉशंस यूज़ करिए हर चीज़ के लिए, और स्क्रीनिंग करिए अपने आप को। अगर कोई भी सिम्टम्स आता है तो नियर बाई हेल्थ केयर हॉस्पिटल से जाके जाँच कराइए, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से बात करिए, और हर चीज़ को प्रिवेंट करिए, क्योंकि अगर हम लिवर को अच्छे से नहीं रख पाएंगे तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और जो मेडिकेशंस है वो प्रॉपर मेडिकेशंस अगर हम लेंगे, कोर्स ऑफ थेरेपी बराबर लेंगे, तो ये जल्दी भी ठीक होने के चांसेस रहते हैं। और डाइट जो हम लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं वो लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, नॉर्मल बैलेंस डाइट रखिए, और मतलब ओबेसिटी से बचिए। अगर शुगर पेशेंट्स हैं तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए स्ट्रिक्ट डायबिटिक डाइट मेंटेन करिए, क्योंकि मतलब हमारा जो लिवर है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है हमारे बॉडी पे, जो कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो श्रोताओं, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का विषय था हेपेटाइटिस, जागरूकता ही बचाओ। अतिथि थी डॉक्टर शाहना सफी। तकनीकी सहयोग दिया शाहिद और ब्रह्मैया ने। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी लक्ष्मी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला।

0: pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस

0: विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शामिल सुझाव हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
4: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखे ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
4: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जल ग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
3: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी उमोशी पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। जंडू कुमार ने पैरा

0: उत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात, दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती।

दोस्तों, आजकल दुनिया से भोलापन यानी मासूमियत जैसे गायब होती जा रही है। जरूरत पड़ने पर बहुत चालाक और बड़े व्यवहार कुशल लोग अपने भोलेपन का स्वांग जरूर रच लेते हैं, लेकिन जल्दी ही ओढ़ी हुई मासूमियत गायब हो जाती है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि उम्र के हर पड़ाव में थोड़ी मासूमियत, थोड़ा भोलापन बचा कर रखना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि जो मासूम है वो ही किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं, जो भोले हैं वही किसी की भलाई कर सकते हैं।

हाँ तो दोस्तों, बात चल रही थी मासूमियत की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मासूमियत गुम होने लगती है। लेकिन जो लोग छल प्रपंच से अपने को दूर रख पाते हैं, जो लोग दूसरों से कम नफरत करते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख लेते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों में बुराई नहीं ढूंढते, जो लोग मन में कुछ और बाहर कुछ और वाला बर्ताव नहीं करते, वो लोग लंबे समय तक अपनी मासूमियत बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा भी यही कहना है दोस्तों कि कितने भी हो जाइए समझदार, कितने भी हो जाइए चतुर और व्यवहार कुशल, लेकिन मन के किसी कोने में बचाए रखिए अपनी मासूमियत।

दोस्तों, बच्चों में एक किस्म का भोलापन होता है और इसे उम्र भर कायम रखना चाहिए, लेकिन आज ये भोलापन बच्चों में भी जैसे समाप्त हो रहा है। आजकल के बच्चे इतने सयाने, इतने व्यवहार कुशल और तेज हो गए हैं कि उतने किसी जमाने में नहीं थे। आजकल के बच्चे बच्चे कम, सयाने ज्यादा लगते।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के।

0: हजार दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये फिल्म का नाम था। शेखर रावजियानी, सलीम मर्चेंट, नीति मोहन और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विशाल शेखर का संगीत, अनविता दत्त ने इसे लिखा।

0: शाहिद माल्या को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था उड़ता पंजाब, अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त प्रोग्राम चित्रलोक। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जावेद अली और बन ज्योत्सना की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दे दरादन फिल्म का नाम था, आशीष पंडित ने इसे लिखा और प्रीतम का संगीत था। दोस्तों आपको बता दें कि आज है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी विश्व डूबने से बचाव दिवस। सन 2021 के दिन इसे मनाने की शुरुआत हुई थी और इस दिन का मुख्य उद्देश्य पानी में डूबने की घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जीवन बचाने के उपाय बताना है। और हमें खासकर छोटे बच्चों को, 5 साल से 14 साल के बच्चों को डूबने के खतरों के बारे में बताना चाहिए और उन्हें इससे बचाव के तरीके भी सिखाने चाहिए। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूजा सिंह। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है, जिनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के व्यवसाय प्रमुख और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने कल लोक निवास में द्वीप समूह के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। इस दौरान द्वीप समूह में आने वाली बड़ी परियोजनाएं सहित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। कैम्बल बे के निवासियों को सूचित किया जाता है कि जहाज़ों की लंबे समय से अनुपलब्धता के कारण ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट आई है, जिससे इस द्वीप पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित हुई है। आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रशासन के विशेष प्रयास जारी हैं। परिणामस्वरूप 31 जुलाई तक पर्याप्त मात्रा में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहुँचने की संभावना है। और पर्यटन, खेल और युवा मामले, कला और संस्कृति विभाग, प्रशासन और नगरपालिका परिषद के सहयोग से आज और कल कार्बाइन स्कोव तट पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट और शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करेगा। वॉलीबॉल टूर्नामेंट पूरे दिन चलेंगे, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों दिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक होंगे। विभाग ने आम जनता को इस आयोजन में आमंत्रित किया है। ये थी अब तक की न्यूज हेडलाइन।

0: मोहित चौहान को अभी आप सुन रहे थे तमाशा फिल्म से, इरशाद कामिल ने इसे लिखा और A.R. रहमान का संगीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी
2: सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। किस्मत कनेक्शन फिल्म का नाम था। शबीर अहमद ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई।

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कुमार ने इसे लिखा और शारिब तोशी का संगीत।

0: ये जवानी है दीवानी इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का चित्रलोक प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी

0: आज के फनकार।
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

0: देखो।
1: हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थी। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का

बॉबी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जी एस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

सन 1963 में जी एस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूख कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

इसके बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है।

बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जीएस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जीएस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

साठ के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जी एस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जी एस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जी एस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जीएस कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे, कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बनाए गाने सुनकर।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जीएस कोहली पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट ने अपनी नवीनतम परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। इसमें उसने दुनिया के आधे हिस्से की यात्रा की और 20 उन्नत स्टार लिंक उपग्रहों को स्थापित किया। 124 मीटर लंबे इस रॉकेट को कल टेक्सास से लॉन्च किया गया। नए स्टारलिंक उपग्रहों ने लेजर लिंक का उपयोग करके मौजूदा उपग्रहों से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया। समग्र शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 27 जुलाई को सीतानगर कालीकट, 28 जुलाई को केरलापुरम तथा स्वराजग्राम, 29 जुलाई को मायाबंदर में डीओ के सम्मेलन सभागार में और 30 जुलाई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहलगांव में सुबह 9:30 बजे से लगेगा। और ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। पैरा पावर लिफ्टिंग की पुरुष हैवी वेट स्पर्धा में झंडू कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। बिहार के नालंदा के रहने वाले झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। झंडू कुमार ने पोलियो और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की। ये थी अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस।

ये गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ ठोकरें खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज, हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है। उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई, फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ, हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आ जाकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही है ना, आज आप कितने बजे आएंगी। जी हाँ मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहाँ हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहाँ देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा।

आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभालिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4 बस। और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची, तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन न आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे, इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं, इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप, अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा।

0: तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं?
1: जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई।
0: रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी।
1: आप अब तक नहीं गई?
0: सर, मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा, ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया।
1: पर सर, आप भी तो...
0: मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं।
1: नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो...
0: कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा,
1: नहीं नहीं, वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है।
0: सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूट कर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही

उसने सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी। माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी, ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Life is moving in fast mode. For hassle-free banking from the comfort of your home, switch to SBI Premier Banking.
2: Where you get dedicated virtual relationship associate who understands your needs, offers smart advice, and get every task done at lightning speed, giving you seamless banking and many other exciting benefits.
1: Visit your nearest SBI branch today and activate SBI Premier Banking. Terms and conditions apply.
3: क्यों? सर, मैंने सोचा कि संभाल लूंगी। सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा, क्या संभाल लेंगे आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं, और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं, पिछले एक घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूँ। आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है? रमेश ने पूछा तो

सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं। मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए। कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हाँ में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर, मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है। कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहाँ पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी, तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ। रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है। आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूँ। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार है। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहाँ किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता। वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

एक बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूजा। समाज कल्याण निदेशालय, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, अनिवासी भारतीयों, कॉरपोरेट संस्थाओं और इच्छुक व्यक्तियों को पंखुड़ी पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित करता है। पंखुड़ी पोर्टल एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो संगठनों और व्यक्तियों को महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के कार्यक्रमों में सहयोग करने में सक्षम बनाता है। महात्मा गांधी कॉलेज मायाबंदर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कई स्नातक पाठ्यक्रम में कुछ सीटें खाली हैं। जो उम्मीदवार प्रवेश लेना चाहते हैं वे 30 जुलाई को होने वाले परामर्श में शामिल हो सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले से आवेदन किया है वे प्रवेश इकाई से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। विज्ञान केंद्र में आज शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक स्काई शो और कल शाम 5:30 बजे एवं 6:15 पर 3D शो दिखाया जाएगा। इस दौरान आगंतुकों को आकाश का स्काई मैप उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वे ग्रहों एवं अन्य खगोलीय पिंडों की पहचान कर सकेंगे। प्रवेश शुल्क स्काई शो के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति और 3D शो के लिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित है। और देवशयनी एकादशी के उपलक्ष में आज शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चिन्मय मिशन में सत्संग और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की ब्रह्मांडीय निंद्रा में जाते हैं और इसी के साथ चतुर्मास की अवधि शुरू होती है। ये थी अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें आपने सुनी बुढ़ा मिल गया फिल्म के इस गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत, और अब आपको कारवां फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।

0: कारवां फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय। और आपको ये भी बताते चलें कि आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं शाम 4 बजे से फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, और इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। और अभी सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

चोर मचाए शोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मन मंदिर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान। और मैटिनी शो प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने बातें की थी जल है तो कल है, सुभजीत मुखर्जी हमारे बीच मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। और उन्होंने बीते हफ्ते बताया था कि कैसे जल संचय किया जा सकता है। उन्होंने शुरू किया था वृक्षारोपण से और तब उन्हें समझ में आया कि पेड़ तो तभी जिंदा रह सकते हैं जब पानी उनको जरूरत भर का मिलेगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के, क्योंकि आपके जो लिसनर्स हैं
1: जी
2: वो नेचर लवर्स हैं, वो ऑन ग्राउंड है, वो
1: बिल्कुल।
2: बातों में विश्वास नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, जो होते हैं कर्मयोगी हैं सब
1: जी।
2: उनके साथ मिलके जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आता है, जिस हिसाब से कॉल्स आते हैं, पिछले हफ्ते जब बात हुई, कई कई लोगों ने मुझे मेल किया है, इनफैक्ट मेरे इनबॉक्स लगभग भरने वाला था
1: जी जी।
2: तो बहुत अच्छा लगा इस बात
1: बिल्कुल, क्योंकि विविध भारती को पूरे देश में और बल्कि दुनिया के तमाम देशों में लोग सुनते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने तई बदलाव करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते जब हमने बातें की थी तो आपने जल तारा के बारे में बताया था। मैं ये जो बातचीत है इसको गांव की दिशा में मोड़ना चाहता हूं।
2: बिल्कुल जी।
1: गांव का एक सीधा साधा आदमी जिसका जमीन पर घर है और गांव में कुछ दूर पर उसके खेत हैं, या तो उसके खेत हैं या किसी और के खेत हैं जहां वो काम करता है, ऐसे लोग जो विविध भारती सुन रहे हैं उनको वाटर कंजर्वेशन या जल संचय से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं अपने तई, ये बताइए।
2: बिल्कुल जी, इनफैक्ट थैंक यू सो मच कि किसानों का विषय आपने लिया है, क्योंकि जो मेरे पास इतने मेल्स आ रहे हैं ज़्यादातर किसान हैं, उसमें मैं तो बोलूँगा 100 में से 80 किसान भाई बहन हैं जिनका मेल आ रहा है, एंड सब पानी से परेशान है
1: जी।
2: क्यों? कि उन लोग कह रहे हैं कि पहले हमारे पास कम से कम 10 महीना पानी होता था, आज हमारे पास 8 महीना पानी है, बाकी हम लोग 4 महीना खाली बैठे रहते हैं, हमें समझ भी नहीं आता क्या करें, खर्चा नहीं पूरा होता, इसलिए शहरों में जाके काम करना पड़ रहा है। एंड आजकल के न्यू जनरेशन अवॉइड कर रहे हैं खेती करना, क्योंकि ये पानी की कमी है, इसलिए वो हमें ये बोलने, एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि आप ऐसा कुछ बताइए हमारे पास 12 महीना पानी हो, ताकि हम 12 महीना काम करेंगे। एंड बात सही है, क्योंकि अगर हम 150 करोड़ आबादी है हमारे देश का, और इनको अगर हमें खाना खिलाना है तो हमारे किसान तो 12 महीना काम करना ही पड़ेगा ना उनको। अगर वो बोलेंगे कि 6 महीना पानी नहीं है, 4 महीना पानी नहीं है, हम काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, एंड थैंक यू सो मच आपने ये टॉपिक लिया
1: जी।
2: एंड और भी बहुत सारे सवाल आए हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट यस, किसानों को पानी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है उनका खेती के लिए। एंड खेती में पानी उपयुक्त मिले, क्वालिटी का पानी भी होना चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए, पानी का गुण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों को माइंड में रखते हुए स्पेशल खेत में जल संचय करने का थोड़ा डिफरेंट विधि है, लेकिन है यही सिस्टम। हमें शोष खड्डा बनाना है, हमें परकुलेशन पिट बनाना है, जल तारा बनाना है, बट उसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है, फ्री तरीका है, इसमें उनका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 1 या 2 दिन का मेहनत है। देश भर में आज भी जो खेती हो रहा है, हम लोग बोरवेल के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर,
1: और इस वजह से वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा
2: है। जी देखिए, एक है जब बारिश हो रही है उस समय हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें ग्रो करते हैं, जैसे चावल है, शुगर केन है, कॉटन है, कपास की खेती बहुत होती है, गेहूं की भी खेती होती है, जब पानी है तब हम लोग ये खेती कर लेते हैं, जब पानी खत्म

0: हो जाते हैं तो हम लोग सब्जियों पे आ जाते हैं, हरी सब्जियों पे आ जाते हैं। तो इसलिए पहला तो हमें ऐसी चीज़ों को ग्रो करना है जिसमें पानी की कम से कम ज़रूरत पड़े, या जब पानी बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारा 70% पानी बह के समुंदर में और नदी में चला जा रहा है।
1: जी
0: तो बारिश के समय जिन सब्जियों में और जिन चीज़ों में ज़्यादा पानी लगता है तो हमें उस समय ग्रो करना है, क्योंकि पानी बहुत होता है। जैसे ही पानी कम होने लगता है हमारा पूरा फोकस चला जाता है ग्राउंड वाटर, क्योंकि 6 महीना सोच लीजिए आपने बारिश का पानी खींच लिया, बाकी का 6 महीना हमें अगर काम करना है तो बहुत ज़्यादा हमारे किसान ज़मीन से पानी निकालने लगते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है सब्जियों का, लेकिन ज़मीन का पानी ख़त्म हो जा रहा है,
1: ये जो
0: इसलिए
1: 70% पानी चला जा रहा है समुद्र में, इसे कैसे बचाया जा सकता है और क्या एक आम आदमी इसे बचा सकता है?
0: बस वही सोच है।
1: जी
0: यहाँ हम जब एक किसान की बात कर रहे हैं या किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं या किसान को माइंड में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ, खेत का पानी खेत में रहना जरूरी है।
1: जी
0: एक तो हम लोग मेड़ बनाते हैं खेत में ताकि पानी रोक के रख सकें, दूसरा जब खेत में हम बात कर रहे हैं कि हमारा बोरवेल सूख चुका है, बोरवेल में पानी नहीं है, तो वापस डालना भी जरूरी है। ये तो वही बात होगी, ज़मीन के अंदर एक पानी को आप अगर आप मान के चलिए, अक्सर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जमा है, हज़ारों साल लगे हैं पैसा जमा करने में, मे भी आपके दादाजी पर दादाजी ने पैसा जमा किया था और अभी हम सिर्फ निकाल रहे हैं तो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, और वही हुआ है
1: पानी के साथ भी ऐसे ही है।
0: बस। तो पानी ख़त्म हो चुका है तो अब उसको हम लोग दोबारा वापस डालना ज़रूरी है। मैं सबको यही, ये जो जल संचय और जन भागीदारी का ही प्रेरणा है कि जिसमें हमारी कोशिश है कि हर बोरवेल के बगल में एक माइक्रो पॉन्ड कहते हैं इसको, जल कुंड कहते हैं हम लोग, जल तारा ही कहते हैं, जिसमें वो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, 15 फुट बाई 15 फुट और 2.5 फुट गहरा, एक छोटा
1: अच्छा
0: सा जल कुंड बनाना है ताकि बारिश का पानी आपके बोरवेल का जो पाइप है, बोरिंग का जो पाइप है, उसके बगल में जमा रहे। एक आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बोलूँगा और जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि जब भी हम बोरवेल खोदते हैं 6 इंच का पाइप अगर ज़मीन में जा रहा है तो 8 इंच की खुदाई होती है, जो मशीन होता है ना उसका मुंह बड़ा होता है, तो नीचे जो बड़े बड़े पत्थर है वो तो ग्राइंड हो चुका है, वो तो पाउडर बन चुका है। अब अगर आप बोरवेल के आसपास पानी इकट्ठा करेंगे बारिश का तो धीरे धीरे नॉन स्टॉप ज़मीन में पानी जाता रहेगा,
1: क्योंकि वो पिट जो है वो बड़ा बना है।
0: बड़ा बना हुआ है। बोरवेल क्या होता है, 200 300 400 हज़ार फीट नीचे से पानी निकाल रहा है, नीचे पत्थर है, पत्थरों के बीच में गैप है, उसको एक्वाफर कहते हैं, उसमें से हम पानी निकाल रहे हैं। जिस गैप से हमने पानी निकाला है, और बोरवेल का पाइप मतलब एक स्ट्रॉ मान के चलिए, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, स्ट्रॉ से पानी निकाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी स्ट्रॉ को यूज़ करके अगर हम पानी वापस डाल दें तो हमारे पास पानी दोबारा भर जाएगा कम से कम लागत में। और कम से कम लागत के आपको सिर्फ श्रमदान करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है।
1: अच्छा, कोई किसान या कोई गांव वाला अपने घर में, खेत में या अपने आंगन में जल संचय की कोई विधा बनाना चाहता है, कोई सिस्टम बनाना चाहता है, उसका साइज क्या होना चाहिए, कम से कम और
0: साइज
1: ज्यादा से ज्यादा?
0: बिल्कुल, बहुत बहुत अहम सवाल है ये
1: जी
0: सर। सबसे पहला जरूरी है, और जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि पानी को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है।
1: जी
0: अगर एक पानी को आप संचय कर रहे हैं कि खेत में इस्तेमाल करना है और खेत का पानी है, तो याद रखिएगा खेत में हमने पेस्टिसाइड्स डाला हुआ है, यूरिया डाला हुआ है, फर्टिलाइजर डाला हुआ है, टॉप सॉइल का पानी है, तो वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डिफ्रेंशिएशन हम मेंटेन रखें। जिस बोरवेल में आपने खेत का पानी डाला है तो 1 किलोमीटर दूर भी अगर आप उस पानी को निकालेंगे तो वो जहरीला हो सकता है, आपके पीने लायक नहीं है। इसलिए घर में जो आप पानी जमा कर रहे हैं वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एकदम साफ़ होना ज़रूरी है। छत का पानी आप उसमें डाइवर्ट करवाइए, छत का पानी साफ़ होता है, पहले बारिश का पानी बह जाने दीजिए, फिर छत एकदम साफ़ हो जाता है, उस पानी को आप बोरवेल में डायरेक्टली इंजेक्ट कीजिए। एक दो टेक्निक है, डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज, इनडायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज। तो छत का पानी बहुत साफ़ होता है, उसको आप बोरवेल के अंदर डालिए, साफ़ रहेगा, आप पी सकते हैं। खेत का पानी खेत में इस्तेमाल करेंगे उसको पीने में नहीं आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। एंड जल संचय उतना कीजिए जितनी आपकी ज़रूरत, बहुत इजी फॉर्मूला है, किसी भी शहर में है, किसी भी गांव में है, कितना बारिश हो रहा है, कितने समय के लिए बारिश हो रहा है, आपको बता देगा कि कितना आपके पास छत है, उस हिसाब से कितना पानी आप कैच कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको सेव कर सकते हैं। चाहे आप एक टंकी बना के सेव कीजिए या परमानेंटली भूजल ग्राउंड वाटर में उसको ज़मीन में समाने दीजिए, जितना सोख हो जाएगा, आप जैसे कि मैं कह रहा हूँ उसमें इवेपोरेशन नहीं है, निकाल के इस्तेमाल करते रहिए, 10 साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे वो ज़मीन के अंदर मिलेगा। बाकी अगर आप खेत है आपको पानी ज़्यादा चाहिए तो आपको सिस्टम ज़्यादा बनाना पड़ेगा। साइंस ये कहता है हर एकड़ में एक जल संचय होना चाहिए, हर एकड़ में एक जल तारा इंस्टॉल होना चाहिए, हर एकड़ में अगर आपके पास बोरवेल है, देखा जाता है हर एकड़ में एक बोरवेल मिल जाता है आजकल, तो बोरवेल इतना ज़्यादा लोगों ने बना दिया है, बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे देश में। एंड बोरवेल भी चार वैरायटी के होते हैं, ये लोग आइडेंटिफाई अक्सर भूल जाते हैं ये चीज़। एक होता है फेल्ड बोरवेल, हमने एक जगह ड्रिल मशीन से 300, 400, 500 फीट खड्डा किया और पानी मिला ही नहीं, हम तो भूल ही जाते हैं कि ये भी तो बोरवेल है,
1: और उसके बाद उसको छोड़ दिया।
0: छोड़ दिया आपने।

0: सूख चुका है।
1: जो पहले आता था पिछले 5 साल से वहाँ पानी ही नहीं आया है। मतलब कहीं ना कहीं पानी आता था, अभी नहीं आ रहा है। मतलब पानी डालेंगे तो जाएगा ही जाएगा।
0: यस,
1: तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, डेड बोरवेल को अलाइव कर देना। मुर्दा को हम लोग जान डाल सकते हैं।
0: जी जी,
1: वहां पे भी आप जलतारा लगा दीजिए। फिर मैं आ जाता हूँ ड्राई बोरवेल, मतलब पिछले साल यहाँ पे पानी था, आज पानी नहीं है।
0: इसका क्या मतलब है?
1: मतलब ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो गया।
0: डेड बोरवेल में भी तो ग्राउंड टेबल वाटर नीचे
1: डेड बोरवेल आना बंद ही हो गया है 5 सालों से। 5 साल का रिकॉर्ड बताता है पानी ही नहीं है। बट ये है ड्राई बोरवेल, जो पिछले साल पानी था आज नहीं है। ये फ्रेश फ्रेश अभी अभी मरा है ये।
0: तो इसको जिंदा जल्दी किया
1: तुरंत
0: जा सकता है।
1: इस प्रायोरिटी है
0: जी,
1: एंड चौथा कैरेक्टर में बोलता हूँ पार्शियली ड्राई। मतलब अक्सर लोग फोन करते हैं, भाई साहब मेरा 3 घंटा पानी देता था, अभी सिर्फ 15 मिनट पानी दे रहा है। पिछले साल इसी समय 2 घंटा पानी देता था, आज सिर्फ आधा घंटा पानी दे रहा है। तो ये पार्शियली ड्राई हो चुका है। या पिछले महीने तक पानी देता था, अभी पानी नहीं दे रहा है। मैंने मेरे पास अभी जैसे किसान भाइयों का जो मेल आया है, जैसे पिछले हफ्ते आपने मेरा ये इंटरव्यू लोगों को दिखाया, ज़्यादातर यही बोल रहे थे कि हमारा पिछले साल जून महीने में पानी था, इस बार जून महीने में पानी नहीं है। पिछले साल मई महीने में पानी था, अभी भी बारिश नहीं आई है, तो हमारा पानी नहीं है। तो मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश उनको साल भर पानी मिल रहा है। बट कई ऐसे बोरवेल हैं जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक सब सूखने लग जाते हैं। उनको भी हम लोग ये 4 कैटेगरी को माइंड में रखते हुए जल तारा बना सकते हैं। 15 फीट बाय 15 फीट, 2.5 फीट गहरा खड्डा, बस इतना
0: ये तो
1: ही
0: कोई
1: है।
0: बहुत बड़ी बात नहीं है,
1: बस श्रमदान हो रहा है। एंड थैंक यू NSS, थैंक यू NCC, ग्रीन क्लब,
0: जी,
1: जो हमारे कॉलेज के बच्चे जा जाके ये बना रहे हैं। पालघर में हमने 750 से ज्यादा इंस्टॉलेशन किए हैं पिछले 1 सालों में,
0: और इससे बड़ा भारी बदलाव आया होगा।
1: और सब अलाइव हो गए, सारे मरे हुए बोरवेल जिंदा हो गए, और क्या, पानी ही भरा हुआ, सब खुश हो गए हैं।
0: अच्छा, जो देश के सुदूर इलाकों के स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, मोहल्ले इस मामले में क्या कर सकते हैं? खासतौर पर अब यह हो रहा है कि इंडिपेंडेंट हाउसेस की जगह पर अपार्टमेंट आ गए हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अपार्टमेंट में यह होता है कि एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मैं क्यों करूं, वो करे, तो सब मिलकर करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये कितना आसान है कि एक बिल्डिंग के लोग भी एक साथ आ जाएं और इस काम में जुट जाएं?
1: देखिए, ये 2 अलग अलग पहलू हैं, मैं बताना चाहूँगा। मैंने जो कुछ 2.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दिया है जल संचय के ऊपर, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस जुड़ गए इसलिए हो पाया। जब भी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एक एक जल तारा इंस्टॉल करते हैं, स्कूल में 500,000 बच्चे होते हैं, वो सीख जाते हैं ये चीज़, और वो घर जाके माता पिताओं को बताते हैं कि हमने ये सीखा है, हमारे स्कूल में दिखाया गया है, और हमने ये बनाया है, हम अपने घर में भी बनाएंगे, और जिसमें कोई खर्चा नहीं है। और सबको मैं यही बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा काम मत कीजिए, 4 फुट बाय 4 फुट और 3 फुट खड्डा बनाइए, और छत का पानी उसमें डाइवर्ट कर दीजिए। हमारा काम शुरू हो गया जल संचय का। तो ये जहाँ यूथ पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान आज सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि हमारे देश का यूथ इसमें जुड़ चुका है। तो वही मेरी कोशिश कर रहा हूँ, स्वच्छ भारत अभियान का इंस्पिरेशन लेके कि हम लोग इसमें यूथ को जोड़ें। तो स्कूल, कॉलेज, NSS, NCC, ग्रीन क्लब, सबको इसमें जोड़ने की कोशिश है, जिसने बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लिया है, बिकॉज इन लोग जुड़ चुके हैं। बाकी शहरों में जल संचय करना आसान है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर मेंटेन करना आसान है। खेतों में हमारे पास छत नहीं होते। अगर मैं मुंबई की बात करूं, अक्सर लोग कहते हैं कॉन्क्रीटाइजेशन, हर शहर में इतना कॉन्क्रीट बन चुका है, इतने छत बन चुके हैं कि छत का पानी बहने ना दें। छत का पानी एक बारिश के बाद एकदम साफ पानी आता है, वो पीने लायक पानी है। हम उस पानी को तुरंत हर घर जल संचय जो अभियान चल रहा है, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स, छत का पानी है, मेरा छत मेरा पानी, मेरा स्कूल मेरा पानी है, वही मैं सबको बोल रहा हूँ। और गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि आप अपने हिस्से का, आपके पास जो पानी आ रहा है आप रोक के रखिए, आपका छत नीचे पानी जाएगा तुरंत। इसमें खर्चा कम है, जैसे कि मैंने कहा मेरा कोई भी प्रोग्राम 10,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, बड़े से बड़ा। और बोरवेल तो हर घर में है आज के ज़माने में, ट्यूबवेल, बोरवेल, हैंडपम्प भी उसी कैटेगरी में आता है। कुएँ, कुएँ को लोग अक्सर बुझा देते हैं, कुएँ में पत्थर डाल के बंद कर देते हैं। कुओं को आप लोग बिल्कुल बंद मत कीजिए। छत का पानी एक बारिश के बाद जो दूसरा पानी आ रहा है, उसको कुएँ में बिल्कुल, बस पाइप को तो आपको बस जो गटर में बाहर जा रहा था उसको आपने इधर कर दिया पानी,
0: डाइवर्ट करना है।
1: डाइवर्ट करना है।
0: आपने कुओं की बात की तो मुझे एक बहुत जरूरी चीज याद आ गई, और

0: वो है कि एक जमाने में तमाम छोटे शहर और गांव में कुएं, बावड़ियां, छोटे छोटे तालाब और इस तरह की वाटर बॉडीज हुआ करती थीं, जो अब खत्म होती चली जा रही हैं। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, बावड़ियों को बुझा दिया गया, सुखा दिया गया, पत्थर भर दिए गए, कुएं खत्म हो गए, झीलें, तालाब। क्या महत्व है इनका? पुराने जमाने से लोगों ने इस बात को समझा था, तभी तो इन्हें बनाया था।
1: मैं आपको क्या बताऊं, इसका जवाब दूंगा शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कहीं हम सबकी गलती है।
0: जी
1: एंड मैं कुछ इस बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं किसी को उंगली नहीं बता रहा हूँ किसी की गलती। पहले हम लोग तालाबों से पानी लेते थे, तालाब छोटे पड़ने लगे, आबादी बढ़ गई, तो हम लोग कुआं खोदना शुरू किए। कुआं छोटा पड़ने लग गया, आबादी बढ़ गई, हम लोग बोरवेल पे आ गए। बोरवेल कम पड़ने लग गया, म्यूनसिपलिटी बोली कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में पानी पहुँचा दूंगा। अब वो भी कम पड़ने लग गया है क्योंकि हम लोग बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, और जिस हिसाब से ये अलग अलग एलनीनो और अलग अलग सिचुएशन आ रहे हैं, जो तालाबें थी वो नेगलेक्ट होने लग गई है, जो कुएं थे वो ऑब्सलीट हो चुका है। आज मैं किसी को भी बोलूं कि चलो कुएं का पानी पिलाऊं, वो बोलेगा भैया मरना क्यों चाहते हो, अरे हाथ में एक प्लास्टिक का बोतल दे दिया जाता है, भैया इसी से पी लो। आप बताइए, मैं मुंबई में हूँ, कोई कुएं का पानी पीने लायक है? कोई नहीं है।
0: कुएं कहाँ हैं
1: अब जो कुएं हैं प्राइवेट है कुएं,
0: जी?
1: अब जिस चीज़ का कोई उपयोग ही नहीं है हम उसको रख के क्या करेंगे? ये तो वही बात होगी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, विंटेज कार पड़ी हुई है, चलती भी नहीं है, उसको क्या करेंगे? उसको कबाड़ में ही डालना पड़ेगा ना।
0: जी
1: तो कुएं का मतलब हो गया ये तो कबाड़ है हमारे लिए, जिसका उपयोग नहीं है। हम 10 फीट बाय 10 फीट का खड्डा है पड़ा हुआ है, कोई गिर के मर सकता है, उसका पानी खराब हो गया, कुएं का मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा है 10 सालों से, तो लोगों ने उसको बंद कर दिया, उसके ऊपर पार्किंग लॉट बना दिया, क्योंकि पार्किंग लॉट सोसाइटी में रहेगा तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं सोसाइटी को, तो कुआं रख के फ़ायदा क्या है? जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि कुएं का फ़ायदा है, जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं बोलेगी या कोई बुद्धिजीवी नहीं बोलेगा या हम आप इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो लोगों को लगेगा कुआं बेकार है। वही हुआ तालाब का सिचुएशन। मैं बंगाल गया था अभी, मैं बेंगलुरु गया था, चेन्नई गया था, जो सिटी ऑफ लेक्स बेंगलोर को बोला जाता था, अब तो लेक्स तो नज़र ही नहीं आता है मुझे। बंगाल में आपको पता है मेरे दादाजी की शादी दादी के साथ क्यों हुआ था? क्योंकि उनके पास एक तालाब था।
0: ओ हो,
1: मेरी दादी की जो मम्मी थी उनसे मिली थी, उन्होंने कहा था उस समय पहले ज़माने में जिस लड़के के पास तालाब है मतलब वो क्वालिफाइड है, तुम डॉक्टर इंजीनियर बाद में हो, तुम्हारे पास तालाब है मतलब पानी है, तुम्हारे पास तालाब है मतलब मच्छी है, तुम जिंदा रहोगे,
0: क्या बात है।
1: बाकी पढ़ाई लिखाई अपने जगह। तो वो कल्चर कहाँ गया है? तालाब इतना महत्व होता था, आज के ज़माने में लोग गाड़ी खरीदते हैं अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए, बैंक बैलेंस दिखाते थे, उस समय बैंक बैलेंस और एफडी यही होता था, तालाब
0: तालाब होता था जो
1: है भाई इसके आदमी के पास।
0: हमारे शहरों के तालाब, कुएं, हमारी झीलें, बावड़ियां, ये धीरे धीरे विलुप्त तो होती चली गई हैं।
1: बहुत ज़्यादा, और एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये भी आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ नदी, नदी बचाने के लिए नदी के किनारे जो घाट बनाने से नदी नहीं बचेगा, नदी होता है नदी के पानी से, नदी होता है नदी के अंदर प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए, वो नदी होता है जिसके अंदर लाइफ हो, जिसके अंदर पानी पीने लायक हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पियो पानी, बट कम से कम अगर इंसान पी सकता है तो बाकी जीव जंतु भी उसमें रह सकते हैं। नदियों में जो लाइफ आसपास होता था, नदियों के पानी में जो मछलियाँ होती थी, अलग अलग तरीके के जानवर होते थे, वो सब मरने लग गए क्योंकि नदी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो गया है।
0: जी
1: तो बहुत ज़रूरी है, जब मैं नदी की बात कर रहा हूँ, तालाबों की बात कर रहा हूँ, दीघी की बात कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा लेक हो, हर जगह क्वालिटी ऑफ वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मैं अक्सर मैंने देखा है अलग अलग म्यूनसिपलिटी के लोग, अलग अलग गवर्नमेंट के लोग, अलग अलग एनजीओज लोग, तालाब तो गंदा पड़ा हुआ है, तालाब में मतलब एक मछली नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन चारों तरफ बेंच लगा दिया, लाइट लगा दिया और वॉकिंग स्ट्रिप बना दिया है, वो वाटर कंजर्वेशन नहीं होता, वो लेक रिजुनोवेशन नहीं होता है।
0: जी जी
1: जल
0: बिल्कुल
1: शक्ति मंत्रालय ने जो रूल बनाया है एकदम परफेक्ट बनाया है, उसको पढ़िए, उसका पहला पॉइंट ही है क्वालिटी ऑफ वाटर, उस चीज़ को छोड़ के बाकी सब चीज किया जा रहा है। जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जल शक्ति मंत्रालय में एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, हमारे देश के सारे धुरंधर वहीं बैठे हुए हैं। सच बताऊं, मुझे मौका मिला उन लोगों के साथ मिलने का, बात करने का, काम करने का, वो बहुत अच्छे सोच है उनका, वो सोच लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो मैं सोचा आपके माध्यम से ये बात लोगों को बताऊं कि
0: बिल्कुल
1: आप, आपके पास अगर तालाब है, तालाब से आप बहुत कुछ इनकम कर सकते हैं, मैनग्रोव की कोई इंपॉर्टेंस नहीं करता है।

0: मैनग्रोव से कितना केकड़ा बनता है, कितने टाइप के खाना आता है। आज भी करोड़ों लोग दुनिया में मैनग्रोव से चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे लोग खाते हैं, खा के ज़िंदा हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनग्रोव कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक वाटर बॉडी में से आता है। उसी तरह हर तालाब को कंजर्व करना ज़रूरी है ताकि उसमें से मछलियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की चीज़ें उसमें से मिलती है। वाटर बेस्ड बहुत सारे फार्मिंग टेक्निक्स आ गए हैं आजकल, तो फ्लोटिंग फार्म भी शुरू हो गया है। और तालाबों का रक्षा करना हर किसान के लिए तो पहला धर्म होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने कैंपेन भी लाया है। वो पॉली पॉन्ड बना के देते हैं गवर्नमेंट के तरफ से। हर किसान को बोला गया है कि आपके पास अगर 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें से आधा एकड़ में आप पॉली पॉन्ड बनाइए, बारिश का पानी उसमें संचय कीजिए, उसके अंदर जमा कीजिए। और न्यू टेक्नोलॉजी है आजकल, टेक्निक्स हैं, लोग उसका बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट करोड़ों पॉली पॉन्ड बनाए हैं देश ने।
1: जी,
0: मैं तो बोलूँगा कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एक इंसानों का जो हिस्ट्री है, इतना बड़ा जल संरक्षण का अभियान कभी किसी ने न किया न कभी होने वाला है, जो इस समय हमारे भारत देश में चल रहा है।
1: जल संरक्षण से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब मुझे लगता है कि आपके काम के कुछ और दिलचस्प हिस्सों की बात करें। एक आपके काम का हिस्सा है जो आम से जुड़ा हुआ है, ये
0: जी
1: क्या मामला है भाई? आम
0: जी
1: आदमी से आम तक।
0: बिल्कुल, आम आम नहीं, खास है
1: अच्छा, आम के बीजों का संरक्षण, वो क्या मामला है?
0: जी। ये किसानों का लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है कि आज किसान इतना पानी के ऊपर निर्भर करता है, कभी ज़्यादा पानी आ गया हमारा खेत बह गया, कम पानी आ गया तो खेत जल गया, हम ये बोलते हैं। इसलिए पैडी बेस्ड कल्टीवेशन जो हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं पे गलती कर रहे हैं। एक फार्मर पूरा निर्भर हो जाता है कि हम चावल का खेती करेंगे या ऐसा खेती करेंगे जो सिर्फ टॉप सॉइल से आता है और जिसमें इतना इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर, क्या क्या डालना पड़ता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि पानी आए या ना आए, बारिश हो या ना हो, हमारा पेड़ कभी मरता नहीं है। एंड टॉप सॉइल, ऊपर का जो मट्टी है 1-1.5 फुट का, इतना मैं बोलूँगा इतना डेंजरस हो चुका है, जहरीला हो चुका है, कि ऐसा कुछ खेती किया जाए जो ज़मीन के सब सॉइल से आए। तो फल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो जड़ उसका नीचे तक जाता है, नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, न्यूट्रिशंस आ रहे हैं। और फल, रोटी खाने से अच्छा है कि आप फल खाइए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत सीरियस हैं, एंड बातचीत चल रही थी, जब बात हो रही थी कि हम लोग फल मिशन फ्रूट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मन की बात में लोगों को ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप फल खाइए ज़्यादा,
1: जी,
0: आप चावल क्यों खाते रहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में, हम लोगों ने हमारा खेत जितना जंगल था काट दिया है, जंगल काट काट के हम लोगों ने सीधा ज़मीन कर दिया, और उसमें सिर्फ चावल बो रहे हैं, शुगर केन बो रहे हैं, जितने फल के पेड़ काट दिए हैं, जंगल ख़त्म कर दिया है। अगर आप किसी को देखिए, जब खेती ख़त्म हो जाता है, सब पीला पीला मिट्टी दिखता है, काला मिट्टी तो दिखता भी नहीं है, इट इज़ ऑल बैरन लैंड। इसको बचाने के लिए मेड़ पे पेड़ प्रोग्राम आया है गवर्नमेंट का।
1: जी,
0: गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आपके पास जितना भी ज़मीन है, 20% ज़मीन पे फल का पेड़ लगाएं। और जब मैंने किसानों से पूछा फल का पेड़ क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो किसान बोले हमें तो कोई फल का पेड़ देता ही नहीं है साहब, हमें तो इमली का पेड़ दे रहे हैं फल के नाम पे, सिर्फ आंवला का पेड़ दे रहे हैं, हमें तो आम दीजिए तो मजा आए। तब मुझे समझ में आया आम आम नहीं है, खास है।
1: क्या बात
0: किसी भी
1: है।
0: किसान को बोलिए आम का पेड़, बोले हाँ तुरंत, कभी नहीं मना करेगा।
1: जी,
0: आम हम लोग खुद भी खा लेते हैं इतना ज़्यादा कि एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं, इतना
1: बिल्कुल।
0: बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। एंड आम एवरग्रीन पेड़ है, पतझड़ नहीं होता है आम में।
1: बिल्कुल।
0: और मैं लोगों को बोलता हूँ, आम का पेड़ एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें हर टाइप का जंगली जानवर रहता है।
1: वाह वाह,
0: एक चिड़ियों का घोंसला भी दिखेगा, उसमें लेपर्ड भी बैठा होगा, उसमें शेर भी बैठा होगा, उसमें एक बंदर भी बैठा होगा, और सांप भी रह रहा होगा। तो
1: हाँ,
0: एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है।
1: इसलिए आपने ये मुहिम शुरू की।
0: इसलिए मुहिम, मेरी कोशिश ये है कि फार्मर्स को आम का पेड़ दिया जाए। और सिर्फ आम का पेड़ तो एक बहाना है, जब हम आम का पेड़ देते हैं तो उसके साथ 15 अलग अलग वैरायटी के पेड़ भी दिए जाते हैं,
1: फलों के।
0: फल के हैं, पॉलिनेशन के लिए है, इमली, वहाँ नीम का भी पेड़ दिया जाता है, अलग अलग वैरायटी होते हैं ताकि आम जो और बड़ा हो सके और नेचुरल तरीके से हो सके।
1: क्या बात है।
0: ये है इसका टेक्निक।
1: अच्छा, अब चलते चलते मैं चाहता हूं कि जो आपके कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो जरूर दीजिए, ताकि ये तमाम बातें सुनने के बाद जो लोग प्रेरित हों, जो लोग इस पूरी मुहिम से जुड़ना चाहें या किसी और को जोड़ना चाहें, वो आपको किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेल कीजिए वाटर हीरो ऑफ

0: india@gmail.com पे,
1: जी
0: एंड पिछले बार की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लिखिए कि आपका समस्या पूरे डिटेल में, सिर्फ हेलो लिख के भेजेंगे तो फिर बहुत ज्यादा समय जाता है। आपको जल संचय करना है तो कितना जमीन है, किस शहर से बोल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, वो डिटेल में लिखिए।
1: जमीन का क्या साइज है,
0: बिल्कुल,
1: जमीन का क्या मिजाज है,
0: छत का क्या साइज है, अगर आपको घर में करना है, पानी की कमी है तो क्यों है, कितना है, थोड़ा सा डिटेल रहेगा तो हम और बेटर तरीके से समझा पाएंगे।
1: तो शुभजीत जी, आप सभी की ईमेल्स का इंतजार कर रहे हैं। आप ईमेल करेंगे तो इनसे जुड़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने इलाके में पानी की समस्या का निदान कर सकते हैं। शुभजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार फिर गाने की फरमाइश करनी होगी, फिर आपसे इजाजत लेंगे।
0: बिल्कुल जी, एंड इस बार गाना आप डिसाइड कीजिए।
1: देखिए, आप पानी पर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि माचिस फिल्म का पानी पानी रे गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। आप भारत के वाटर हीरो हैं, हमारे भी हीरो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से लोगों को प्रेरित करते रहिए और सार्थक काम करते रहिए।
0: थैंक यू सो मच, धन्यवाद।

ये था आज का मैटिनी शो। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग हैं और इस कार्यक्रम को जुबैर खान ने प्रस्तुत किया। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत, और हाँ, वाटर प्रिजर्वेशन की दिशा में हम सबको काम आगे बढ़ाना ही है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफ्रीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान

0: व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

अनजान के बोल आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। डॉन फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। और आपको ये बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: मेरे काम से होगा नाम दिया दाता का।
1: अरे अरे अरे अरे अरे हरे हाँ उड़ती चिड़िया तेरे सदके गिर मत जा।

0: सीता और गीता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आवाजें आशा भोसले मन्ना डे की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन लाया, कौन
0: लाया। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और आवाजें किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

हसरत जयपुरी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे से आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम यादों की महफिल, और अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये गीत।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राहुल देव बर्मन का संगीत गोलमाल फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। घर फिल्म से ये गीत सुनिए।

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कर माफ कीजिएगा यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो इसे पढ़ ही लिया है और अपने कमेंट्स भी देने लगे हैं। अगर आपके कमेंट्स आप कैसे भेजें ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फेसबुक पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की पेज पर जाना है, जिसके लिए आप www.facebook.com/vbsmumbai पर जा सकते हैं, या अगर आपके पास फेसबुक का ऐप है तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और देवनागरी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देंगी जो विविध भारती के कार्यक्रमों से संबंधित सारी पोस्ट यहाँ आती है, और रोजाना सुजीरा सफर की पोस्ट भी यहाँ आती है जिससे जिसमें कमेंट करके आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो आज की इस कार्यक्रम की इबारत है कि कभी कभी जिंदगी निराशा की जमीन पर चलती है, कभी खुद पर रोना आता है तो कभी हालात ही ऐसे होते हैं। मन नकारात्मकता से यूं जुड़ता है, या कहें कि यूं जूझता है, कि ऐसा लगता है मानो ये नहीं होता तो कोई और गम होता। आंखों के आंसू सपनों में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, भूली हुई यादों की परछाई भी हमारे आज को डराती है, पर क्या यही है सच्चाई? क्या इस नकारात्मकता से बाहर निकलने की नहीं है कोई राह? एक कदम बढ़ाकर तो देखो, मिलेंगे कई हाथ तुम्हें थामने को, ये साथ मांग कर तो देखो। तो ये है हमारी आज की इबारत, और कई बार जीवन में ऐसे वक्त आता है जब हमें लगता है कि किसी भी तरह की कोई उम्मीद या कोई आस बाकी नहीं है, लगता है कि कोई भी नहीं है जिसे हम अपनी बातें बता सके, अपना गम जिससे बांट सके, और जिसे हमारे गम से या हमारे दुख से कोई मतलब भी हो। और कई बार हम ऐसे समय किसी किसी दिन बस मन उदास होता है, और उस वक्त हम उदासी भरे गीत सुनते हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे मन की जो बातें हैं वो इस गीत के जरिए बिल्कुल सही तरह से आ रही है बाहर। तो कभी कभी जब निराशा होना स्वाभाविक है, एक भाव है, और वो हर तरह के भाव हमारे मन में हो सकते हैं, तो कौन से ऐसे दुख भरे गीत या सैड सॉन्ग हैं जो आप सुनना पसंद करते हैं, जो आपको पसंद है? भले ही आप निराश ना भी हों, उदास ना भी हों, तो भी आपको वो गीत बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो बताइए हमें, वो कौन से गीत हैं और आज के कार्यक्रम में कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं? इसके बारे में तो आपने बहुत सी बातें हम तक पहुंचा ही दी है, और निराशा से जुड़ी, नकारात्मकता से जुड़ी बातें भी, सुविचार भी आपने हम तक भेजे हैं, ये सारी बातें। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते चलते हैं, और हमें बताइएगा आप कि किस फिल्म का ये गीत है, और साथ ही बताइएगा कि कौन सा आपका पसंदीदा दुखी गीत है।

हम दोनों फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। ये हमारे सवाल का सही जवाब, और हमने आपसे ये भी पूछा था कि कौन सा ऐसा दुख भरा गीत है जो आपको बहुत पसंद है। भले ही आप निराश हों, दुखी हों या ना हों, कभी कभी हमें ये दुख भरे गीत भी अच्छे लगते हैं। तो हमारे साथियों ने भेज दिया है, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंसू भरी हैं जीवन की राहें, और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म दूर गगन की छाओं में के गीत के बोल हैं, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिलवाले फिल्म में मुझे एक गीत बहुत पसंद है, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, एक बेहतरीन गीत है, तो इनकी पसंद ये गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सरल शब्दों में कहें तो सकारात्मकता जीवन को आगे बढ़ाती है और नकारात्मकता इंसान को पीछे की ओर खींचती है। सकारात्मक सोच में हमेशा आशावादी रवैया, समाधान पर ध्यान और दूसरों की मदद करने पर होता है, जबकि नकारात्मक सोच में निराशावादी रवैया, शिकायत करने और ईर्ष्या की भावना रखना और हिम्मत हारना ये होता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक साथी ने कहा कि निगेटिविटी, निराशा से हरदम दूर रहना चाहिए, खुद को पॉजिटिव बनाओ, कुछ भी अपने हाथ में नहीं, समय संजोग की बात है, खुश रहना चाहिए, जो पल खुशियां दे उसे याद रखना चाहिए और उस पल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। गीत वो कह रहे हैं कि जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। हमारे एक और साथी हैं कह रहे हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इस तरह का रवैया हमें रखना चाहिए। एक और साथी कहते हैं कि आज गद्यांश में गम, आंसू, यादें, निराशा जैसे नकारात्मक विचारों से मन को सकारात्मकता की ओर कैसे ले जाया जाए, यही बात कही गई है। गम, निराशा, उदासी और अकेलापन जीवन के अनचाहे मेहमान जरूर हैं, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। निराशा के क्षणों में कृतज्ञता मन के अंधकार को मिटाने वाला सबसे अचूक दीपक है। सकारात्मकता एक दृष्टिकोण है जो आपके भीतर सोई हुई रचनात्मकता को जगा दे और अपनी जीवन ऊर्जा को पुनः जागृत कर देता है। तो बहुत सी बातें हमारे साथी भेज रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि नकारात्मकता या निराशा की भावना अक्सर आ सकती है हमारे मन में। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से आ सकती हैं, कभी कुछ परेशानियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती हैं जो इस तरह की नकारात्मकता हमारे मन में ला देती हैं। कभी कभी कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से भी इस तरह का भाव हम हमेशा महसूस करते रहते हैं। तो इसलिए भी इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना जरूरी है। जरूरी नहीं कि अगर कभी कभी निराशा या ऐसा नकारात्मकता लगे तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा अगर ऐसा लगता रहे एक लंबे समय तक, तो इसके लिए पूरी जांच पड़ताल करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी हमें जांचना ज़रूरी है कि क्या आपको पता है कि ये जो गीत हम सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है और कौन है इसके संगीतकार। तो बताइए गीत सुनकर।

माय लव फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत। तो संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथियों ने तो ये भी बताया कि शशि कपूर पर फिल्माया गया है ये गीत। हमारी एक और साथी कहती है कि मैं बहुत खुश मिजाज नेचर की हूँ, हर समय हंसती बोलती रहती हूँ, पर गीत मुझे सभी दुखी वाले ही पसंद हैं। भाई ये बात तो एक अलग ही चीज है कि भाई दुखी गीत पसंद है लेकिन दुखी रहना पसंद नहीं है, तो फिर चलाया जा सकता है। वैसे हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई मन की बात तो सबसे कहना मुश्किल होता है, और हमारे कुछ साथी कह रहे हैं दुख के बारे में बातें जब कर रहे हैं तो अलग अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई दुखी होना तो सभी के लिए स्वाभाविक है, सब हमेशा खुश तो नहीं रह सकते, लेकिन दुखी ही बने रहना ये एक प्रवृत्ति है जिसे हम बदल सकते हैं। और हमारे एक और साथी हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से गीत पसंद है। वैसे एक साथी ने कहा कि भाई आज की भारत में सभी गाने बहुत दुख वाले हो सकते हैं, पर कभी कभी सैड सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं। जीवन सुख दुख का मेला है आज के शब्द उन्होंने चुने हैं, और कहा है कि भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, कोई हमदम न रहा, ये वो तेरे प्यार का गम, ये भी इनकी लिस्ट में शामिल गीत था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, और मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह, ये गीत इन्हें पसंद है। तो जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, इस गीत के बोल को अगर हम ध्यान से सुने तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमेशा क्या किसी ऐसे व्यक्ति से हम मिलते हैं जिससे मिलने के बाद हम उदास हो जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या वो हमें बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं हमारी, या किस तरह से हमारा हमारे साथ उनका व्यवहार होता है जिसकी वजह से हम इस तरह से उदास हो जाते हैं, या उनकी उदास प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उदास होते हैं, तो इस बात पर भी गौर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग मित्रों की तरह मिलते हैं लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उन्हें आलोचना करने की इतना आदत होती है कि वो जब आलोचना करते रहते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो सामने वाले को दुख दे रहे हैं, और हम उनकी बातें उनके विचार अपने मन में ले आते हैं और दुखी रहने लगते हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि उन्हें बहुत गीत पसंद है, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, और हमारे एक और साथी कौन रोता है किसी की बात पर, इस गीत के बारे में उन्होंने गीत को ही लिख भेजा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी खुद पर कभी हालात पे रोना आया, और सही कहा है गीतकार ने कि कभी कभी अपनी ही नादानियां, बेवकूफियां, अपनी गलतियां और किसी के प्रति कुछ जरूरत से ज्यादा लगाव पर उनके व्यवहार से मन आहत होता है, तो ये गाना बहुत याद आता है कि कौन रोता है किसी और के आगे, उन्होंने लिखा। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि गीत के अथाह सागर में दुख भरे गीत एक तो नहीं है, फिर भी प्रिय गीतों में से अपनों में मैं बेगाना बेगाना और चंचल

चित्रलेखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हालांकि जो चीजें नहीं पूछी थी उसका भी सही जवाब दिया है। और इस बात से खुशी तो हुई ही जाती है कि हमने जो पूछा, आप कितनी अच्छी तरह से अपनी जानकारियां हमसे बांटते हैं और साथ ही अपने जीवन की बातें भी हमसे साझा करते हैं। हमारे साथी ने कहा कि आज की इबारत में जीवन की सच्चाई को दर्शाती है, जीवन की राह बहुत कठिन है, खुशी कम, दर्द बेशुमार है, दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि आंसू बहाने का समय नहीं, कोई भी कदम उठा, रास्ता बना, कोई साथ चले ना चले, कहीं तो मंजिल मिलेगी, जैसे नदियां कल कल बहती रास्ता बना लेती हैं। गीत उन्होंने बताया है, किसी राह पर किसी मोड़ पर, ये गाना उन्होंने अपनी पसंद का इसमें शामिल किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब जिंदगी की जमीन बंजर और निराशा से भरी लगने लगती है तो ऐसा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है कि तकलीफों का यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन रात चाहे कितनी भी घनी और लंबी क्यों ना हो, वो सुबह के सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। तो इसी तरह की सकारात्मकता जब हम अपने अंदर रखते हैं तो वो सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गम और आंसू की बातें और गाने, इंसान अपने मनोभावों को कभी व्यक्त कर पाता है तो कभी नहीं, खासकर जब बात गमों की हो, वो मन ही मन अपने हालात से जूझता रहता है और तब तन्हाइयों में वो दर्द आंसू बनकर बहता है। किसी को पाने के बाद खोना और मिलने के बाद बिछड़ना, कहते हैं कि जब दर्द आंसू से छलकता है, मतलब इंसान जब रो लेता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। दर्द भरी यादें कभी तो ताउम्र सताती हैं, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने मनपसंद कार्य में मन को लगाए, समाज सेवा, पशु पक्षियों की सेवा या गीत संगीत सीखे, गुने सुने, गाएं, व्यक्त होने से उस दर्द को कम कर सकते हैं। तो हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं, कहते हैं कि राहें बंद नहीं होती, बस नजर का दायरा कभी कभी छोटा पड़ जाता है, एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत हो

0: वो जिंदगी का पासा पलट देती है ये हिम्मत। जिंदगी के कैनवास पर अगर आज काला रंग गहरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रंग खत्म हो गए, उस ब्रश को उठाने और एक नया रंग भरने की देर है। तो सकारात्मकता से भरी ये संदेश हमारे साथी भेज रहे हैं और हम आपसे यही जानना चाहते हैं किस तरह से आप सकारात्मकता से सामना करते हैं अपने जीवन में कोई भी परेशानियों का, कठिनाइयों का। और दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है, जैसा कि हमारे साथी कहने की भी दुख ही होते हैं, अकेले में आंसू बहाते हैं वो भी चलिए कोई बात नहीं, अगर ये काम एक आध दिन हो रहा है, लेकिन लगातार अगर यही हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि बाहर निकलें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा या आपकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। कभी कभी हमारे मन का वहम होता है, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से, किस परिस्थिति में हैं, किस निराशा से जूझ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अगर हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो वो बात सुनते हैं। और सुख दुख की बात अगर हम कहें तो भाई सुख दुख से संबंधित ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत आपको सकारात्मकता का संदेश तो देगा ही। और फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताने वाले हैं।
1: दुख हो या

मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर, और बात हो रही है कि जब निराशा हमें घेरती है तो हम क्या करते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मिल जाए किसी प्यारे से दोस्त या किसी अपने का थोड़ा सा साथ या थोड़ा सा सहयोग, तो हमें लगता है शायद कोई इंसान इस परेशानी में रहेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ चीजें दौलत से नहीं बात करने से भी संभल जाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभार मन किसी जाने अनजाने दुख से या यूं ही निराश होकर उसी में डूबता चला जाता है, कभी कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसे में उस जगह से उठकर थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी चहलकदमी करें, एक दो लोगों से कुछ हल्की फुल्की बातें करके मन को बहलाएं, मन को कहीं और लगाएं तो कुछ मन हल्का हो जाता है, वरना जितना डूबोगे मन इतना ही डूबता जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक ही जगह पर बैठे रहने से भी कभी कभी वो बात हमारे मन से निकलती ही नहीं, तो जरूरी है कि हम बाहर निकलें, लोगों से मिलें, या उठकर बस एक चार पांच कदम भी अगर हम चल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस विचार से निकल पाते हैं और कुछ और भी सोच पाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत हमें जिंदगी के नकारात्मक पहलुओं के साथ ही सकारात्मक सोच की तरफ ले जाने के लिए सक्रिय कर रही है, किंतु सच्चाई इससे कुछ अलग है। सच्चाई सकारात्मक पहलुओं के करीब अवश्य ही है, और जैसे नकारात्मक ऊर्जा हमें सकारात्मक सोच की तरफ इशारा किया करती है, हम उससे ही उसकी सहायता से ही अपनी सकारात्मक सोच की तरफ प्रवृत्त होते हैं। उसी तरह हमें सकारात्मक सोच से भी बचते हुए उस अद्वैत आनंद की इबादत से ही ओतप्रोत रहते हुए संदेश देते हुए स्पष्ट करता है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, यानी जो भी वस्तु है वो गोविंद यानी भगवान की दी हुई वस्तुएं हैं और उन्हें ही हम समर्पित कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने कही एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों ही जीवन के एक पहलू हैं और इन्हें बदलते रहना चाहिए। जैसे कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ऐसा कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता, उसी तरह मन के विचारों को भी एक ही तरफ एक ही जगह पर बचाकर या जमा करके नहीं रखना चाहिए। हमारे एक साथी कहते हैं कि निराशा हर किसी के जीवन में आती है, अब ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि उसमें कितना आत्मबल है कि वो संसार के रचयिता पर विश्वास करते हुए नकारात्मकता को छोड़कर उस निराशा को आशा में बदलते हुए फिर से हिम्मत करके कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और जो निराशा का ही दामन थामे रहते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, इसलिए आशावान रहना ही जीवन की सच्चाई है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन की निरर्थकता का बोध ही घोर निराशा और नकारात्मकता है। कभी कभी मनुष्य अर्थहीनता की स्थिति से जूझता है तो मनुष्य का चेतन और अवचेतन दोनों ही पीड़ा से घिर जाते हैं। जीवन इच्छाओं और संभावनाओं का अनंत सागर है, इसलिए जीवन में दुख और निराशा उत्पन्न होती है। मनुष्य का अवचेतन मन दमित इच्छाओं का मार्ग है। जागृत अवस्था की नकारात्मकता जब मानसिक प्रतिरोध तोड़ देती है तो स्वप्न में दबी हुई पीड़ा अवसाद और आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलती है। तो जरूरी तो यही है कि उस पीड़ा उस निराशा उस नकार

नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया जाए। और जरूरत तो ये भी है कि बातों के साथ साथ गीतों का सिलसिला भी जारी रखा जाए। तो चलिए ये गीत आपको सुनवाते हैं, और इस गीत को हमने लिया है सीमा फिल्म से। ये बताइए कि इसमें नजर कौन आती है।

सीमा फिल्म का ये गीत सुना, और इस फिल्म में और इस गीत में नजर आती हैं नूतन शुभा खोटे के साथ। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि फिल्म चित्रलेखा के गीत के बारे में उन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की भारत का सारांश है कोई क्या जाने पीर पराई। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा।

या ये गीत जब दिल टूटता है तो आशिक लोग गाते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से इसे देखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और गीत के बारे में ही ऐसा कह रहे हैं ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मात्राधिक आशा ही कष्ट का कारण है, सबसे कष्ट और निराशा अपने कार्यरत आत्मनिर्भर बच्चों के फिजूल खर्ची से होता है। 8,000 के जूते क्या मुकुट है जो सिर पर पहनना है। भाई देखिए, ये भी एक कारण हो जाता है कभी कभी, जब हम ये सोचते हैं कि इस चीज की क्या जरूरत थी। हो सकता है किसी और के नजरिए में उस चीज की उन्हें जरूरत हो सकता है, वो ज्यादा उन्हें आरामदायक लगते हों या कुछ बातें हों, उनके मन के बारे में भी जानना जरूरी। कभी कभी हम दूसरे ने क्या किया ये बात जब देखते हैं तो इससे जो दुख हमारे मन में आता है या बहुत सी असंतोष पैदा जब होता है तो ये भी दुख का बड़ा कारण होता है जिसका निवारण हमारे हाथ में ही होता है। हमारे को साथी कह रहे हैं कि जब मन दुखी उदास और निराश होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और चारों तरफ अंधेरा या खालीपन सा महसूस होता है, तब मुकेश जी का गाया गीत याद आता है, जाऊं कहां बताए दिल दुनिया बड़ी है संग दिल। वहीं हमारे साथी का कहना है कि अपने से बिछड़ने का दुख सबसे ज्यादा निराश करता है, पर ये गीत उसके लिए परफेक्ट है। किसी जो भी गीत उन्होंने सुना उसमें से एक गीत के बारे में ये कह रहे हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि दूसरों का दुख दर्द देख कर मेरा दिल गहराई से भर उठता है, जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूं तो उसकी वेदना जैसे मेरी अपनी बन जाती है, मन इस कदर भावुक होता है कि पूरे दिन उदासी की गहरी परत सी छाई रहती है। सोचता हूं कि काश मैं हर किसी के आंसू पोंछ पाता, आज भी ऐसा ही हुआ, किसी की पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया और पूरा दिन एक अनकहे भारीपन और उदासी में बीत रहा है। अति संवेदनशीलता भी कभी कभी हमारे दुख का कारण होती है, तो उनके लिए अगर हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये देखिए, एक बात हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि भाई हर एक व्यक्ति का दुख दूर करना या हर एक व्यक्ति की परेशानी दूर करना तो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है, तो इस वजह से हम तो केवल मानव हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हर चीज कर लेना हमारे बस की बात नहीं है, और इसलिए दुखी होना भी ये हमारे बस में है कि हम इसलिए दुखी ना हो। हमारे एक और साथी कहने कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं, सुख के क्षणों में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब परिवार ही है जो हर परिस्थिति में हमारा हाथ थामे रखता है। गीत उन्होंने बताया, बहारो मेरा जीवन भी संवारो। हमारे एक और साथी कहने कि जब भी मन किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में हो जाता है तो ये गीत हौसला बढ़ाते कि समझौता गमों से कर लो। हमारे एक और साथी कहने की आवाज देकर मुझे तुम बुलाओ, बहुत उदास हूं मैं, मुझे गले लगा लो। जब भी ये दिल उदास होता है ये गीत इन्हें काफी पसंद है, जो सैड गीत कौन से पसंद है हमने पूछा था। हमारे एक और साथी कहने की कबीर सिंह फिल्म का गाना तुझे कितना चाहने लगे हम, जुबिन नौटियाल ने सिखाया है, ये गाना इन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, ये गीत इन्हें पसंद है। और हमारे कुछ साथी बता रहे हैं कि उनकी लिस्ट में से गीत शामिल हो गए हैं। एक और साथी का कहना है कि निराशावादी लोगों की जगह हंसमुख स्वभाव वाले लोगों के साथ समय गुजारना चाहिए। भाई ये तो एक अच्छी बात है कि अच्छी संगति हो या खुश मिजाज लोगों के साथ अगर जब हम होते हैं तो हम भी खुश रहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन कभी कभी जो ये हम सोचते हैं कि निराशावादी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये जो दिन भर ये उदास रहते हैं इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे वक्त में ही उस व्यक्ति को ये लगता है कि जब हम निराश हैं या हम उदास हैं तो लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं और उन्हें और ज्यादा निराश कर सकते हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ उनकी जो दुख तकलीफ हैं उन्हें बांटने की कोशिश कर सकते हैं और उनके वो दोस्त बन सकते हैं जो जिसकी उन्हें तलाश है ना। तो चलिए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक

कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हमें, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चाहे दुख हो या खुशी, एक गीत तो हम हर समय सुनते हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और ये गीत इन्हें बहुत पसंद है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लाखों तारे आसमान में, ये गाना उन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी का कहना है कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये गीत उन्हें पसंद है। हमारे एक साथी ने तलत महमूद के गीत उन्हें पसंद है ऐसा कहा। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि मुकेश जी के दर्द भरे गीत बहुत अच्छे लगते हैं। एक साथी कहते हैं मेरे महबूब कयामत होगी, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। और हमारे और साथियों ने गीत कौन सा बताया बताएं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धूप बहुत है राहों में, परछाओं भी कभी मुस्कुराएगी, गम का मरुस्थल लंबा सही पर हरियाली लौट कर आएगी। तारे सुन सुनकर थके पैर अब ताने सुन सुनकर थके पैर अब मंजिलों की ओर बढ़ेंगे, सुख दुख के ताने बाने में सहयोग के धागे बुन लेंगे। ये इन्होंने लिख भेजा है सकारात्मक लघु काव्य आज की भारत से संबंधित। और उन्होंने कहा कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना है। इस तरह से उन्होंने अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट भेजी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निराशा या नेगेटिविटी इंसान को जब आती है, उसके मन को यह एहसास होता है कि अब मुझे हर कोशिश कार्य में असफलता मिल रही है। पर उसी इंसान को जब कोई आशा की किरण किसी विचार से या किसी व्यक्ति से

है तो वो पुनः निराशा छोड़ कार्य करने लगता है। जीवन में आशा और निराशा आती रहती है। कुछ गीत जो इस विषय में है, मनरे तू काहे न धीर धरे, और भी बहुत से गीतों के बारे में इन्होंने लिख भेजा है। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कहते हैं ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। निराशा की राह छोड़ो, आशा का दीप जलाओ, हमारे एक साथी कह रहे हैं। एक और साथी कहते हैं कि अंधेरा कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता, एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को दूर कर देता है। उसी तरह एक सकारात्मक विचार अनेक नकारात्मक विचारों पर भारी पड़ सकती है। तो हमारे एक और साथी का कहना है, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, ये गीत उन्हें पसंद है। इस तरह से जब कोई चुप करवाने वाला हो या समझाने वाला हो तो भी निराशा बहुत जल्दी दूर हो जाती है, जैसे कि इस गीत में। बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

जाने तू या जाने ना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राशिद अली की आवाज, अब्बास टायरवाला के बोल या रहमान का संगीत, और फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। तो कभी कभी अगर कोई हो ऐसा जो हमें बता दे कि भाई इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं और हम सभी आपके साथ हैं, तो उस दुख से ऐसा मत कहिए कि बिल्कुल ये दुख भूल जाओ और कल से तुम्हें बिल्कुल हंसते रहना है। ऐसा कहना तो बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि भाई ऐसा कहने से तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी अगर दुख में डूबा है, निराशा में डूबा है, तो अचानक से उठ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपका साथ उसे धीरे धीरे उस चीज से बाहर ला सकता है। हमारे साथी कहने कि वैसे तो मैं आशावादी ही हूँ, माता रानी की असीम कृपा है। जब भी कभी उदास या दुखी होता था या कभी कभी उदास होता हूँ, तो शादी से पहले मेरी माता जी हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, शादी के बाद और अभी तक मेरी धर्म पत्नी मेरे उत्साह और हिम्मत बढ़ाती, और तो और मेरी दोनों बेटियां मेरी परेशानियों में कहती कि पापा जी हमें बेटियां न समझ कर अपने बेटे समझो, हमें परेशानी बताइए, हम हैं ना।

तो भाई बेटियों को भी परेशानी बताई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि परेशानी सिर्फ बेटों को बताई जाए, लेकिन फिर भी ये उनका अपना एक तरीका है बात करने का। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, सुख और दुख तो दुख छाव धूप छाव की तरह है जो जीवन में आते ही रहते हैं, जैसे हमारा एक पैर आगे चलता है और दूसरा पीछे। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि रात में रोक ली हो सूरज की रोशनी? तो हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए और इस मामले में गीत हमारा बहुत साथ देते हैं। और जब मैं टेंशन में होती हूँ तो अपने पसंदीदा गीत सारे गीत गा लेती हूँ और मेरी टेंशन 80% तक दूर हो जाती है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा मित्र हो तो क्या कहना, और क्या हर सफर आसानी से कट जाता है। वही हमारे एक साथी का कहना है कि दुखी होना सिर्फ समय नष्ट करता है, कुछ हाथ तो आता नहीं, इसलिए लगता है कि दुखी होने से फायदा ही क्या है, जो है गुजर जाएगा, ये एक बात बहुत ज्यादा मन को सुकून देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन की जटिलता से जुड़ी चीजें आज की इबारत में शामिल है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण जिंदगी से गुजरते हुए आदमी का मन कभी कभार बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कुछ लोग तनाव के कारण बीमार पड़ जाते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे दिलीप की दुखांत फिल्मों की याद आ रही है, दिलीप कुमार की बात वो कह रहे हैं, उनकी फिल्म दिल दिया दर्द दिया का एक गाना, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये गीत भी आज के कार्यक्रम के लिए उन्हें लगता है कि बिल्कुल सटीक बैठता है। और बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं कि हमें लेकिन ये बताइए कि वो कौन सा हैप्पी या कहें कि उम्मीदों भरा गीत है जो आपको दुख जब बहुत ज्यादा होता है और आप दुखी गाने सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं और ज्यादा दुख में डूब जाते हैं, तो वो कौन सा एक उत्साहवर्धक गीत है जो आपका उत्साहवर्धन करता है और आपको उस दुख से बाहर आने में मदद करता है। हो सकता है कोई दुखी गीत ही हो जो आपको आगे आने के लिए मदद करता हो और वापस उठ खड़े होने के लिए और एक आशा उम्मीद रखने के लिए मदद करता हो, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म का नाम बताइए।

नया दौर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया। और जाने तू या जाने ना फिल्म का जो गीत हमने सुनवाया था, हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि भाई हम तो हैं सीनियर सिटीजन और हमें तो इस के बारे में पता नहीं, सिलेबस से बाहर की चीज़ है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि मुकेश से अपनी दोस्ती शुरू से रही, अब तो पत्नी भी नहीं रही, तो मुकेश के गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। परिवर्तन नियति है, हर रात के बाद सवेरा होता ही है, इसी तरह दुख का भी अंत होता है, सुख भी आता है, पतझड़ के बाद नई कोपलें भी आती हैं, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि वो देर से शामिल हुए तो तेरी आंखों के आंसू पी जाऊं, ऐसी तो मेरी तकदीर कहां, ये गीत उन्हें पसंद है। फिल्म जाने तू या जाने ना का गीत के बारे में हमारे साथियों ने बताया। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कभी कभी पुराने गीतों को ही ज्यादा जानते हैं और नए गीत सिलेबस से बाहर के जब लग रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको जिस तरह से सुख और दुख के बारे में बता रहे हैं उसी तरह से पुराने जमाने और नए जमाने दोनों से अपडेट रखें। तो एक गीत फिर से आपके लिए नए जमाने का, ये बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

छिछोरे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और जिंदगी में किसी भी तरह की कोई फिक्र ना कीजिए, बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए। और सुरीला सफर कार्यक्रम से बस लेते हैं इजाजत।

दोस्तों, आजकल दुनिया से भोलापन यानी मासूमियत जैसे गायब होती जा रही है। जरूरत पड़ने पर बहुत चालाक और बड़े व्यवहार कुशल लोग अपने भोलेपन का स्वांग जरूर रच लेते हैं, लेकिन जल्दी ही ओढ़ी हुई मासूमियत

गायब हो जाती है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि उम्र के हर पड़ाव में थोड़ी मासूमियत, थोड़ा भोलापन बचा कर रखना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि जो मासूम है वो ही किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं, जो भोले हैं वही किसी की भलाई कर सकते हैं।

हाँ तो दोस्तों, बात चल रही थी मासूमियत की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मासूमियत गुम होने लगती है। लेकिन जो लोग छल प्रपंच से अपने को दूर रख पाते हैं, जो लोग दूसरों से कम नफरत करते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख लेते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों में बुराई नहीं ढूंढते, जो लोग मन में कुछ और बाहर कुछ और वाला बर्ताव नहीं करते, वो लोग लंबे समय तक अपनी मासूमियत बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा भी यही कहना है दोस्तों कि कितने भी हो जाइए समझदार, कितने भी हो जाइए चतुर और व्यवहार कुशल, लेकिन मन के किसी कोने में बचाए रखिए अपनी मासूमियत।

दोस्तों, बच्चों में एक किस्म का भोलापन होता है और इसे उम्र भर कायम रखना चाहिए, लेकिन आज ये भोलापन बच्चों में भी जैसे समाप्त हो रहा है। आजकल के बच्चे इतने सयाने, इतने व्यवहार कुशल और तेज हो गए हैं कि उतने किसी जमाने में नहीं थे। आजकल के बच्चे बच्चे कम, सयाने ज्यादा लगते।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए

0: चार विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, देसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: सीआरपीएफ की 32 प्लांटों और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा

0: और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजीपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजीपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए चार विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

0: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यह थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
3: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
2: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
3: सच?
2: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
3: समझ गया।

0: सरताज।
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

श्रोताओं, अब चलते चलते आपको बता दें आज के कार्यक्रम में शामिल गीतों के फिल्मों के नाम। मेरे जीवन साथी, यादों की बारात, मासूम, वो कौन थी, अनारी, गोलमाल, आनंद, कभी कभी, अजनबी, अपनापन, याराना। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम

अनुराधा पौडवाल हरिहरन की आवाज़ों में श्रोताओं सुनिए इतिहास फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

इरशाद कामिल का लिखा व विशाल शेखर का संगीत बद्ध किया। श्रोताओं सुनिए हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत नीति मोहन और विशाल ददलानी की आवाज़ों में ही।

श्रोताओं, इसी के साथ सैनिकों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

kujigalang yenda hai tulu unchu ai hang mene ta den nga indram gulun tin ka ka hoyanga telnga ngin sin ngai tanga mu hek inorich ai hang rongi ta ka sa ta ita fan kan ro da la harap ngai yin मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लम्हे कार्यक्रम।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today I am talking about gentle parenting. क्या होती है gentle parenting? क्यों हो रही इतनी popular? आजकल के digital दौर में बच्चों के परवरिश करना भी एक challenge बन गया है. ऐसे में भी अब gentle parenting काफी चर्चे में है. इसे celebrities भी अपना रहे हैं. चलिए आज के लम्हे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि जेंटल पेरेंटिंग क्या है, इसे कैसे अपनाएं और इसके फायदे क्या होते हैं. आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और भागदौड़ भरी जिंदगी ने बच्चों की परवरिश को भी मुश्किल बना दिया है, तब माता पिता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कैसे बने अच्छे पेरेंट्स, बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें लेकिन बिना डांटे या मारे, कैसे उनके साथ ऐसे रिश्ते बनाएं जहां वो खुलकर बात कर सके और साथ ही जिम्मेदार भी बने. इसी सवाल के जवाब में एक नया ट्रेंड सामने आया है जो है जेंटल पेरेंटिंग. कई मशहूर सेलिब्रिटी पेरेंट्स भी इस स्टाइल को अपना रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक फैशन है या ट्रेंड है? वाकई में बच्चों के बेहतर परवरिश का रास्ता है या? आइए विस्तार से समझते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग होती क्या है और क्यों ये स्टाइल इतनी पॉपुलर होता जा रहा है. आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से. ये एक ऐसी परवरिश जिसमें बच्चों के साथ सख्ती नहीं बल्कि समझदारी, संवेदनाशीलता और सम्मान से पेश आया जाता है. ये तरीका कहता है कि

बच्चों की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें समझाया जाए, उनकी फीलिंग्स को सुना जाए और उन्हें इमोशनल तौर से सेफ माहौल दिया जाए। इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों को कंट्रोल नहीं किया जाता है, बल्कि उसके व्यवहार को समझकर और उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए गाइडेंस दी जाती है। अगर बच्चा जिद कर रहा है या गुस्से में है तो उस पर चिल्लाने के बजाय उसकी फीलिंग्स को पहचाना जाता है, जैसे मुझे पता है तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें अभी वो खिलौना चाहिए था, चलो मिलकर कोई हल निकालते हैं। तो दोस्तों, क्या आप कभी सोचे कि जेंटल पेरेंटिंग क्यों हो रहा है इतना पॉपुलर? इमोशनल कनेक्शन को बढ़ावा देती है ये जेंटल पेरेंटिंग। बच्चे खुद को माता पिता के करीब महसूस करते हैं, जिसे रिश्ते में गहराई आती है और बच्चे भी ज्यादा विश्वास के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल सिखाती है। जब बच्चों को उसकी बात कहने का मौका मिलता है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनता है। उसे पता होता है कि उसकी बात मानी गई है या नहीं, कम से कम सुनी जरूर जाएगी। डर के बजाय समझ से नियम सिखाते हैं। ट्रेडिशनल सख्त पेरेंटिंग में बच्चे अक्सर डर से सही व्यवहार करते हैं, लेकिन जेंटल पेरेंटिंग में वो खुद समझते हैं कि कौन सा व्यवहार क्यों गलत है। मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है ये जेंटल पेरेंटिंग। ये स्टाइल बच्चों के मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसकी मदद से उन्हें कम तनाव होता है और इमोशनल रूप से वे ज्यादा स्थिर होते हैं। क्या जेंटल पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चों को कुछ भी करने दिया जाए? बिल्कुल नहीं। जेंटल पेरेंटिंग में भी रूल और ब्रांडिंग होती है, लेकिन उनका पालन साझा या डर से नहीं, समझ और सहयोग से करवाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर बच्चा खाने से मना कर रहा है तो उसे डांटने के बजाय ये कहना, मुझे पता है अभी तुम्हारा मन नहीं है लेकिन खाना जरूरी है ताकि तुम हेल्थी रहो, चलो चलो साथ बैठकर खाते हैं। बच्चों के बात ध्यान से सुने, भले ही वो छोटी सी बात क्यों न हो। तुम गलत हो कहने के बजाय पूछो, तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। गलत व्यवहार पर गुस्से के बजाय ऑप्शन दे, ऐसा नहीं ऐसा करके देखो। जो व्यवहार आप उनसे चाहते हैं पहले खुद अपनाएं। दोस्तों, बच्चों की परवरिश करने के लिए पेरेंट्स तरह तरह के तरीकों को अपनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक ही तरह का पेरेंटिंग स्टाइल कारगर हो। कई बार एक ही बच्चे पर अलग अलग पेरेंटिंग तकनीक अपनानी पड़ती है। ये पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर करता है। पहले के समय पर पेरेंटिंग का तरीका बिल्कुल अलग हुआ करता है, लेकिन अब ज्यादातर पेरेंट्स जेंटल पेरेंटिंग स्टाइल को अपना रहे हैं। आइए आज के लम्हे प्रोग्राम में इसे सुनेंगे आपके आरजे चेतन से। पारंपरिक पेरेंटिंग स्टाइल में जब बच्चा कुछ अच्छा करता है या अच्छा व्यवहार दिखाता है तो उसे शाबाशी और गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ बुरा करता है तो उसे डांट दिया जाता है और कुछ मामले में बच्चों की पिटाई तक हो जाती है। हालांकि जेंटल पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स अपने बच्चों के भावनात्मक जरूरतों और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। इसमें बच्चे के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल बनाने पर जोर दिया जाता है। इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करने वाले पेरेंट्स बच्चों को सख्त सजा नहीं देते हैं, बल्कि बच्चों को उसकी भावनाओं को समझकर ठीक तरह से व्यवहार करना सिखाया जाता है। जब आप अपने बच्चों की जरूरत और भावनाओं को सुनते हैं और सहानुभूति और समझ के साथ जवाब देते हैं तो आप उन्हें उसी तरीके से बातचीत करना सिखा रहे होते हैं। जेंटल किंग आपके बच्चों को हेल्थी और सही तरीके से अपनी भावनाओं को पहचाने और व्यक्त करने में मदद करती है। ये एक जरूरी लाइफ स्किल है। जेंटल पेरेंटिंग एक दयालु दृष्टिकोण है जो बच्चे के भावनात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझने और उनका पालन पोषण करने पर केंद्रित है। इसके मूल में यह माता पिता और बच्चों के बीच सहानुभूति, सम्मान और सकारात्मक संचार पर जोर देता है। इस पालन पोषण दर्शन का उद्देश्य बच्चों को एक सहायक, अहिंसक और समझदार माहौल में बड़ा करना है। सौम्य पालन पोषण बच्चों को उनके अपने विचारों, भावनाओं और अद्वितीय व्यक्तित्व

वाले व्यक्तियों के रूप में पहचानता है, ये उनकी स्वच्छता को महत्व देता है और उनकी उम्र और समझ के अनुरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने का प्रयास करता है। चिल्लाना, पिटाई या टाइम आउट जैसे दंडात्मक उपायों का सहारा लेने के बजाय सौम्य पालन पोषण, सकारात्मक अनुशासन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना, पुनर्निर्देशन का उपयोग करना और तार्किक परिणामों को नियोजित करना शामिल हो सकता है, जो शर्म या डर पैदा करने के बजाय मार्गदर्शन करता है। सौम्य पालन पोषण करने वाले माता पिता अपने बच्चे के दृष्टिकोण के साथ सहानुभूति रखने का प्रयास करते हैं, व्यवहार और जरूरतों के पीछे अंतर्निहित कारणों को समझकर माता पिता अधिक प्रभावी ढंग से और दयालुपूर्वक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सुसंगत नियम और सीमाएं स्थापित करने से बच्चों को सुरक्षा और पूर्वानुमान की भावना मिलती है। हालांकि ये सीमाएं बच्चों के व्यक्तित्व और विकासात्मक अवस्था को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति और लचीलेपन के साथ निर्धारित की जाती है। सौम्य पालन पोषण माता पिता को बाल विकास, प्रभावी संचार और उम्र उपयुक्त अपेक्षाओं के बारे में लगातार शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सहयोगात्मक समस्या समाधान को भी बढ़ावा देता है और माता पिता को संघर्ष या मुद्दे के समाधान खोजने में बच्चों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, ये एक नया टर्म है, ट्रेंडिंग है, जेंटल पेरेंटिंग। दैट वाज ऑल अबाउट जेंटल पेरेंटिंग इन टुडेस लम्हे प्रोग्राम। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Call or messages on 0951522207039, that's 0951522207039, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla, that's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

श्रोताओ, अभी आप लम्हे की 19वीं कड़ी का प्रसारण सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे। बंगला कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे शाम 5:30। शाम 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंदन विश्वास से ली गई बातचीत, जिसका विषय रहेगा मशरूम की खेती। शाम 6:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम। झलकी कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे शाम 6:45। शाम 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएँ। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत दिल ने फिर याद किया। शाम 7:30 पर युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। रात्रि 8 बजकर पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे मौसम की जानकारी के साथ सभा समाप्त होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

तीस मिनट पर अनमोल विचार, तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सवेरे 5:55 पर एग्रो टिप्स कार्यक्रम में विषय रहेगा धान की प्रमुख बीमारियां। जुलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे सवेरे 6:10। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा हिंदुस्तान शीर्षक पर। रामचरित मानस गान की 311वीं कड़ी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 6:30। वतन के गीत कार्यक्रम का समय होगा 6:40। मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50। देश रागिनी कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे 7:15। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप फिल्मी गीत सुनेंगे। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का समय होगा 9:30। 10:00 आप लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का आनंद ले पाएंगे। 10:55 पर आप मन की बात पर पूर्व विज्ञापन सुनेंगे। 11:00 आप मन की बात के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा

रामचरित मानस कान की 311वीं कड़ी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 6:30। वतन के गीत कार्यक्रम का समय होगा 6:40। मौसम की जानकारी कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50। देश रागिनी कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे 7:15। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप फिल्मी गीत सुनेंगे। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का समय होगा 9:30। 10:00 आप लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का आनंद ले पाएंगे। 10:55 पर आप मन की बात पर पूर्व विज्ञापन सुनेंगे। 11:00 आप मन की बात के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधन सुनेंगे। तेलुगु कार्यक्रम का समय होगा 12:00। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम। सुगम संगीत कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे 1:10। घर संसार कार्यक्रम का समय होगा 1:30। 12:30 पर मौसम की जानकारी के साथ सभा समाप्त होगी। शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। प्रायोजित कार्यक्रम लंबे की 20वीं कड़ी का प्रसारण होगा 4:30। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बाहरों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय होगा 5:00। 5:30 पर बंगला कार्यक्रम। 6:00 आप व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे संगीत संगिनी। धरती के गीत कार्यक्रम का समय होगा 6:30। 6:45 पर देश गान। 7:20 पर आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन पाएंगे। 7:30 पर युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। 8:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम। 8:30 पर रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या। 9:00 न्यूज़ एट 9:00। 9:15 पर स्पॉटलाइट। 9:30 पर राष्ट्र पत्रिका कार्यक्रम रेडियो स्कोप। और 10:00 रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आप विदुषी वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन सुनेंगे। 11:00 मौसम की जानकारी के साथ सभा समाप्त होगी। ये थे हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बाहरों की शाम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लेकिन फिल्म से। गायक कलाकार है लता मंगेशकर। गीत की धुन तैयार की है हृदयनाथ ने।

आइए सुनते हैं अलका याग्निक और जॉली मुखर्जी की आवाज़ में रघुवीर फिल्म का ये गीत, बोल समीर के हैं। संगीत कलाकार है दिलीप सेन और समीर सेन।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं संग्राम फिल्म का ये गीत, बोल समीर के है। इस गीत की धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे तमिल कार्यक्रम, लीजिए सुनिए गौरवगान।

श्रोता, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे है। प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आज सुनते हैं करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी, शरीर पर दर्जनों चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने, करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी, कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई डाइवर होने का गौरव भी हासिल किया। हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो, भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जय हिंद, सबको नमस्कार, राम राम।
1: कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन

0: था जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए, तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
1: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, जगाधरी के पास, और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की, जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है, वहाँ पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मेरे जो दादाजी थे वो वहाँ पर आर्मी का एक सेंटर है उसमें सेवा करते थे, वो अकाउंट्स में थे, CDA में। उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना, क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे। तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था, लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी। तो वो जो बच्चा दूसरी क्लास में उनके पास रहता था उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था, और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। तो एक दिन मैं ये सोच के कि यार नानी के पास ज्यादा मस्ती होती है, घर से भाग गया। और जब मैं घर से भागा तो रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दी। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यू टर्न था, और उस पहले यू टर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई DP सिंह, जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते। जहां हो जैसे हो वहां पर आपको अपने परिश्रम से, अपने बल से ऊपर उठ के जीना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यू टर्न था, इसने मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है, ठीक है, अब डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन वाले एंगल से ही चलेंगे। और मेरे दादा दादी ने मुझे जोड़ दिया था गुरुद्वारे से, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फौज में ऑफिसर बनने की 8वीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जो वापस लाके छोड़ दिया गया था। तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बन के जीना है।
0: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था? क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?
1: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो। पहले NDA में फेल हुए, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, NDA में 3 बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी शारीरिक रूप से, और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया। लेकिन वहां पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो। और चूंकि उन दिनों में सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में CDS की तैयारी कर सकूं, क्योंकि जाना तो अल्टीमेट फौज में ही है। फिर CDS में फेल हुए 2-3 बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम 5-6 फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो, अपने ड्रीम को पाते हो, तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाय फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
0: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला? क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई? परिवार के लोगों का क्या कहना था या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था? थोड़ा बताएं उसके बारे में।
1: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया, 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी। तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज, यंग ऑफिसर्स को फिर कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो तब तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है। और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या TV भी नहीं होते थे, और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों

0: में लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे, तो वहां पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही उन दिनों, 24 साल की मेरी उम्र थी और युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है। हम तो तैयार थे सबके सब।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थीं और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। थोड़ी आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे।
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मशको। उस क्षेत्र में आके उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में। वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था। उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी, तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं अखनूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण। नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी, और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है। तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबायलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे उनकी उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में भी मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे, तो जीवन जो था वो सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिविलियन हो, लेकिन हम डटे हुए थे, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने हमें दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा, और उसकी सुबह कैसी हुई थी, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था।
0: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसू साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी, और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी, लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन, और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को, मेरे उठने पे बैठने पे नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई, दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था, और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा आगे गिरेगा कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई, वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर। 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर

0: दायरा क्लीनिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहू लुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया सेवन डोगरा के सिपाहियों ने, तो रास्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूं, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है। जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं शायद ना सिर्फ उन चार सैनिकों का, सेवन डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र, तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि तो सैनिकों में वो चार जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका ऑफिसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया, रास्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे आरएमओ, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डिक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे के ले जाओ इसे बोला गया, लेकिन हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल राजिंदर सिंह जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाजा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है, ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच में, एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे, तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहाँ से वो कैसे बचा के ले आए वापस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था, तो उन्होंने मुझे बचाया। और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं, उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी होंगी। तो बच तो गया था वो कर्नल राजिंदर सिंह, उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई, वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो

0: में उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं, परेशान करते होंगे आज भी।
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं, 73 ऐसे टुकड़े हैं। उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंग करना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसे जगह हैं, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने उन वो तो तंग करने से नहीं हटे, लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए। वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने के बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
0: ये बहुत अहम सवाल है और मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक, जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूं कि पहला जो विचार था उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉयस विचार था। क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है। ये एक चैलेंज है, शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं मेजर साहब। जब आप 1 साल से ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
0: तकरीबन 1 साल मैं हॉस्पिटल में रहा,

0: हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था, हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। हम किसी की टांग नहीं थी, किसी का आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी के आंख और हाथ दोनों नहीं थे, लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमराडरी ने एक दूसरे का सहारा बन के कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम है। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं, फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेंटल हेल्थ और PTSD के बारे में जरूर बात करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माई केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीज़ों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीज़ों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद किस किलोमीटर भाग के आया। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो।
1: जी
0: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया। और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, NGO है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड है,
1: जी
0: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा, जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें से बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी,
1: जी
0: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो तो बदलाव आया, और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
1: बहुत ज़्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: 3 बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था, तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को काफी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ DP, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में AG ने भारत का पहला ब्लेड इम्पोर्ट करके 2011 में मेजर DP सिंह सेवानिवृत्त को दिया गया, और वहां से मेरे को ब्लेड रनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे, तो 2018 को सेना ने एयर ऑफ डिस

0: वर्ल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था। और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जहाँ जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ दिस सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई नोट पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है उन्होंने मुझे 1 महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं? उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिए, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, चाहे भले बूढ़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल जाए, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को शिवानी का नमस्कार। और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। साथियों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बीज चाहे नीम का हो या फिर आम का, फल उसी के अनुसार मिलता है। ठीक वैसे ही मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य को बनाते हैं। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब कभी गलत नहीं होता। तो साथियों, अपने जीवन में सदा सत्कर्मों का रास्ता अपनाएं, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के इन्हीं विचारों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और साथियों, आज आपको बताना है कि गंधपाश यानी फेरमन ट्रैप की ओर नर कीट आकर्षित होते हैं या फिर मादा कीट। भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। जी हाँ साथियों, आज आपको बताना है कि गंधपाश यानी फेरोमोन ट्रैप की ओर नर कीट आकर्षित होते हैं या फिर मादा कीट। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान

0: साथियों, कैच द रेन अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को बचाना और उसका अधिकतम उपयोग करना है। अभियान का नारा है, जहां बारिश हो, जब भी बारिश हो, वर्षा जल को संचित करो। अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं भू जल स्तर को सुधारना, जल की बर्बादी को रोकना, तालाबों, कुओं और जलाशय का संरक्षण एवं पुनर्जीवन करना, लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना। और भाइयों, अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं घरों और सरकारी भवनों में वर्षा के जल संचयन प्रणाली स्थापित करना है, तालाबों, झीलों और कुओं की सफाई एवं मरम्मत करना, नए जल संरक्षण ढांचे बनाना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, गांव और शहरों में जल संरक्षण संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। इस अभियान से भविष्य में जल संकट को कम करने में सहायता होगी। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। भू जल स्तर बढ़ने से पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार होगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये अभियान जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो साथियों, इस अभियान के साथ जुड़े, जल को संरक्षित करें और जीवन को खुशहाल बनाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। साथियों, अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी महिला श्रीमती के प्रिया जी से। तो चलिए भाइयों, करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं इनके अनुभव। के प्रिया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: आप अपने सुनने वालों को बताइए कि आप पशुपालन और कृषि के साथ किस तरह से जुड़ी।
1: जी मैम, मैं अभी 2 साल से ये नया से फॉर्म रेडी कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा ने 30 साल से ये फॉर्म का बिजनेस करके आ रहे हैं। मैम
0: मतलब आपके घर की ही जमीन है।
1: जी मैम, घर अच्छा। की जमीन है। तो मैंने सोची एक छोटा सा एक पशुपालन एक जी मैम, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के पढ़ी हूँ, बट मैं सोची हूँ एक छोटा सा एक बिजनेस रेडी करूँ। तो मैं सोची एक मेरे पापा मम्मी ने ये मेरे को पशुपालन से मेरे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ ये पशुपालन से रख के करा।
0: मतलब बचपन से ही आप ये काम जो है देखते आ रहे हैं, और जैसा आप बता रहे हैं कि आपके माता पिता का यही काम था।
1: जी मैम, मेरे माता पिता का यही काम थे। मैं इसी से पढ़ी लिखी सब कुछ, हायर स्टडी तक मैं इसी में से पढ़ा लिखा सब कुछ हुआ मैम। तो मैं सोची थी चलो मैं कुछ पढ़े लिखे जो गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैं ट्राई तो करती थी बट नहीं मिला। तो मैं सोची घर में ऐसे तो नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करेगा करके मैं इसको चुनाव करता था कि पशुपालन मैं भी स्टार्ट करूंगी करके मैम।
0: तो इस इरादे से आपने इस क्षेत्र में अपने कदम रखे। तो हम प्रिया जी सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से पशु आपके पास हैं।
1: मेरे पास है मैम फिलहाल के लिए जर्सी है मैम,
0: गाय
1: में, और HF ब्रीड है मैम।
0: अच्छा।
1: और गिर जो A2 मिल्क जो दे रहा है, गिर जो हमारा मोदी सरकार ने दिया था A2 मिल्क का जो गिर ब्रीड है वो है मैम, और साहिवाल ब्रीड है।
0: तो गाय का ही पालन आप ज्यादा करती हैं या और कोई पशु भी है आपके पास?
1: नहीं, गाय का ही पालन हम सेवा खाली उसी की सिर्फ करती है मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा काम है। देखिए, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपका अपना घर है, अपनी जमीन है आप बता रहे हैं, उसी तरह से क्या गाय के पालन के लिए कोई आपने जमीन या जगह जो है उनको रखने के लिए जो जगह है वो अलग रखी है?
1: जी मैम, हमारा पास एक 1000 स्क्वायर मीटर का जमीन है, उसी में घर भी है मैम, और 300 स्क्वायर मीटर का मैंने एक शेड बना के उसके अंदर में गाय पालन करती है मैम।
0: उसकी साफ सफाई
1: से रहते हैं मैम। उसके लिए मैं बोरिंग लगा के रखी हूँ, 2 लेबर मेरा पास लेबर है मैम, उसको अर्ली मॉर्निंग बराबर साफ सफाई रखेंगी मैं, फिर गाय को इंटर ईयर में भी रखेगी, आउटर में भी रखेगी, क्योंकि इंटर में बहुत देरी तक हम लोग गाय को शेड में रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी डिजीज उनको अटैक करती है, तो ज़रा देरी के लिए उनको खोल के बाहर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि तब तो बाहर का जो लाइटिंग वीटिंग में गाय रहने से फिट रहती है। और हम मतलब सेट को बहुत अच्छा तरीका से ब्लीचिंग वगैरह डेटॉल वगैरह जो भी है वो सब रख के साफ सफाई रखती हूँ मैं।
0: बिल्कुल करना भी पड़ता है, क्योंकि जिस तरह हम मनुष्यों में बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियां गंदगी के चलते हो जाया करती हैं, उसी तरह से पशुओं में भी हो जाती है। तो पशुओं की इस तरह की देखभाल बहुत जरूरी है। इसमें आप क्या अकेली ही ये काम करती हैं या घर में कोई और लोग भी हैं जो आपकी मदद करते हैं?
1: जी मैम, मैं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को सपोर्ट करते हो इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड करते हो। और क्योंकि मेरे पास 1-3 महीने का छोटा बच्चा भी, उसको मैं मैनेजमेंट करके बच्चों को सुला के मैं आके 10 गाय का दूध निकालती हूँ, फिर मेरा 2

0: लेबर लोग हैं, उन लोग भी मेरे को बहुत सपोर्टिव करते हैं, कोऑर्डिनेट करती हूँ। उसके अलावा मैं अच्छा फ्रेश दूध मैं मार्केट तक लेके आके मैक्सिमम 1.50 कर के लिए मैं पूरा हेल्दी दूध को मैं पहुँचाती हूँ मैम घर घर।
1: आप बता रही हैं कि 50 घर में दूध जाता है, तो एक दिन में कितने लीटर दूध मिल
0: मैं
1: जाता है?
0: एक दिन में 50 लीटर दूध मैं निकालती हूँ मैम,
1: बहुत अच्छा उत्पाद है, मतलब सुबह शाम दोनों
0: सुबह
1: टाइम।
0: शाम दोनों टाइम 30+20 टोटल मिला के 50 लीटर्स मेरे पास होते हैं मैम। मैं डिलीवरी डोर डिलीवरी करती हूँ मैम दूध लेके जाके, मेरे साथ सारा सफाई से डब्बा वगैरह जो भी होते हैं पैकिंग बराबर होके साफ सफाई से करते हैं, हाइजीनिक मिल्क लेके जाके मैं सुरक्षित देती हूँ हर घर पे जाके मैम।
1: तो ये पर लीटर आप किस हिसाब से बेचती
0: पर
1: हैं?
0: लीटर मैं 100 रुपया में देती हूँ मैम। पर मेरे को देखिए मैम, आज के टाइम में हर चीज़ का मार्केट का जो एक्सपेंसिव हो गया, उनका
1: बिल्कुल
0: फीड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है,
1: बिल्कुल
0: उनका एक्सपेंसिव मेरा उनका फीड ऐसा लगे कि मैं कुछ फीड चेन्नई से मंगाती हूँ, कुछ फीड आके हम महाराष्ट्र से टाइप कर लेती, फिर बाकी कुछ जो भी है मैं होम घर से ही कुछ भी पानी गंजी पानी वगैरह जो भी है खाना हो ना मैं बना के रखती हूँ मैम उनके लिए।
1: अब हम जानना चाहेंगे कि गाय का जो चारा है, आहार,
0: जी मैम,
1: उसकी व्यवस्था आप किस तरह से करती हैं?
0: जी मैम, जैसे ग्रास हो गया मैम,
1: जी
0: ग्रास में 1,000 स्क्वायर मीटर में एक छोटा सा एक लीज लैंड लेके रखी हूँ, उसके लिए मैं एक छोटा से 1,000 स्क्वायर मीटर में कल्टीवेशन जैसा कटिंग होते हैं वो लगा के रखी हूँ मैम। गाय का जो गोबर है उसको मैं ड्राई करके वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ करती हूँ, उसमें से जो ग्रोथ हो रहा है ग्रास उसको लेके आके मैं जो कटर शार्प कटर होते हैं उसमें से कटिंग करके गाय को प्रॉपरली खिलाती हूँ मैम।
1: चरने के लिए
0: जी
1: इनको
0: भी
1: खुले में भेज
0: जी
1: के?
0: जी मैम, 1-2 घंटे के लिए ग्रेजिंग करने के लिए भेजती हूँ, फिर मैं ड्राई फीड देती हूँ, फिर मैं जो लगा के रखी है कल्टीवेशन जैसे हो के सुपर नेपियर को 4-3 उनको लेके आके मैं कटर से शार्प कटर से लेके कल्टिंग करके गाय लोग को खिलाती हूँ मैम।
1: प्रिया जी, पशुओं में बहुत सी बीमारियां देखी जाती
0: जी
1: हैं,
0: मैम,
1: तो गाय में मुख्यतः कौन सी बीमारी आपने देखी
0: ये
1: है?
0: माउथ एंड फुट डिजीज आके बहुत ज्यादा बहुत डेंजरस है मैम, क्योंकि
1: हाँ,
0: ये पशु का पैर में जैसे कि आपका हमारा जो पैर का जो
1: खुरपका और मुंह
0: खुरपका,
1: पका
0: मुंह
1: है।
0: पका और
1: हाँ
0: खुरपका, वो एक बीमारी हमारा सुनामी टाइम पे आके बहुत ज़्यादा घायलों का मतलब जैसे कि मुंह में चोट पैर में चोट, उसको कोई इलाज ही नहीं था वो टाइम में, कितनी सारा घायलों डेथ हुआ है।
1: आपके
0: तो
1: पशुओं में कभी देखी आप?
0: मेरे पशु में नहीं देखी, मैं मेरे डैडी का पशु जब था उनका टाइम में मैं देखी थी, मैं वो टाइम में स्टडी करती थी, उस समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। फिर छोटे मोटे जो कीड़ा रखते हो
1: जी,
0: कीड़ा मकड़ी वो तो मैं उसी से हम क्योर कर लेती,
1: घर में ही क्योर हो जाता
0: पर
1: है।
0: करीमी मैं उसके लिए ट्रीटमेंट कर लेती मैम। जो मेजर डिजीज जब होते हैं मेजर इंटरनल
1: जी
0: ऑर्गन में जो जब उनका दिक्कत होता है तो हम विटनरी में तुरंत में फोन कॉल नहीं तो मैं लेके आ जाती, उस लोग को लेके जाके मैं कंसल्ट करती कि इस तरह से होता है मैम, जैसे कि डिलीवरी टाइम पे हो अगर
1: जी
0: डिलीवरी का टाइम में जो वेस्ट आता है वो नहीं निकाल पाते वो टाइम में मैं तुरंत डॉक्टर लोग को मैं कंसल्ट कर देती हूँ
1: मतलब
0: मोटी।
1: आपको सहायता मिल जाती
0: जी
1: है?
0: मैम, तुरंत मेरे को सहायता मिल जाती हो जब एक्सटर्नल एक्सटर्नल में जो भी डिजीज आ रहा है जैसे चोट वगैरह जो थोड़ा मेरे वो मैं खुद ठीक कर
1: खुद
0: लेती
1: घर
0: हूँ।
1: में इलाज हो
0: जी
1: जाता है। अच्छा, आपने बताया कि खुरपका और मुंह पका रोग जो है पशुओं में बहुत ज्यादा देखा
0: जी
1: जाता
0: मैम,
1: है, गायों में,
0: जी मैम,
1: तो है ना, इससे बचने के क्या उपाय हैं?
0: मैम अभी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था, उसके बाद अभी साइंटिफिक रीज़न में बहुत साइंटिफिक उसके लिए इलाज करके पूरा मेडिसिन लेके आ गए, उसके लिए आप वैक्सीनेशन भी हो गया, हर 6 मंथ का वैक्सीनेशन होते हैं मैम अभी, जो हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट हमारे पास आके हमारे घर तक पहुँच के उनका टैग लगाते हो और वैक्सीनेशन बराबर करते हो, उसके लिए दवाई भी देते हैं मैम
1: तो
0: मेडिसिन भी
1: फिर
0: दे रहे
1: उससे होने का खतरा
0: नहीं
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: नहीं
0: मैम
1: है।
0: नहीं।
1: तो
0: तो उसके
1: वैक्सीनेशन जो है, ये बराबर अपने पशुओं को आप देते रहते
0: जी
1: हैं?
0: मैम बराबर वैक्सीनेशन देते हो, बराबर कीड़ा का दवाई बराबर उनको मेंटेन करता पड़ता है, तब तो गाय का जो ग्रोथ है वो बराबर रहेगा, बच्चों लोग
1: बिल्कुल
0: में भी ग्रोथ अच्छे से रहेगा। जो कीड़ा का दवाई हर मंथ में देना पड़ता है नहीं तो 2 मंथ में एक बार उनको कीड़ा दवाई देना पड़ता है, जो गाभिन गाय है उसको जो कीड़ा दवाई इंसेक्ट जो है उसका दवाई नहीं देना चाहिए, जो मिल्क प्रोड्यूस में है उनके लिए हम कीड़ा दवाई हर 2 मंथ में हर 3 वीक्स, मतलब गाय का जो वीकनेस है मैम वो गाय को देखने से ही हम लोग पता चल जाए कि उसका अंदर क्या चलता है, कि अगर आपको गोबर ने पतला से करेगा बहुत लम पतला से ऐसा लगे
1: जी
0: कि लूज मोशन की तरह करता है तो उसका गाय का लगता है कि कीड़ा हो गया, तो उस चीज़ को हम प्रॉपर वे में कीड़ा दवाई पिला देती है और उसका अंदर कुछ ज़्यादा ही कुछ होता है तो मैं वेटनरी स्टाफ को
1: वेटनरी को कंसल्ट करके
0: कंसल्ट
1: वो
0: करके जो दवाई वो लेके खिला देती हूँ मैम,
1: ठीक है, तो इससे पशु जो है स्वस्थ रहते हैं,
0: स्वस्थ
1: क्योंकि
0: रहते हैं।
1: पशुओं का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी
0: जी
1: है।
0: मैम,
1: हमको उनसे जो मिलने वाला उत्पाद है यानी मिल्क
0: जी
1: जो
0: मैम,
1: है, वो तभी पोषक होगा
0: जी
1: हमारे
0: मैम,
1: लिए।
0: वो सुरक्षित रहने से तो मेरे को वो बराबर मिल्क
1: बिल्कुल
0: देंगी, मैं कुछ मैं मेरा जो खर्च पान जो है मैं निकाल सकती हूँ मैम, मेरे
1: हाँ
0: लेबर को जो स्टाफ को जो पेमेंट देते हैं वो बराबर उनको देना पड़ रहा है, जो मेरा घर बार चलाते हैं उसी से मैं घर बार चलाती हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाती है सब कुछ उसी से रह के करती हूँ मैम।
1: बहुत अच्छा प्रिया जी, इसके

0: अलावा और क्या क्या काम करती हैं?
1: मैम इसी के अलावा मैं ये गाय का पालन के थ्रू से मैं कल्टीवेशन का जो भी वो भी करती हूँ मैम, जैसे कि सुपर नेपियर का जी भी वो भी वो चीज भी लगाती है, और एक्स्ट्रा क्वांटिटी में भी लगाने चाहती हूँ, क्योंकि जब दूसरे फार्मर भी हमारा पास पूछेगा तो उनका भी कल्टीवेट करके
0: सुपर
1: देंगे।
0: नेपियर से मतलब है गाय का चारा जो
1: चारा
0: होता
1: ही है
0: है?
1: जी मैम, ग्रास
0: अच्छा
1: होता है मैम
0: अच्छा
1: जी, जैसे
0: उसके
1: कि
0: बारे में थोड़ा बताइए।
1: जी मैम जो वगैरह डॉलीगंज फार्म वगैरह में जो है मैम सुपर नेपियर जो ग्रास है वो चीज को कटिंग करके देने से आपको मिल्क प्रोड्यूस ज्यादा रहता है मैम, और गाय जो बाहर में जाके खुले मैदान में जाके चर के आने से उतना पेट नहीं भरते जो ग्रास से,
0: बिल्कुल
1: जो सुपर नेपियर से उनका पेट अच्छा भर जाता है मैम
0: नहीं, और ये एक पोषक आहार है गाय
1: जी
0: के
1: मैम
0: लिए, है
1: जी,
0: ना?
1: विटामिन न्यूट्रिशन सब उसमें से भरते हैं मैम वो सुपर नेपियर से।
0: इसका कल्टीवेशन आपने कितने एरिया में किया है?
1: अभी तक 1000 स्क्वायर मीटर में मैं अभी तक स्टार्ट करी हूँ मैम, और भी करने के लिए है अभी तक कटिंग मेरे को अभी तक मिला नहीं, क्योंकि मेरी कटिंग्स भी मेरी डिपार्टमेंट से मेरे को लेके आके पहुँचाते हैं मैम घर तक।
0: तो मतलब उसकी अभी एक भी फसल अभी तक आई नहीं है,
1: नहीं मैम अभी तक आई नहीं,
0: पर प्रोसेस में
1: ना
0: है,
1: प्रोसेस में है मैम,
0: प्रोसेस में है।
1: मैं
0: तो
1: क्योंकि लैंड अभी तक प्रिपेयर करती है मैम, जैसे कि गाय का जो खाद है वो लेके जाके अभी लैंड में बिछा के उनको मिक्स
0: जमीन
1: कर
0: तैयार
1: तैयार कर
0: करना।
1: रही मैम, उसके अभी तक आया 1000 स्क्वायर मीटर में रेडी हो गया मैम, 500 स्क्वायर मीटर जो कल्टिंग है कटिंग
0: जी
1: मतलब ग्रास है वो उग गया मैम, उसको कटिंग करके मैं घास को अभी तक गायों को खिलाती है मैम
0: बहुत अच्छा है।
1: जी
0: तो इस तरह से ये हो गया कि देखिए आप पशुपालन करती हैं,
1: जी
0: और पशुपालन से एक तरफ तो आपको दूध उत्पाद मिलता है
1: जी
0: जो कि आपके घर में भी यूज होता है,
1: जी मैम
0: और आप उसकी बिक्री करके आपके लिए एक आय का अच्छा जरिया जो है वो भी बना
1: जी
0: हुआ
1: मैम
0: है। साथ ही साथ आपने गाय के आहार का भी इंतजाम अपने घर में ही किया है, क्योंकि आपके पास जमीन है
1: जी
0: और उसमें आप सुपर नेपियर घास जो है वो उगाने के प्रोसेस में चल रहा है
1: जी
0: काम। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये काम आपका जल्दी जल्दी बढ़े, और मेहनत लगन से आप जिस तरह गाय पालन कर रही हैं उसी तरह से आप इनके चारे के लिए भी अगर मेहनत और लगन लगेगी तो जरूर ही आपको इससे अच्छा उत्पाद जो है वो मिलेगा।
1: जी मैम
0: प्रिया जी, चलते चलते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप एक पढ़ी लिखी गृहिणी हैं,
1: जी मैम
0: ठीक है ना, आपने इस व्यवसाय को अपनाया, ऐसी तमाम महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी भी हैं
1: जी मैम
0: और उनके पास साधन भी हैं लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर रही हैं,
1: जी
0: तो
1: मैम,
0: ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उसके अंदर भी इंटरेस्ट आया है बट उनका
0: उसमें
1: ही बैठ के तो कुछ नहीं मिले, कुछ ना कुछ तो करना पड़ रहा है मैम, जैसे कि छोटा मोटा कुछ भी आपको व्यवसाय लगा सकते हैं ना, था फीमेल को बहुत सारे ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट ने, बहुत तरह का ट्रेनिंग हो रहे हैं, जैसे कि मैं भी 6 महीने का पहले मतलब पशुपालन का ट्रेनिंग भी ले
0: मतलब
1: चुकी
0: आपका
1: हूँ।
0: कहने का मतलब ये कि जो महिलाएं घर बैठी हैं उनको पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा
1: पड़ेगा
0: और उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह लें और किसी ना किसी काम में को लगना
1: लगना
0: चाहिए,
1: चाहिए मैम, किसी का अंडर डिपेंड में रहने का जरूरी नहीं है
0: स्पेशली महिलाओं को।
1: महिलाओं को, क्योंकि गरीब में रह रह के उनको कुछ भी कर सकते हो मैम। मैं और एक भी सोच रही हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये सिर्फ एक ही स्टेप में नहीं रहा, और आगे भी मेरे बिजनेस को लेके जाने के डेवलपमेंट
0: बहुत
1: करने के
0: अच्छा,
1: लिए
0: हाँ
1: मैं
0: जी
1: सोच रही हूँ मैम, जैसे कि पैकिंग वगैरह हो गया, जैसे रिसाइकल बिन जो प्लास्टिक जो आ रहा
0: जी
1: है
0: जी
1: जो डिस्पोजल आता है उस तरह लेके घर में सुरक्षित दूध देने के लिए भी पैकिंग प्रोसेस भी मैं रेडी करती हूँ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का IFSC जो कोड है उसका मतलब प्रॉपर वे में मैं ये सब चीज़ भी रेडी करने के लिए रेडी करती हूँ मैम, उसको प्रोसेस भी रेडी में है मैम अभी
0: तो मतलब ये भी आप कर
1: पैकिंग
0: सकते हैं,
1: का।
0: और अगर आप कर सकते हैं तो और लोग भी कर सकते हैं
1: जी
0: भाई,
1: मैम
0: सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए घर से बाहर निकल के। प्रिया जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ बांटी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: साथियों, अभी आपने खेती किसानी से जुड़ी महिला श्रीमती के प्रिया जी से की गई ये बातचीत सुनी, और भाइयों इतनी बातों के बाद अब कार्यक्रम में कुछ मनोरंजन हो जाए, तो चलिए मनोरंजन के बहाने आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: बेहद खूबसूरत सा गीत, हम उम्मीद करते हैं कि इसे आपने जरूर पसंद किया होगा।
1: और साथियों, अब लीजिए ये जानकारी जिसका विषय है राष्ट्रीय बांस मिशन।
0: राष्ट्रीय बांस मिशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य बांस की खेती को बढ़ावा, ग्रामीण रोजगार बढ़ाना और बांस उद्योगों को मजबूत बनाना है। ये योजना कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, खेती के लिए अच्छी नस्ल के बांस के पौध उपलब्ध कराना, बांस से जुड़ी इंडस्ट्री जैसे फर्नीचर, अगरबत्ती, बास्केट बोर्ड आदि को विकसित करना, इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना, बांस की प्रोसेसिंग यूनिट लगवाना, बांस के उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता प्रदान करना। इस योजना से किसानों को मिलने वाले लाभ हैं बांस के पौधों पर सब्सिडी। सरकार बांस के पौधों को लगाने पर 40-60% तक की सब्सिडी देती है। पौधशाला या नर्सरी में सहायक अगर कोई किसान या समूह बांस की नर्सरी खोलना चाहता है तो सरकार आर्थिक मदद देती है। खेती की लागत में भी सरकार मदद देती है, जैसे गड्ढा खुदवाना, खाद डालना, पौधरोपण, सिंचाई सिस्टम इत्यादि। इन सब पर सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। जैसे सरकार फसल को खेतों से लेकर बाजार तक पहुंचाने में पूरा समर्थन देती है, जैसे कटिंग, सुखाना, बीडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, बिक्री इत्यादि। प्रशिक्षण और तकनीक शिक्षा, किसानों को इसके तहत सिखाया जाता है कि कौन सी बांस की किस्में कटाई में अच्छी होती हैं और बांस को कैसे उगाएं, इसे कैसे प्रोसेस करें और इससे कैसे अधिक लाभ कमाएं। सरकार द्वारा बांस प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके तहत अगर कोई किसान या समूह बांस का सामान बनाने की

मशीन लगाना चाहता है, जैसे अगरबत्ती, बांस फर्नीचर, बांस प्लाईवुड, बांस टोकरी इत्यादि, तो सरकार 35 से 50% तक की सहायता देती है। और साथियों, इस योजना का लाभ सभी छोटे बड़े किसानों, किसान समूहों, कृषि उत्पादक संगठन, महिला समूह, आदिवासी किसान एवं सरकारी समितियां उठा सकती हैं। साथियों, इसके तहत सरकार द्वारा बांस लगाने का तरीका सुझाया गया है। इसमें प्रति एकड़ पौध संख्या 800 से 1200 पौधे तक होती है। दूरी लगभग 5x5 मीटर या 6x6 मीटर तक होनी चाहिए। और साथियों, इसके रोपण का सर्वश्रेष्ठ समय मानसून के समय होता है। पहली कटाई 3 से 4 साल के बाद। आंकड़े बताते हैं कि इससे किसानों को एक एकड़ में सालाना 1 लाख से 2.5 लाख तक की आय मिल सकती है, और ये निर्भर करता है बांस की फसल और उसकी किस्म पे। इस पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी इस प्रकार से है। पौधे खरीदने पर सरकार 40 से 60% तक सब्सिडी देती है, जबकि नर्सरी खोलने पर 1 से 5 लाख तक, ड्रिप सिंचाई के लिए 55 से 70% तक और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 35 से 50% तक, बांस आधारित उद्योगों के लिए सरकार द्वारा 50 से 65% तक की सब्सिडी दी जाती है। साथियों, इसके लिए आवेदन का तरीका है कि अपने क्षेत्र के राज्य कृषि विभाग से फॉर्म ले सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK में भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। साथ ही इसका ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, किसान पंजीकरण नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। और इस योजना में सबसे अधिक लाभ मिलते हैं छोटे किसानों को, और जहां बरसात अधिक होती है, आदिवासी क्षेत्रों में जहां बंजर जमीन है और जहां लकड़ी उद्योग होते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन यानी NBM के तहत सरकार की इस मुहिम का उद्देश्य यही है कि सभी छोटे बड़े किसानों, आदिवासी क्षेत्रों में और जहां बांस उद्योग की संभावनाएं अधिक हैं, वहां इस उद्योग से अधिक लाभ मिल सके। राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में अभी आपने ये जानकारी सुनी।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: और साथियों, हमें लगता है कि अब आपको इंतजार होगा आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर जानने का। तो भाइयों, हम आपको बता दें कि आज कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे पूछा था कि गंध पाश यानी फेरोमोन ट्रैप की ओर नर कीट आकर्षित होते हैं या फिर मादा कीट। और इस प्रश्न का सही जवाब है कि फेरोमोन ट्रैप यानी गंध पाश की ओर हमेशा नर कीट आकर्षित होते हैं। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी और सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अंग्रेज़ी कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप अंग्रेज़ी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है झलकी कार्यक्रम।
1: चोचराम, ओए चोचराम, तुम किधर में जाके मर गया बाबा?
2: अब आई थे तोता राम आ गए मेम साहब। अरे हम कही थे कि मरे के हो तो गर्मी की छुट्टी में मर चुके, अब स्कूल खुल गवा है, अब भला हमें मरे के फुर्सत कहाँ है?
1: चोचराम, तुम बहुत बोलता, जितना हम पूछने को उतना तुम बोलने को। अभी देखो बार में एडमिशन किए और कितना वो लोग है।
2: अरे हम कही थे अब भाई लो मैम साहब, अब भाई देख के बताई थे।
3: मेरी कमिन मैडम,
2: लो बिना नाम
1: चोचराम रुको। यस कमिन।
3: क्या यहाँ की प्रिंसिपल लेडी बोम ह्यूज फनफनी आप ही हैं?
1: बरोबर, तुमको क्या मांगता?
3: मांगता मांगता क्या मतलब, मैं कोई भिखमंगा हूँ क्या?
4: बड़ी अजीब किस्म की औरत लगती है जी।
1: अभी आप लोग थोड़ा उधर बैठने को, हाँ सोफा पर।
4: थैंक यू,
1: दैट्स राइट। अभी पर्पस बयान करो
4: जी। वह हमें बच्चे का दाखिला कराना है।
1: गुड, इसका बाबा को उम्र कितना होने को?
4: बाबा की?
1: यस बाबा का
3: जी। इसके बाबा की उम्र 66 साल थी।
1: What?
3: अभी पिछले साल ही दुनिया से खर्च हुए हैं।
2: अरे हम कही थे
1: तुम चुप रहो छोटा राम, हमको कहने दो। हम ग्रैंडफादर का नहीं, इस बाबा का उम्र पूछते हैं।
3: मगर मैडम फनफनी, ये मेरा बाबा नहीं बेटा है।
1: बरोबर बरोबर, एक ही बात है।
4: एक ही बात है, बाबा और बेटा एक ही बात है, कमाल है।
1: आप इसका मामा होने को मांगता?
3: जी वो मामा नहीं, उसकी माँ है। इसका मामा तो सिनेमा हॉल में चने बेचता है।
4: ओफो, हर जगह चूहलबाजी। मैडम
1: यस,
4: आप माँ को मामा बोलती होंगी तो मामा को क्या बोलती हूँ?
2: अरे हम कही थे कि वो सब अलग विद्या है। अरे तुम आपन काम केर बात करो। अरे सीधे कहो कि छुटको केर नाम लिखावेगा।
3: और क्या कह रहा हूँ घंटे?
1: तुम मिडिल में लेग बाजी काय को करता, आई मीन बीच में टांग काय को अड़ाता है? चाओ बाहर में बैठकर बीड़ी पीने का।
2: अब भाई जाए थे मेम साहब। अरे तनिक केस समझे तो दे होगा।
4: सीधी सी बात है कि हमें बच्चे का दाखिला कराना है पहली क्लास में।
1: होएगा होएगा, बरोबर होएगा। पीछू कभी किसी स्कूल में पढ़े ना है? अभी तक क्या करता था
3: जी? अभी तक घर पर खेलता था, और उसके पहले घुटनों चलता था, और उससे भी पहले अंगूठा चूसता था, और उससे भी पहले पैदा हुआ था, और उसके पहले
2: बस पूरी जन्म पत्री ना बाचो बाबू जी।
1: ओ बाबा रे, तुम कैसे माफिक बाप है जी?
3: जी वैसा ही जैसे कि आम तौर पर इंडियन बाप होते हैं। आप इसका नाम लिख लीजिए प्लीज।
1: नाम बोलो
3: जी। इसका नाम है सत्य प्रकाश प्रसाद नारायण सिंह वर्मा।
1: ओह माय गॉड, पूरा कॉलोनी का नाम नहीं पूछा।
3: मैंने तो इसके नाम का शॉर्ट फॉर्म बताया है मैडम। पूरा नाम सही ग्रामर के साथ तो मैं भी नहीं बता सकता। दरअसल भगवान की कृपा से मेरा चौथा चिराग है, हर बच्चे के साथ हमारे खानदान में नाम बढ़ता चला जाता है।
2: अरे हम कही थे कि इतनी हुज्जतबाजी से
1: तुम चोच बंद रखने को छोटा राम। मिस्टर फादर
3: जी,
1: अभी आप ये फॉर्म भरो, पिछू कैशियर के पास में जाके 110 रुपीस जमा करो।
4: 110? क्या ये पूरे साल भर की फीस है?
1: तुम किस माफिक मामा है लेडी, हम बोला अभी 3 महीने का फीस है ना ये। इसमें बुक्स है, कॉपी, नाश्ता, पंखा, गेम्स सब इंक्लूडेड है। और इधर में हम बाबा लोग को नाश्ता में फल फ्रूट भी देता है।
3: जी, फल फ्रूट के बजाय अगर बच्चा चने खाए तो फीस में कुछ कमी हो जाएगी मैडम।
2: अरे हम कहते हैं कि बाबूजी स्कूल है या इक्कर तांगा के अड्डा है, चना खाए वाह, और फिर कौनो कही है कि घास भूसा मांगा।
1: प्लीज चोचा राम, तुम बाहर जाकर बीड़ी पियो।
2: जाय था मैम साहब, मुला बाबू साहब इतना समझ लियो कि जौन जड़ बचपन में पड़ गई तो उन बुढ़ौती तक हिलाए नहीं हिलती है, और छुपन में बढ़िया साफ सुथरा स्कूल चाहिए, और आगे तो फिर सब धान पाई।
1: चोचा राम,
2: अरे जाय था मैम साहब, जाय था।
4: फीस के अलावा और कुछ भी मैडम?
1: बरोबर, इधर यूनिफॉर्म है, खाकी शर्ट, पैंट, मोजा, शू और एक जैकेट।
3: ये

0: पहना कर इन्हें किस थाने पर लगाया जाएगा?
1: तुम बहुत मस्करी बोलता मैं, यह स्कूल का यूनिफॉर्म है बाबा।
0: मगर मेरे दूसरे बच्चे तो पजामा और जांघिया पहनकर भी स्कूल चले जाते हैं, क्या ये सब तामझाम जरूरी है मैडम?
1: थोड़ा अकल से काम लेने का मैन, एक जैसा कपड़ा होने से बच्चा लोग का दिल में छोटा बड़ा अमीर गरीब ऊंचा नीचा होने का फीलिंग्स ना ही रहता। बच्चे लोग में भाईचारे का स्पिरिट पैदा करना बहुत जरूरी
0: है। सी, वो तो आप ठीक कहती है मैडम, मगर इस स्पिरिट को पैदा करने का पेट्रोल भी तो बाप की तनख्वाह में होना चाहिए ना। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे इससे बड़े 3 बच्चे और भी पढ़ाने हैं।
2: सच पूछिए मैडम, हमारा बड़ा अरमान था हम अपने सबसे छोटे को किसी साफ सुथरे अच्छे और डिसिप्लिन स्कूल में पढ़ाएं। खुशी की बात है कि आपके वहाँ पढ़ाई में राष्ट्रभाषा का भी सही सम्मान है, मगर
0: फीस ने हमें हिलाकर रख दिया है मैडम, क्या इस सिलसिले में कुछ कंसेशन?
1: आई एम सॉरी मिस्टर फादर, कैसा होएगा स्कूल का रूल्स जो है, अभी इस साल भर हम प्रिंसिपल रहने को, अगला साल हम भी रिटायर।

0: ना ही रहता।
1: ओह,
0: बच्चों लोग में भाईचारे का स्पिरिट पैदा करना बहुत जरूरी
1: आई सी, वो तो आप ठीक कहती हैं मैडम, मगर इस स्पिरिट को पैदा करने का पेट्रोल भी तो बाप की तनख्वाह में होना चाहिए ना। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे इससे बड़े 3 बच्चे और भी पढ़ाने हैं।
2: सच पूछिए मैडम, हमारा बड़ा अरमान था हम अपने सबसे छोटे को किसी साफ सुथरे अच्छे और डिसिप्लिन स्कूल में पढ़ाएं। खुशी की बात है कि आपके वहाँ पढ़ाई में राष्ट्रभाषा का भी सही सम्मान है, मगर
1: फीस ने हमें हिलाकर रख दिया है मैडम। क्या इस सिलसिले में कुछ कंसेशन?
0: आई एम सॉरी मिस्टर फादर, कैसा हुएगा? स्कूल का रूल्स जो है, अभी इस साल भर हम प्रिंसिपल रहने को, अगला साल हम भी रिटायर होने को। तुम्हारा एक दो बच्चा इधर में होता तो एक बच्चे का फीस में कंसेशन हो नहीं सकता था।
2: इसका अर्थ होगा मैडम कि हम जैसे मामूली नौकरी पेशा वालों के बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, है ना?
0: ऐसा काहे को बोलता बेटी, अभी अगर हम तुमको रजिस्टर दिखाएगा तो तुम फील करेगा कि इस स्कूल का जास्ती बाबा लोग मिडिल क्लास फैमिली का है, मामूली घर का। पर थोड़ा ध्यान से सोचना कभी कि कमी कहाँ है, मजबूरी क्यों है।
1: ठीक है मैडम, मुझे इस बच्चे के एडमिशन के बारे में एक दिन सोचने का मौका दीजिए, सिर्फ कल तक। वी कम टुमारो, हाँ?
0: श्योर श्योर, सलाह फैसला करके कल को इधर आने का। बच्चा का कैरियर के बारे में जल्दी ठीक नहीं।
1: थैंक यू मैडम, आओ कमला, चलो बेटा टीनू आओ।
2: नमस्ते मैडम। टीनू नमस्ते करो।
0: मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अब ये चेतता है, पीछू में नमस्ते करेगा। गुड लक। टोटराम, अब उधर में बीरी पिताएगा आखा टाइम को।
3: अरे आई इधर मैम साहब, अरे बैठे में ना दी। अरे राम की हाली, माय गॉड।
2: ए रिक्शा वाले,
4: अरे
2: इधर आओ टीनू, बैठिए ना आप भी। क्या सोच रहे हैं?
1: सोच रहा हूँ कमला मैडम के बारे में। मैडम बोम ह्यूज फनफनी, बड़ा अजीब सा नाम है, खुद भी उतनी बेतुकी है।
2: बोलने का ढंग जरा अटपटा है, मगर मन की कितनी सरल और विनम्र है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि टीनू इसी स्कूल में पढ़े। कैसा साफ सुथरा है, बच्चे कितने सरल ढंग से एक दूसरे से मिलते हैं, टीचर्स के मन में कितना स्नेह है उन मासूमों के प्रति।
1: हाँ सो तो ठीक कहती हो कमला, मगर कुछ आंखें पत्थर की भी तो होती है ना
4: भाई। देखे
1: इन्हें सिर्फ आंख की जगह रखा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। मन में अरमान सजते हैं, मजबूरियों में पूरा नहीं होने देती। अरे भाई ये रिक्शा वाले इतना तेज क्यों चल रहे हो?
4: नहीं नहीं नहीं,
1: अरे अरे क्या कर रहे हो भाई? वो सामने कमला, कमला ठीक तो है?
2: चोट तो नहीं लगी?
5: बच्चे
2: कह रहे थे इतनी तेज मत चलाओ, बाल बाल बच गए।
5: अरे गलती हो गई, शुक्र अदा कीजिए कि ये स्पीड ब्रेकर था, रफ्तार टूट गया, नहीं तो न जाने क्या हो जाता।
1: फिर भी देखभाल कर चलाया करो भाई।
5: जी सरकार,
4: आप खोल करके चला कर।
5: जी जी, आ भाई चलना।
1: स्पीड ब्रेकर, सड़क पर सीमेंट और कोल तार का एक छोटा सा उभार, तेज रफ्तार लोगों को याद दिलाने का तरीका कि कभी कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। स्पीड ब्रेकर।
2: ए, ये क्या बड़बड़ा रहे हैं मनी मन में?
1: कुछ नहीं कमला, वो स्पीड ब्रेकर देखा था ना, जहाँ हमारा रिक्शा उस स्कूटर से लटक रहा था।
2: हाँ हाँ, वहाँ सड़क पर कुछ उभार सा था और उस पर काली सफेद धारियां बनी हुई थी। इस पर से होकर रिक्शा गुजरा तो उछल कर जरा धीमा हो गया, काबू में आ गया, नहीं तो भिड़ी गया होता।
1: हाँ कमला, हर स्पीड ब्रेकर का अपना महत्व है, ये हमें याद दिलाते हैं कि आंखें खोलो, इतनी बेतहाशा रफ्तार अच्छी नहीं।
2: मदन।
1: हाँ कमला, इसी स्पीड ब्रेकर ने केवल रिक्शे को ही नहीं मुझे भी झकझोर कर रख दिया। काश ऐसे ही स्पीड ब्रेकर पहले भी हमारे रास्ते में आए होते तो आज टीनू मैडम के स्कूल में होता। याद है मैडम ने चलते वक्त क्या कहा था?
2: याद है, उन्होंने कहा था किस स्कूल में ज्यादातर बच्चे मामूली लोगों के हैं, फिर भी हम टीनू का दाखिला नहीं करा सके। मैडम ने कहा था कभी ध्यान देकर सोचना कि कमी कहाँ है, मजबूरी क्यों है।
1: और इन सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिया इस स्पीड ब्रेकर ने। जैसे भी हो कमला, कल सुबह मैं अपने टीनू को

0: उनके स्कूल में भर्ती करा ही दूंगा।
1: सच?
0: हाँ कमला, राजू बबली नीतू के हिस्से में जो कुछ छीना है उसे टीनू के हवाले कर दूंगा। और फिर?
1: और फिर क्या?
0: और फिर स्पीड ब्रेकर। ठीक कह रहा हूँ कमला, काश घर के बाहर जिंदगी की हर सड़क पर, हर एहसास पर, हर अंधी दौड़ पर स्पीड ब्रेकर होते तो टीनू का स्कूल एक प्रॉब्लम न होता। एनीवे अब सही, अमा और रिक्शे वाले, एक बार शहीद होते होते बचे हो, अब जरा स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखना।

श्रोताओं, अभी आप झलके कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए सुनिए गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन

7:20 पर फिल्मी गीत दिल ने फिर याद किया। सात बजकर तीस मिनट पर युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

रात्रि 8:45 पर समाचार। रात्रि 9:00 न्यूज़ एट 9। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर राष्ट्र पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती। रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने कहा, भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित प्रारूप नियम जारी किया है और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा कल फ्लैग पॉइंट पर कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उनका मन व्यथित था और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र इसलिए नहीं दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके। त्यागपत्र में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत द्वीप समूह में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठुगापुर में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। इससे दोनों स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को अधिक तेज, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। PHC टुगापुर में कल ई सुश्रुत लाइट HMIS का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शैलजा पी ने स्वास्थ्य कर्मियों से डिजिटल प्रणाली का अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों की बेहतर देखभाल, अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे OPD पंजीकरण को आसान और त्वरित बनाने के लिए अस्पताल आते समय अपना आभा कार्ड या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर साथ लेकर आए। महिला सुरक्षा प्रभाग गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान श्री विजयपुरम में हाल ही में मानव तस्करी रोकथाम विषय

एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, केंद्रीय पुलिस संगठनों, विभिन्न विभागों, अंडमान लॉ कॉलेज तथा अंडमान एवं निकोबार पुलिस के अधिकारियों सहित कुल 102 प्रतिभागियों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक गीता रानी वर्मा ने किया। इस अवसर पर NSCB PTI के प्राचार्य उमाशंकर भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर के विशेषज्ञों ने मानव तस्करी की रोकथाम, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान, जबरन श्रम, यौन शोषण और पीड़ितों के बचाव एवं पुनर्वास जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। सम्मेलन का उद्देश्य मानव तस्करी की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और संबंधित अधिकारियों की क्षमता को सुदृढ़ करना था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, शिक्षा का अधिकार और कारगिल विजय दिवस। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित प्रारूप नियम जारी किए गए हैं। यह प्रारूप संशोधन नियम शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.andaman.gov.in पर उपलब्ध है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रधानाचार्यों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों, शिक्षकों, अभिभावकों, नागरिक समाज संगठनों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की है। इच्छुक व्यक्ति 15 दिनों के भीतर अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा कल शाम 5:30 बजे फ्लैग पॉइंट पर देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देशभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों के साथ द्वीप समूह के कवियों द्वारा वीर सैनिकों को समर्पित काव्य पाठ किया जाएगा। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य देशभक्ति, एकता, साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को सुदृढ़ करना है। ICAR केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने वन महोत्सव के तहत दक्षिण अंडमान वन प्रभाग के सहयोग से गारा शर्मा फार्म में पौधरोपण अभियान आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम राजकुमार तथा कैरी के निदेशक डॉ. जय सुंदर उपस्थित रहे। दक्षिण अंडमान वन प्रभाग ने अभियान के लिए बांस, आंवला और नींबू के 200 पौधे उपलब्ध कराए। अभियान में वन विभाग के अधिकारियों सहित संस्थान के वैज्ञानिकों, तकनीकी, प्रशासनिक एवं अन्य कर्मचारियों सहित कुल 85 प्रतिभागियों ने पौधरोपण किया। इस अवसर पर डॉ. जयसुंदर ने पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने तथा सतत कृषि के साथ वृक्षारोपण को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। 77वें वन महोत्सव के अवसर पर मध्य अंडमान वन प्रभाग द्वारा आज सुबह पेड़ लगाओ धरती बचाओ विषय पर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में लगभग 350 लोगों ने भाग लिया। मिनी मैराथन के मध्य अंडमान के प्रभागीय वन अधिकारी विकास यादव ने रंगत स्थित फॉरेस्ट चेक पोस्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन पर्णशाला फॉरेस्ट नर्सरी होते हुए हवा महल स्थित प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय के समीप संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रभागीय वन अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम लोगों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के साथ साथ वनों के संरक्षण और हरित भविष्य के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करते हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय सूचना ब्यूरो चेन्नई ने तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा द्वीप समूह के निजी सांस्कृतिक दलों और व्यक्तिगत कलाकारों से पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित कलाकारों एवं

दलों को भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक, लोक नाट्य, कठपुतली एवं मैजिक शो, नृत्य नाटिका, पौराणिक कथा वाचन तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति का अवसर दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन सीबीसी चेन्नई कार्यालय में डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी सीबीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने कहा, भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित प्रारूप नियम जारी किया है और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा कल फ्लैग पॉइंट पर कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए। आइए लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएँ। पहले मौसम का हाल। मौसम निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। आइए सुनते हैं जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। एमवी कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रविवार सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलियान की वापसी कल ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। जलियान नालंदा ननकौरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर मंगलवार 28 जुलाई को सवेरे 9 बजे छूटेगा। जलियान की वापसी बृहस्पतिवार 30 जुलाई को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से चलकर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल रविवार सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। जलियान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलियान की वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलियान की वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हटबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। जलियान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। जलियान की वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलियान दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। जलियान की वापसी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृतियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-03192-232100, 03192-233077 और 03192-232400। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:20 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोता, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लताराज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 25 जुलाई है और आज के दिन हम विश्व डूबने से बचाव दिवस यानी वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मना रहे हैं। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य लोगों को डूबने की घटनाओं के प्रति जागरूक करना और उनकी रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी देना है। पानी के पास सावधानी बरतना, बच्चों पर निगरानी रखना और तैराकी सीखना डूबने के जोखिम को कम करने में सहायक हैं। हमें जलाशयों, नदियों और समुद्र के आसपास सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। आइए, इस दिवस पर हम स्वयं जागरूक बनें और दूसरों को भी जल सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। तो दोस्तों, ये तो रही आज के दिन की कुछ खास बातें और अब आप सभी को इंतजार होगा आज के कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आज इस माह का चौथा शनिवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम बातें मुलाकातें।

0: दोस्तों, हमारे द्वीपों में अद्भुत प्रतिभा छुपी हुई है। केवल खेल के मैदान में नहीं, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में भी हमारे द्वीपों का कोई जवाब नहीं। और ऐसा ही एक क्षेत्र है पाकशाला। और दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं द्वीपों के जाने माने शेफ अश्वरपाल सिंह से ली गई ये भेंट वार्ता।
1: शेफ अश्वर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया अपने फर्स्ट एपिसोड के लिए। रेडियो हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं और आई थिंक आज यहाँ स्टूडियो पे आके भी मुझे काफी ज्यादा खुशी मिल रही है कि मैं आज इस प्रोग्राम के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ।
1: आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं?
2: मेरा बॉर्न ब्रॉट अप तो पोर्ट ब्लेयर से ही हुआ है, अंडमान से हुआ है और काफी ज्यादा प्राउड फील करता हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ। जब अंडमान का जिक्र हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ। और बचपन हुए स्कूलिंग भी पोर्ट ब्लेयर से हुई है, मैं मॉडल स्कूल का स्टूडेंट रह चुका हूँ। इसके साथ ही साथ रेडियो सुनने का बहुत शौक था शुरू से और उसको सुनते हुए दूरदर्शन देखते हुए हम बड़े हुए हैं और काफी ज्यादा इंस्पायर हुए हैं हर चीज से। स्कूलिंग के बाद हमने फिर कॉलेज किया है जो मैंने IHM दिल्ली से किया है और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिले हैं और आई थिंक होटल एक ऐसा जरिया था मेरे लिए कि मुझे लाइफ की हर एक रेस में रेस में भागना कैसा होता है, लाइफ के रेस में भागना कैसा होता है, वो सारी चीज़ें मुझे बताया है, सिखाया गया है। आई थिंक जो भी मैंने आज थोड़ी सी मेहनत जो की है, आई थिंक उसी का फल है कि वो जो हार्डवर्क हमने किया था और जो चीज़ें हमने सीखी थी अपने सीनियर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से,

0: अपने अंडमान के लोगों से, वही आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीजें करूँ जो हमारे अंडमान को एक नए शिखर पे ले जाए।
1: मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है।
0: बिल्कुल, इंसान मेहनत नहीं करेगा अगर इंसान की सोच अच्छी नहीं होगी तो आई थिंक इंसान कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता है। बट आई थिंक ये भी है कि आपके पास एक अच्छा फैमिली सपोर्ट होना चाहिए हर चीज़ के लिए, आपके पास ऐसे गुरु होने चाहिए जो आपको अच्छे मार्गदर्शन पे ले जाए, और ऐसे कलीग्स होने चाहिए आपके साथ जो काम करने वाले लोग होने चाहिए जिनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो, जिससे आप हर दिन कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ के बारे में ऐसी चीज़ें सीख सके जिसको आप आगे जाके लोगों को भी मोटिवेट कर सके उस चीज
1: कहने का
0: से।
1: मतलब ये है कि जहां हम काम करते हैं वहां का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए।
0: बहुत बहुत ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप कोशिश कीजिए कि आप हर जगह से, हर एक चीज से, हर एक लोग से कुछ ना कुछ नई चीजें सीख सके, क्योंकि हर किसी की अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी होती है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। बट आई थिंक इंसान अगर ठान ले कुछ करने के लिए तो आई थिंक कभी भी उसको कोई नहीं रोक सकता इस चीज के लिए। हर एक दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन होता है जो हम सभी को कुछ नई चीजें सिखा के जाता है। वही मोटिवेशन के साथ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूं।
1: कहने का मतलब यह है कि समय बड़ा अमूल्य है, जो समय हमको मिला है उसका एक सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने कहा कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है ना कि लाइफ इतना फास्ट हो गया है। आप जैसे पहले के समय पे देखे, पहले तो दूरदर्शन और रेडियो ही सुनते थे ना लोग, बट आज लोगों के पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे ऑप्शन हो गए सुनने के
1: जी
0: लिए, देखने के लिए। जैसे एज ए शेफ अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं अगर कुकिंग जो फील्ड था ना, ये मुझे तो आई थिंक घर से मुझे मिल गया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस होता था कि मेरी मम्मी जो खाना बनाती थी ना, नानी जो खाना बनाती थी, वो उसमें स्वाद आता कहाँ से है। तो हम बहुत कोशिश करते, स्पेशली हम संडे सैटरडे को तो जरूर वेट करते थे कि हमें उस दिन नॉनवेज जरूर मिलेगा। वो जायका जब चखते थे ना, उस जायके ने आई थिंक मुझे इंस्पायर कर दिया था बचपन से, और मैंने मेरी विजन थोड़ी सी क्लियर हो गई थी कि आई थिंक मैं आगे जाके कुछ इस फील्ड से रिलेटेड ही काम करूंगा।
1: तो मेरे अगले प्रश्न का जवाब मुझे मिल गया। मेरा अगला प्रश्न यही था कि आपको शेफ बनने के लिए कौन सी ऐसी घटना है या कौन सी चीज ऐसी जो इंस्पायर की। अगर हम अंडमान की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इस क्षेत्र में, तो अपनी नानी और अपनी माँ के द्वारा आपके मन में आया कि आपने शेफ बनना है।
0: उसके बाद तो मैंने सोच लिया था कि मैं जरूर इस फील्ड पे जरूर कुछ करूंगा। आई थिंक हर किसी का ना कनेक्शन सबसे पहले घर से ही होता है, माँ के हाथ के खाने से ही होता है, उसी चीज से मैं इंस्पायर्ड हुआ। आई थिंक मेरे साथ काफी ऐसे लोग हैं जो आई थिंक इस फील्ड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पहले जैसे हम देखें अंडमान में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, चाहे टूरिज्म की बात कर ले या चाहे रेस्टोरेंट्स की बात कर ले, चाहे होटल्स की बात कर ले। बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे लोग मॉडर्नाइज होते गए, उसी तरह आई थिंक हमारे अंडमान भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ इस चीज से। टूरिज्म के साथ तो बहुत लोग अंडमान को जानते हैं, बट मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि अंडमान को खाने के जरिए भी लोग जाने। अभी मैंने एक गोल सेट कर लिया है कि मैं जरूर नेशनल और इंटरनेशनली अंडमान को खाने के जरिए प्रमोट जरूर करूंगा, और उसकी प्रयास मैंने ऑलरेडी कर दी है।
1: चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि आप इसी तरह आगे बढ़ें। अब ये बताइए, शेफ बनने के लिए आपने पढ़ाई क्या की, इसके बारे में हमारे युवा श्रोताओं को बताएं ताकि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको एक मार्गदर्शन मिले।
0: देखिए, करियर बनाना तो काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सबसे पहली बात तो आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, आपके अंदर वो सोच भी होना
1: वो
0: चाहिए,
1: जुनून भी होना
0: वो
1: चाहिए।
0: जुनून होना चाहिए। जिस फील्ड पे आपको लगे कि आप उस फील्ड पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप उसी फील्ड को चुनिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है और आप इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, या आपको होटेलियर बनना है और आप एरोनॉटिकल कर रहे हैं, ऐसा
1: जी
0: नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में वो चीज़, विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसके अंदर में वो जोश, हर एक चीज़ से वो जुड़ना शुरू हो जाता है, तो वैसे ही मैं भी जुड़ना शुरू हो गया था शुरू से। तो फिर मैंने अपनी 12th के बाद फिर मैंने अपने होटल मैनेजमेंट मैंने चुना, क्योंकि उस समय होटल मैनेजमेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट मुझे काफ़ी लोगों ने मना भी किया कि आप ये कोर्स मत कीजिए करके, बट मैंने सोच लिया था कि मुझे तो होटल मैनेजमेंट ही करना है। आई थिंक मैंने इसका विजन देख लिया था बहुत आगे, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी थे, मेरे जो सीनियर्स थे ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी कि होटल इंडस्ट्री आगे जाके ना बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है, बहुत पॉपुलर होने वाला है, और उस पर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये फील्ड चुनना चाहिए तो प्लीज आप करिए। आई थिंक मुझे देख के उनको लगा था कि मैं इस फील्ड पे कुछ बहुत अच्छा करूंगा, तो मैंने होटल मैनेजमेंट IHM दिल्ली से शुरू किया।
1: जी
0: उसके
1: जी
0: साथ हमें बहुत सारे, हमारे जो फैकल्टी के लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीजें सिखाई हमें। फिर उसके साथ ही साथ हमारा जब कोर्स खत्म हो गया 3 साल के बाद, फिर हमें कैंपस सिलेक्शन के लिए चुना गया, तो मेरा

0: फर्स्ट कैंपस सेलेक्शन ताज में हो गया था। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात थी। उसके बाद ही फिर हमने अपना ट्रेनिंग सेशन किया। काफी ज्यादा टफ होता है, मेरा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस से, कि ट्रेनिंग सेशन जो होता है, अगर आपने ट्रेनिंग क्लियर कर लिया तो आई थिंक आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ट्रेनिंग इतना टफ होता था क्योंकि
1: जी
0: 20 आवर्स का शिफ्ट होता था
1: कभी
0: एवरी डे।
1: कभी ऐसे मन में नहीं आया कि ये तो बहुत टफ है, छोड़ के चले जाएं कुछ और फील्ड में?
0: बिल्कुल आया मेरे मन में भी कि कहां मैं आ गया, कि मैंने
1: फंस गए।
0: सूरज नहीं देखी थी बहुत दिन से, क्योंकि हम इतना टाइम के लिए काम करते थे तो अंदर ही रहते थे, टाइम हो जाता था, रात को निकलते थे बाहर, देख के वापस चले जाते थे। तो जब मेरा 6 महीने के बाद जब मेरा जॉब शुरू हुआ, एक्चुअल जॉब, तब मैं बाहर जाके ना सूरज को फेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने 6 महीने से सूरज नहीं देखी थी। तो वो टफ जो टाइम था मेरा, वो
1: जी
0: पीरियड आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है, वैसे ही
1: जी
0: मुझे भी काफी सारी चीजें सिखाया उसने। उसके साथ ही फिर मेरा जब जॉब लग गया, उसके बाद मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं बहुत सारी जगह में, बहुत सारे होटल्स में काम कर सकूं।
1: जी
0: काफी होटल्स में ऑल ओवर इंडिया पे काम किया है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए।
1: थोड़ा सा हम आपके जो प्रशिक्षण का जो समय रहा होटल में, उसमें आपकी दिनचर्या क्या रही, दिन का शेड्यूल क्या होता था?
0: दिन का शेड्यूल ऐसा होता था कि मैं जब अपने शिफ्ट में आता था, क्योंकि हम ट्रेनीज थे उस समय, तो
1: जी
0: हमें ज्यादा कुछ पब्लिक रिलेशन मिलता नहीं था, तो हमें बैक में ही काम करना पड़ता था जो भी था। शुरू में तो मैंने बहुत सारे दिन, कम से कम 12 से 15 या 20 दिन, मैंने सिर्फ प्लेट को साफ किया है, प्लेट पोछा है, उसको
1: जी
0: धोया है, यू नो।
1: जी
0: फिर
1: जी
0: हमें प्याज काटने का मौका मिलता था, और प्याज काटने में भी हमें इतनी सारी वेराइटीज बताई जाती थी कि चॉपिंग कैसे करना है, स्लाइस कैसे करना है, और
1: जी
0: डाइस कैसे करना है, डायमंड शेप कैसे निकालना है। तो हमारे जितने भी सीनियर्स थे ना, उन्होंने बहुत सारी चीज सिखाई। उसके साथ ही साथ हमारा नॉट ओनली किचन में, उसके साथ ही हमें हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस का भी अवसर प्राप्त हुआ। सारी जगह पे हमने सीखा हर चीज, और हर दिन एक नए लोगों से मुलाकात भी होती थी, क्योंकि
1: जी
0: होटल एक ऐसा माध्यम है जहां पे आपको हर तरह के लोग, हर दिन आपको नया चेहरा देखने को मिलता था।
1: जी हाँ
0: तो उनके साथ साथ एक्सपीरियंसेस काफी अच्छे होने लगे। उनसे जब बातचीत होती थी हमारी, तो उनसे हम बहुत सारी चीजें, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते थे, उनके सबके विचार, उनके सबकी सोच, वो सारी चीजों से मैंने बहुत सारी चीजें गेन की है अपनी लाइफ को, यू नो, आगे लेके जाने के लिए।
1: शेफ अश्वरपाल सिंह से आज हमारी बातचीत हो रही है, युवा दोस्तों, इनसे बातचीत हम जारी रखेंगे। इस बीच शेफ अश्वर, हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे, यहाँ पे पसंद
0: एक
1: हो।
0: गाना बहुत ही बढ़िया है जो आई थिंक सबके लिए है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसको जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है। तो ये
1: बहुत
0: गाना बहुत ही बढ़िया है और बहुत मीनिंगफुल है।
1: चलिए सुनते हैं इस गीत को।

0: आने वाला पल जाने वाला है। बहुत ही खूबसूरत गीत शेफ अश्वर की पसंद पर हमने ये गीत सुना। शेफ अश्वर, जैसा कि आपने बताया, पोर्ट ब्लेयर के बाद आप दिल्ली गए पढ़ाई के लिए, तो पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली तक का सफर आपको वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि आप अंडमान के हैं, यहाँ का जीवन कुछ अलग है मेट्रो से, तो वहाँ क्या क्या दिक्कतें हुई उस बारे में कुछ बताएं।
1: वैसे तो बाहर जाना मेरा हमेशा से सपना था, और क्योंकि मेरे डैडी ना दिल्ली से बिलोंग करते थे, तो मुझे कोई दिक्कत एक्चुअली इतनी हुई नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली भी वहाँ पे है, काफी अच्छा था। बट मैं तो वहाँ पे हॉस्टल में ही था। बट आई थिंक यहाँ से अंडमान से जो भी बच्चे जाते हैं बाहर ना, उनको बहुत सारी जगह में बहुत सारी परेशानी होती है। बट आई थिंक सबके लिए ये है कि परेशानी ही तो लाइफ है, जिंदगी में परेशानी अगर ना हो तो वो लाइफ थोड़ी रह जाएगी। तो आई थिंक हर परेशानी के साथ, हर परिस्थिति के साथ, हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए मुस्कुराते हुए।
0: बहुत अच्छी बात। अब ये बताइए, एक शेफ के रूप में सबसे गौरवपूर्ण क्षण आपके लिए कौन सा रहा?
1: बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली थी, बट आई थिंक एज ए शेफ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात थी जब मैंने हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो पोर्ट ब्लेयर आए थे वेंकैया नायडू जी, उनको सर्व करने का मौका मिला। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि था हमारे लिए। और उसके बाद फिर मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल से भी सम्मानित किया गया था। तो अंडमान का नाम जब कहीं पे भी आता है ना, तो आई थिंक हर किसी को प्राउड फील होता है।
0: अच्छा, व्यक्ति का कौन सा ऐसा गुण है जो उसको एक अच्छा शेफ बनाता है? क्या गुण होने चाहिए?
1: सबसे पहली तो एक शेफ बनने के लिए आपके अंदर में वो जोश होना चाहिए। और आई थिंक अगर आप चीजों को पहले बिगाड़ोगे नहीं ना, तो आप कोई चीज को ठीक नहीं कर सकते हो। तो शेफ बनने के लिए ना, मेरे साथ भी ये हुआ था कि जब मुझे बचपन में जब शौक चढ़ा था ना इस चीज का, जब खाना बनाने का, क्योंकि मैं देखता था मेरी मम्मी नानी को खाना बनाते हुए ना, इतने स्वाद, तो इतने जल्दी बना देते थे, तो मैंने क्या किया, मैंने भी बनाना शुरू किया था तब
0: घर में,
1: घर पे। हाँ, घर।
0: किस उम्र में थे आप?
1: मैं था आई थिंक 9 या 10 years, उस समय की बात है ये। तो उस समय से ना मैंने, एक तो मेरे को एक चाकू पकड़ना भी नहीं आता था उस समय, तो बहुत डिफिकल्ट था। बट क्या था ना, मैंने कोशिश की और कोशिश बिल्कुल रंग लाई, और बचपन से ही मैंने चीजों को बिगाड़ना शुरू कर दिया था पहले तो कुछ साल, चाहे वो चिकन हो जाए, चाहे वो, क्योंकि रसगुल्ला का बहुत शौक था मुझे, तो मैंने रसगुल्ला बनाने के लिए आई थिंक 15 से 20 बार रसगुल्लों को बिगाड़ दिया पहले तो। बट आई थिंक कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती है ना, ये कहावत बिल्कुल सही
0: जी,
1: है। 20वीं बार जब मैंने बनाया तो वो रसगुल्ला परफेक्टली बन गया, तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए एग्जाम्पल था। क्योंकि जब आपको सीखना हो ना कोई चीज, पहले तो कोई चैनल्स भी नहीं होते थे, ना ही YouTube था उस समय, ना ही कोई ऐसा चैनल, दूरदर्शन ही आता था सिर्फ, तो ये सारी चीजें हम जमाने ही सुनते थे। और इतनी स्वीट के शॉप्स भी नहीं थी अंडमान्स में, और अगर हम स्वीट के शॉप्स वाले से अगर हम पूछेंगे तो वो हमें कभी बताता नहीं था। तो जिससे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे वर्बली बोला था, जबानी बताया था, तो वो जबानी सुन के ही मैंने कोशिश की थी। बट बहुत दिन तो हुआ नहीं, और काफी चीजें मैंने बर्बाद भी की थी, बट आस्ते आस्ते करके उस चीज को परफेक्शन में मैंने बदल दिया।
0: आपके पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा?
1: पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे मेरे शुरू से, वो चाहते थे कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करें जाके।
0: जी,
1: मम्मी बहुत डांटती भी थी क्योंकि मैं किचन बहुत खराब कर देता था। अगर मैं अपने करियर से, अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ करता था, कह देता था कि मुझे ये करना है करके आगे जाके, तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया गया। और उसी तरह जैसे मैंने कहा था कि एनवायरमेंट आपका बहुत ज्यादा सपोर्टिव होना चाहिए, तो वही सपोर्ट मुझे मिला, और उसी के वजह से मैं आज जो बन पाया, उनके आशीर्वाद से ही बन पाया हूं।
0: ये वो कौन सा समय था जब आपने निश्चय किया कि नहीं, मैंने शेफ ही बनना है?
1: ये आई थिंक 10th की बात है। मैं अपने टीचर्स के साथ बहुत डिस्कस करता था, मेरे टीचर्स भी ना बहुत सपोर्टिव थे एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी टेस्ट कराते थे वो जो ले आते थे ना, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बच्चा था स्कूल में, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, टीचर्स इतने पसंद करते थे कि वो अपने हाथ से निवाला बना के भी मुझे खिलाते थे। तो उनसे मैं पूछता

0: था कि मैडम ये कैसे बनाया आपने, ये कैसे बनता है। तो वो एक सफर था जब मेरी शुरुआत हो चुकी थी और तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आगे जाके शेफ ही बनूंगा।
1: आपका पसंदीदा व्यंजन कौन सा है?
0: व्यंजन काफी ज्यादा है बट आई एम स्टिल मिसिंग माई मदर्स फिश करी चावल के साथ। आई थिंक उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आई थिंक
1: जी
0: माँ के हाथ का वैसे भी कोई कंपैरिजन नहीं होता है, चाहे वो कितना से बड़ा सा बड़ा शेफ उस चीज को बना ले। तो आई थिंक आई एम मिसिंग माई मदर्स फिश करी। मैंने काफी बार ट्राई कर लिया बट वो जायका ना आज तक मुझे नहीं मिला।
1: कहा जाता है कि अगर हम खाना प्यार से ना बनाएं तो वो ठीक नहीं बनता है, ये कहां तक सही है?
0: देखिए खाना बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक कला है हर किसी के अंदर। आई थिंक हर घर के हर एक लेडीज के साथ ही साथ काफी जेंट्स और आजकल तो काफी बच्चे भी इस चीज से इंस्पायर्ड है। खाना एक ऐसा माध्यम है जिसे हर किसी को जोड़ा जा सकता है और खाना ऐसा कोई भी नहीं है जो पसंद नहीं करे आज के समय में। और खाने में वैरायटीज हर किसी को चाहिए। खाना बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट बन चुका है आज के समय में। जैसे आप देखोगे आज इतने मॉडर्नाइज हो चुके हैं,
1: जी
0: किचन्स आजकल इतने मॉडर्नाइज हो गए, गैजेट्स इतने मॉडर्नाइज हो गए,
1: जी
0: और खाने को परोसना, खाने को डेकोरेट करना, खाने को प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा आर्ट हो चुका है।
1: जी
0: तो आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से लोग इस चीज को प्रेजेंट करते हैं और आज के समय में आई थिंक काफी लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं। आप जैसे आप देख सकते हो आज के समय में यूट्यूब अगर आप खोलोगे या आप फेसबुक जैसे भी खोलोगे ना, आपको काफी लोग आपको दिख जाएंगे। कोई
1: जी
0: खाना बना रहा है, कोई चीजें बगीचे के बारे में बता रहा है, कोई अपने गाँव के बारे में बता रहा है, अपने गाँव के खाने के बारे में बता रहा है। लोगों के अंदर में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी आ चुकी है आज के समय में। आई थिंक
1: जी
0: फूड इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुका है आजकल पूरे विश्व में आई थिंक। और खाना आई थिंक सब लोग ही बनाते हैं बट उसको प्यार से प्रेजेंट करना। मैं अपने एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो अगर जब मैं कुक करता हूं किसी के लिए भी तो वो मेरे अंदर में वो प्यार और मैं वो विजन देख रहा होता कि वो खाने के बाद उनके चेहरे में क्या मुस्कुराहट आने वाली है, उस हिसाब से मैं अपने व्यंजन को बनाता हूँ, अपने व्यंजन को परोसता हूँ उनके लिए। कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत प्यार से उनको खिला सकूँ उस चीज
1: जब
0: को।
1: लोग कहते हैं वाह क्या खाना बनाया है, कैसे महसूस होता है?
0: बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है उस समय और मुझे ना सुनने के बाद बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे कि मैं आगे आने वाले समय में और भी अच्छी चीजें कर सकूं।
1: जो युवा श्रोता इस समय आपको रेडियो के माध्यम सुन रहे हैं, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे?
0: यंग जनरेशन के लिए मेरे पास बहुत सारी वैसे तो बातें हैं क्योंकि आई थिंक यंग जनरेशन बहुत ज्यादा स्मार्ट है आज के समय में। और होटल मैनेजमेंट एक ऐसा माध्यम है जिससे अगर कोई बच्चा, नॉट ओनली होटल मैनेजमेंट सिर्फ खाना ही होता है ऐसा नहीं है, देर इज मेनी डिपार्टमेंट्स जो लोग जा सकते हैं। जैसे होटल एक ऐसा इंडस्ट्री ही बन चुका है जो आई थिंक आपको बहुत ही आगे ले जाएगा आपके फील्ड पे, आपके पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा निखारता है, डेवलप करता है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है क्योंकि आपकी मुलाकात बहुत नए नए लोगों से होते हैं जिनके विचार बहुत अलग होती है। उसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चा होटल मैनेजमेंट करना चाहता है तो जरूर बेशक कीजिएगा कि होटल एक ऐसा माध्यम है जहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारी होगी। और जब आप कोर्स कर लेंगे एक समय ऐसा भी लगेगा कि मैं इस चीज को छोड़ दूं बट वही तो आपकी टफ परीक्षा
1: परीक्षा की घड़ी आप कह
0: की
1: सकते
0: घड़ी है।
1: हैं।
0: बिल्कुल उस परीक्षा को तो आपको पास करना है क्योंकि आई थिंक होटल एक ऐसा माध्यम है जहां पे आपको मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस दोनों होगा बट वही एक परीक्षा को जब अगर आप पार कर लोगे तो आई थिंक आपको पूरे विश्व में ना कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता है और आपको इंडिया के साथ बाहर भी जाने का मौका मिलता है। बट मैं जरूर सजेस्ट करूंगा हर किसी के साथ कि हमारे इंडिया को डेवलप करना है हमें मिलके। इंडिया पे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप इंडिया के लिए जरूर काम कीजिएगा क्योंकि अच्छे अच्छे होटल्स इंडिया में हैं और
1: जी
0: आई थिंक जो यंग बच्चे हैं आज के समय में उनको आगे बढ़ने का बहुत अवसर हर एक होटल इंडस्ट्री जरूर देता है। आई थिंक होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आगे जाके।
1: आज आप एक सक्सेसफुल शेफ हैं, कैसा महसूस होता है? और वो भी अपने ही क्षेत्र में काम करना, पॉपुलर जो अपनी जगह है।
0: इस बारे में अगर बात करूं तो मैंने भी डिसीजन लिया था कि मैं बाहर सेटल हो जाऊं जाके बट एक समय ऐसे आया कि मुझे लगा कि अगर मैंने अपने जगह के लिए कुछ नहीं किया तो आई थिंक मेरा शेफ बनना तो अधूरा रह जाएगा या मेरा सक्सेस होना या मेरा मेरा काम तो अधूरा रह जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अंडमान वापस आ जाऊं। तो मैंने अपनी बहुत अच्छी जॉब को छोड़ दिया और मैं अंडमान वापस आ गया और अंडमान आने के बाद मैंने अपने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया। तो केटरिंग का बिजनेस जब मैंने शुरू किया तो हमें काफी जगह पे बहुत अवसर मिले। फिर ITF जैसे होती थी या कहीं भी फूड फेस्टिवल होता तो हमें सबसे पहले बुलाया जाता था। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हो गई अंडमान के लोगों से जुड़ने का क्योंकि जब तक आप पब्लिक रिलेशन नहीं बनाएंगे अच्छा तो आई थिंक आपकी कोई भी काम को कोई सराह नहीं सकता।
1: यहाँ के युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे?
0: मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ बहुत यूनिक चीजें करूँ। मेरी जो भी एक्सपीरियंसेस थी मैं बहुत दिन से

0: रहा था कि मैं कुछ अंडमान को खाने के जरिए भी प्रमोट करूं। मैं हाल ही में ही मेरी एक बुक लॉन्च हुई है जो अंडमान की क्विजीन को दर्शाता है, हमारे जो ओल्ड जो पुरानी जो सभ्यता थी खाने को लेके, जो हमारी रूट्स है जैसे कह सकते हैं, अंडमान से जुड़ी हुई चीजें हैं जो आई थिंक आज के समय में थोड़ी मिस हो रही है क्योंकि इतने मॉडर्नाइज हो चुके हैं ना हर चीज। क्योंकि आप रेस्टोरेंट पे जैसे जाओगे तो आपको ऑथेंटिक खाना कहाँ मिलता है, आपको बटर नान, बटर चिकन, बिरयानी यही तो मिलता है, जो अंडमान की क्विजीन नहीं है। तो मैंने मेरे बुक्स में भी ऐसी रेसिपीज मैंने डाली है जो अंडमान की यू नो ऑथेंटिसिटी को दर्शाए। और जो बुक का नाम है वो है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।
1: लोगों का रिस्पांस कैसा है?
0: बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग बहुत ज्यादा मुझे अप्रिसिएशन भेज रहे हैं इस चीज के लिए। और उसके साथ ही साथ मैंने एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर दिया है, उस जगह को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस जगह को अभी तक दिखाया नहीं गया हो। अंडमान का जो ऑथेंटिसिटी है, अंडमान के जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो फिशरमैन्स हैं, जो इतना मेहनत करते हैं हम तक चीज पहुंचाने के लिए, हमारे लिए तो बहुत इजी है ना, एक शॉप में जाके एक फूल गोभी उठा के हम पैसे दे के ले आते हैं, बट उसके पीछे
1: कितनी मेहनत होती
0: वो
1: है।
0: जो फार्मर का जो मेहनत है वहां तक पहुंचाने के लिए, उस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: यहाँ के अगर युवाओं को देखें, आजकल कुछ कुछ युवा जो है मार्ग से भटक गए हैं, ऐसे में उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं जरूर बताना चाहूंगा इस बारे में क्योंकि युवा ही तो आइलैंड को और आगे ले जाएंगे आई थिंक। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पॉजिटिविटी के साथ और अपने फैमिली के सपोर्ट के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आई थिंक अपने सोच से, अपने करियर से थोड़े से दूर होते हुए जा रहे हैं। तो आई थिंक सभी के लिए ये है मैसेज कि अपने करियर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आई थिंक करियर ही आपके आगे आने वाली जिंदगी को तय करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा और आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली को प्राउड फील कराएगा। तो आई थिंक ऐसे सभी के लिए, युवाओं के लिए ये है कि कुछ गलत चीजें ना करें, इंजॉय जरूर करें लाइफ को, बट अपने करियर पे पहले फोकस करें उसके बाद, क्योंकि एंजॉयमेंट के लिए तो काफी समय बाकी है। मैं तो चाहता हूं कि अंडमान का जो भी युवा है, बच्चे है, वो अंडमान का नाम बहुत ही ज्यादा आगे ले जाए। आई थिंक बहुत सारे ऐसे बच्चे आगे जाके आएंगे हर एक फील्ड से जब अंडमान का नाम उनके नाम से भी लिया जाएगा। तो मैं जरूर चाहता हूं कि युवा है उनका थोड़ा सा कॉपरेशन अंडमान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर को ब्राइट बनाने के लिए होना ही चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही। अब कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसे अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे युवाओं से?
0: सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट कीजिए बहुत ज्यादा, अपनी फैमिली को हमेशा प्राउड फील कराइए हर समय। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं साउथ इंडियन शेफ एसोसिएशन का भी मेंबर हूं और वो मैं पहला मेंबर हूं यहां से अंडमान से, और ऑल इंडिया टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मैं सबसे यंगेस्ट सेक्रेटरी भी बना हूं, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है। उसी के साथ काफी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे हर जगह पे, एज ए शेफ मैंने बहुत जगह पे रिप्रेजेंट किया अपने आइलैंड को
1: जी।
0: और लास्ट ईयर हमने गणेश चतुर्थी पे एक बहुत बड़ा लड्डू बनाया था जो 1009 केजी का था, जिससे मुझे 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स मिली है। तो आई थिंक ये लेना जाके हर एक स्टेट पे जब अंडमान की बात आ जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात थी क्योंकि अंडमान का जिक्र हो रहा था और मेरे साथ उस जगह पे पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स, यू नो गिनीज बुक के बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स भी बैठे थे और उस समय मैं अंडमान से आया हुआ जब नाम ले रहे थे तो वो काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था मुझे। और आगे आने वाले समय में भी हम कुछ ऐसे कोशिश करेंगे जिससे हमारे अंडमान का नाम बहुत आगे चले जाए।
1: तो शेफ अश्वरपाल सिंह, आज आप कार्यक्रम में आए, हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, अपने नाम के साथ साथ आप अपने द्वीपों का नाम, हमारे देश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, अभी आप अश्वरपाल सिंह से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे और भेंट करता थी जयशीला। तो दोस्तों, जाते जाते हम आपको बता दें कि कल यानी रविवार को इसी समय युववाणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष पर विशेष कार्यक्रम शौर्य की अमर गाथा। तो दोस्तों, इसी के साथ युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं लता राज नंदिनी, आपकी रेडियो दोस्त, चाहती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में दिल्ली से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मानसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे, तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति

ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही 12:50 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के 12:50 बजे पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2:00 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब 12:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्ह 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 12:00 बजे तक स्थगित कर दी। 12:00 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2:00 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद 12:00 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही 12:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही 12:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही 12:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 12:00 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही 2:00 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद 3:00 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्ह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर

सदन पहुंचे, खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन

संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है थानेदार फिल्म से। गायक कलाकार है अमित। गीत की धुन तैयार की है बप्पी लहरी ने।

0: में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना, शादी है बर्बादी। दी दी दी एंड। शेर था चूहा हो गया।
1: श्रोताओं, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

0: अभी आप चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत APCCF नोडल अधिकारी AFCA MS अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संविदा आधार पर कंसल्टेंट के 2 पदों पर योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रति माह 40,000 का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति का स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, मैरीन बायोलॉजी, ओशन स्टडीज़ अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण अध्ययन, इम्पैक्ट असेसमेंट, इकोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, रिस्क एनालिसिस अथवा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित कार्य अनुभव तथा MS ऑफिस का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन 100 अंकों की वेटेज आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अंडमान एवं निकोबार वन विभाग तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की वेबसाइट https://forest.nic.in एवं https://andaman.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियों सहित कार्यालय APCCF वन सदन हैडो श्री विजयपुरम में केवल ऑफलाइन जमा करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 29 जुलाई 2026 को साय 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग से संपर्क किया जा सकता है। श्रोताओं लीजिए सुनिए गौरव गान इस अंतराल के बाद।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन

0: एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
0: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
2: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
3: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का

0: उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल

में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोस्तों विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंट वार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाए जाने के अवसर पर IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है IVF तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताजा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे

0: तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी।
1: चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है, जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को डीएनए राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल डीएनए सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक डीएनए में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
2: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
3: आज ही हरियाणा के जिंद से, जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
2: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
4: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है, जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है, जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
2: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं,
4: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं, और उस एनर्जी का उपयोग करके जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए, तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशंस भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है, और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है और उस हाइड्रोजन को

0: बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है, और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड ट्रेन में को रिफिल करने में इस्तेमाल किया। और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहां पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलकर वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया, और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन ऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों है।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती में बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये हैं धरती में बहुत सारे, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है, तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट हैं, तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे, तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं बनते हैं, उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे NdFeB बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो Nd जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो Nd की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय कि ये जब हम Nd और Fe को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
2: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी, कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना, तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है। और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
2: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत

0: अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, स्टेम सेल और IVF तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से IVF तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो IVF है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपियरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स की कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक

0: परसेंट का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में. उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल, अपीयरेंस. तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स, की कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में. उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली. तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था. उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया. फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऐसे करके प्लान हुआ. तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से. तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमीट, एक फीमेल और मेल गेमीट को हम फर्टिलाइज करते हैं. नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैन्युपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं. वो उसको आपस में जोड़ते हैं. एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं. लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर, तो उसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है. तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली. तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन बाद डे 2 एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे 3 होता है, फिर डे 4 होता है, फिर डे 5 होता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में, तब 0 डे है, और फिर स्लोली स्लोली 5वें दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है, और फिर चिपकता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं. तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं 5वें दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है. तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं.
1: दोस्तों IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं.
0: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं. आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां कि पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे 5 दिन में 2 बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है, बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती हैं. देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते. तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से, और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा. तो इस सेंस में जो चांसेस हैं, अटेम्प्ट्स हैं IVF के, वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा. देन AI सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया है, तो मतलब आजकल लैब्स में AI विटनेसिंग हो गई है. ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर 4 मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है, ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे.
1: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है. लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों, और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से.
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है. जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई. इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में. जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने, और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा. इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए. अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता है. तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है. उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया. आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते. इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण. इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई जिसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं. इसका शुरुआत

0: थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई। तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ है, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहाँ पर है।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
0: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना। इसके लिए हमने, भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-Stripe ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-Stripe ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पर निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
1: दोस्तों, जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
2: देखिए, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि एक कहीं संस्थान है, एक कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गाँव से जोड़ना, ये STI है। क्योंकि ये से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
1: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
2: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस्ड, इसलिए हमने STEM की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में थोड़ी साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़े, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सूंघें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही हैं बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा, मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं करा वो कैसे बदलेगा, सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर के, तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हो, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
3: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारें लेकर नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है

इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुँचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुँचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीडी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

0: अदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती अदिति बैनर्जी।
0: श्रीमती अदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नील माधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सान्निध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूर्व अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
1: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। Subsequently, she underwent a rigorous training in khayal and tappa singing under the eminent exponent of the Gwalior Gharana, Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit, under the guidance of Padma Bhushan Srimati Shobha Gurtu. For nearly 14 years, she mastered the authentic Purab Ang Gayaki, performing Thumri, Dadra, Hori and Kajri, and also accompanied her guru on numerous prestigious occasions. In addition to topping her MA and MPhil degrees in music from Delhi University with gold medals, Srimati Aditi Banerjee was specially honored by Padma Vibhushan Girija Devi during the Purabang Gayaki Utsav.
0: आइए सुनते हैं Srimati Aditi Banerjee के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी, जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल हैं, बैरन रतिया कैसे आऊं।
1: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। She begins her recital with Thumri composed in Rag Mishra Tilak Kamud, set to Deepchandi Tal. Bairan Ratiya Kaise Aaun?

आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामो ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक कामोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी, सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: That was Dadra set in मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे and broadcast came to you from Akashvani Delhi. Namaskar.
2: श्रोता अब रुक करते हैं मौसम के हाल की ओर। मौसम निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जनसेवा और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होने की आशंका है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 11 बजे है। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, समय सवेरे के 5:28:34 हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।